अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री भरन कुमार पाल का राग नट भैरव में गिटार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है अब्दुल रहमान ने।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली

0: कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समूह स्वरों में देश वंदना के साथ।

सभु स्वरों में देश वंदाने के पश्चात आइए करते हैं सुमिरन ईश्वर की। प्रथम स्मरण गुरु को सुनते हैं माधव इंगले के स्वर में ये भजन।

आराधना की अगली प्रस्तुति में आइए श्रोताओं सुनते हैं शदब कीर्तन। रागी हैं सरदार सोहन सिंह और साथी।

देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। कार्यक्रम के समापन में आइए श्रोताओं सुनते हैं हरिओम शरण को।

0: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है पशुपालन कृषि के साथ बेहतर आय का स्रोत। जानकारी का वाचन कर रहे हैं अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज के आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से रसायन युक्त खेती करना हमार मजबूरी है। और हमार देश के किसान मन द्वारा ज़्यादा उत्पादन लिए के उद्देश्य से ज़्यादा रसायन घलो खेत मन में डाले जाते हैं, जो नागे चल के हमार जमीन, हमार भूया, हमार स्वास्थ्य, हमार पर्यावरण, जल के संग संग हमार दैनिक दिनचर्या घलो ला प्रभावित करत है। और एकर साथ ही हमार ऋषि परंपरा के खेती से लेके हमर पूर्वज से प्राकृतिक पद्धति से करे जाए वाले खेती रही से ओला आज हम भूलत जाथन, जेकर कारण हमर गौ माता जिला हम माँ स्वरूप पूजथन वो आज आवारा पशु के रूप में जाने जाते, सड़क में विचरण करते हैं और ओकर का दुर्गति होते हम जानथन। आज गांव गांव में गौठान बनाए के व्यवस्था करना पड़ते जौन बड़ा दुखद होते। गाय और खेती एक दूसर के पूरक है। गाय के जिनिस ला हम खेत में डारथन और खेत के जिनिस ला हम गाय ला खवाथन। ये शुरू से चलत हुए व्यवस्था रही से जेला हम कुछ बछर मा ऐसन गड़बड़ कर डारे हन कि का कही। गौ माता के महत्वता हमार खेत में अतका ज्यादा है कि किसान के परिवार से यदि गाय ला अलग कर दिए जाए तो किसान के संग संग संपूर्ण मानव जाति के विनाश तय है। देश विदेश के वैज्ञानिक मन, बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता के शोध के अनुसार पाए गए कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जौन मन भूया के अंदर, खेत के अंदर खेती ला उपजाऊ करे वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये सब जीवाणु मन ला ऊपर लाए, जमीन ला भुरभुरा बनाए, उपजाऊ बनाए में मददगार होते ये गोबर। ये गाय के गोबर उस जीवाणु मन के सुगंधित भोजन होते। जब गाय के गोबर बंजर भूया में खेती में डाले जाते जिहा रासायनिक खाद उपयोग करे गए है या कठोर हार्ड खेती में डाले जाते तो जमीन के अंदर कृषि मित्र जीवाणु जैसे केचुआ, नेवला, सांप क्रियाशील होके जमीन ला छेद करके भुरभुरा कर देते, जेखर से जमीन में वर्षा के जल जमीन के अंदर तक संरक्षित होए लगते और जमीन में साल भर वर्ष भर नमी बने रही थे, जेखर से किसान के उत्पादन फोकट में बढ़त रही थे। गौमूत्र के बात करें

खेती में एकर बड़ महत्व है। गाय के गोबर के जैसे ही गौमूत्र हमर खेत और मानव जीवन पर बड़ उपयोगी है। देश के वैज्ञानिक मन प्रयोगशाला में गौमूत्र के परीक्षण कर पाएन के फसल में जौन कीटनाशक लगते तो वैज्ञानिक मन ये पाएन के अगर फसल में कीटनाशक के जैसे गौमूत्र के व्यवस्था करके हम छिड़काव करी तो वह जहर नहीं बल्कि अमृत के समान काम करते। फसल के उत्पादन बढ़ते, हमार फसल जहरीला नहीं हुआ, जेकर से हमार स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ते। गौमूत्र के जैविक छिड़काव से हमार कृषि मित्र जीवाणु पशु पक्षी मन ला कोनो हानि नहीं हुआ। एकर बार आज हम कह सकथन कि आधुनिक रासायनिक युक्त खेती से मुक्ति पाए और खेती ला पुनः उपजाऊ बनाए बर गाय के गोबर और गौमूत्र से बने खाद और कीटनाशक के ही उपयोग हमन ला करना चाहिए, तभे हमर पर्यावरण, जल संरक्षण और मानव जीवन सुरक्षित हो पाही। किसान भाई, गोबर और गौमूत्र से आजकल आनी बानी के जिनिस किसान भाई मन और जानकार मन बनाते, तो ये सीख सकत हन जैसे

0: करना चाहिए, तभे हमर पर्यावरण, जल संरक्षण और मानव जीवन सुरक्षित हो पाही। किसान भाई, गोबर और गौमूत्र से आजकल आने बाने के जिनिस किसान भाई मन और जानकार मन बनाते, तो एला सीख सकत हन, जैसे निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दसपर्णी अर्क है, ये सब में गौमूत्र के उपयोग होते। वैसे ही घन जीवामृत बनाबो तो ओमा गोबर के उपयोग होते। अपन सोच विचार से भी ऐसा है आनी बानी के जिनिस के हम उपयोग कर सकत हन अपन खेत में, काबर हमर चीज हम ही मन ला ही बचायला पड़ही। आज हमन ला खेत बचाए के जरूरत है, नहीं तो अवैया समय में खेत ऐसा बंजर हो जाही कि हम ओमा 20 कुंटल का 2 कुंटल भी जिनिस नहीं उपजा पाबो। तो जरूरत है जागे के, सोचे के, सुधरे के और खेत ला सुधारे के। राम राम, जय जोहार।
1: पशुपालन कृषि के साथ बेहतर आय का स्रोत, इस विषय पर यह थी जानकारी खेती की बात में। वाचन कर रहे थे अभिनव गवराहा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं तुलसीकृत रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और साथी संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: श्रीकांत पाडगांवकर और साथियों के स्वर में आपने सुना तुलसीकृत रामचरितमानस गायन। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। विषय है अनुकूल समय का इंतजार करें और आलेख डॉक्टर चंद्र कुमार जैन का है।
1: एक शिक्षण संस्थान की परंपरा थी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में जो 8-10 सबसे योग्य होते थे उन्हें देश की औद्योगिक संस्थाएं नियुक्त कर लेती थीं। उस साल भी वही हुआ। ऊपर के 9 लड़के ऊंची पद प्रतिष्ठा वाली नौकरियां पाकर खुशी खुशी चले गए, लेकिन उनके बीच का एक लड़का जो चुने हुए साथियों से कम नहीं था रह गया। चूंकि वो बहुत परिश्रमी था और अपने संस्थान को उसकी सेवा से लाभ ही होता था, इसलिए उसे अस्थायी तौर पर कुछ भत्ता देकर काम पर लगा लिया गया। फिर भी अपने साथियों की तुलना में उसकी ये नियुक्ति आर्थिक दृष्टि से बड़ी मामूली थी। वो उदास रहने लगा, लोग भी उसके भाग्य को दोष देने लगे थे। लेकिन यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। एक बहुत नामी औद्योगिक संस्था ने अचानक उस शिक्षण संस्था से संपर्क कर जैसे व्यक्ति की मांग की। ये युवक पूरी तरह उसके अनुकूल सिद्ध हुआ। उसे अपनी योग्यता के अनुरूप काम और वेतन मिला। बात इतनी ही नहीं थी, उसकी ये नियुक्ति अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊंची भी थी। अर्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टि से वो उन सबसे श्रेष्ठ हो गया था। इसी तरह कभी कभी अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां आया करती हैं। अक्सर ही जिसे लोग भाग्य का दोष मान बैठते हैं वो होता है एक बेहतर भविष्य की छुपी हुई संभावना। इसलिए भविष्य को लेकर सजग और सतर्क अवश्य रहें, लेकिन अधीर और अस्त व्यस्त हो जाना ठीक नहीं है। आप में तब तक विश्राम की जरूरत पैदा न हो जब तक आप अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त न कर लें। मात्र कामना अथवा अभिलाषा में जीना एक बात है, लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति और धीरज के दम पर अपनी मंजिल हासिल करना बड़ी बात है। प्रबल इच्छा शक्ति का अर्थ, जैसा कि माइकल हैंसन ने कहा है, एक लक्ष्य बनाना, फिर उस कार्य की योजना बनाना जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाए, और फिर उस काम में तब तक जुटे रहना जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काम में जुटे रहना, जी हाँ, काम में जुटे रहना अपने आप में उपलब्धि है। उस पर भी यदि फल की इच्छा के साथ धीरज भरा विश्वास मन में जाग जाए तो समझिए कि असंभव भी संभव हो सकता है। आज के दौर में एक बड़ी समस्या है लक्ष्य प्राप्ति की उतावली, जिसकी वजह से तात्कालिक सफलता को सब कुछ समझ बैठने की भूल अक्सर लोग कर जाते हैं। ईमानदारी और साधनों की पवित्रता, कार्यशैली की शुचिता और पारदर्शिता जैसी बातें ऐसे लोगों के खाते में दकियानुसी श्रेणी में शायद दर्ज है। पर याद रहे, ईमानदारी को सर्वोत्तम नीति यूं ही नहीं कहा गया है। ईमानदार व्यक्ति जानता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए तो जिंदगी को दूध के समुद्र की तरह मथना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता का नवनीत मिलता है, वो भी भरपूर मात्रा में। वो स्थायी ईमानदारी का रास्ता अपनाता है। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए वो पीछे के दरवाजों से प्रवेश नहीं करता, उसकी ईमानदारी अडिग होती है।

0: जिसमें धैर्य और अपनी कोशिश की ईमानदारी पर भरोसा है, वो कभी असफल नहीं हो सकता। अगर आपका आचरण छल कपट वाला है, दूषित और जोड़ तोड़ से लबरेज है, दुराव छुपाव और मुखौटों आवरणों वाला है, तो तय मानिए कि आपकी तथाकथित कामयाबी भी 4 दिन की चांदनी साबित होकर रहेगी। आपके अधीर और अटपटे प्रयासों की सच्चाई एक दिन सामने आ जाएगी। सफेद झूठ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, आखिर वो झूठ ही रहेगा। ईमानदारी को विकसित करने और बनाए रखने के लिए लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। जरा सोचिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग इंक के चेयरमैन जोश बेस्टन कहते हैं, मैंने हमेशा इस आसान नियम के अनुसार जीने की कोशिश की है। वो काम न करें जिसके बारे में सोचकर या सुनकर आपको अच्छा न लगे। ये एक अच्छा मानदंड है जिसकी रोशनी में अच्छी तरह से जिया और काम किया जा सकता है। हर सुबह संकल्प करें, मेरा जीवन कम से कम 1 दर्जन जिंदगियों को छुएगा इससे पहले कि एक दिन खत्म हो। अच्छाई या बुराई के अनगिनत चरण चिन्ह छोड़ जाएगा शाम का सूरज ढलने से पहले। यही है चाहत मन में कि हे ईश्वर, मेरा जीवन उन जिंदगियों की मदद कर सके जिन्हें ये हर रोज स्पर्श करता है।
1: अनुकूल समय का इंतजार करें। इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आलेख डॉक्टर चंद्र कुमार जैन का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आई श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुबह 8:30 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुया। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। समय होगा दिन में 10 बजे से। सदाबहार नगमे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर और नए तराने की बारी होगी 10:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी सुनिए दिन में 11 बजे। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण हम प्रतिदिन करते हैं शाम 5 बजे से। शाम 5:05 पर सुनिए कार्यक्रम साहित्य की प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। श्रोता बहनों का कार्यक्रम महिला सभा हम लेकर आएंगे शाम 5:35 पर। इसमें चर्चा करेंगे मेहमान नवाजी और अतिथि धर्म विषय पर। साथ ही होगा क्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की और समय होगा शाम 5:35 पर।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का आनंद लिया जा सकेगा शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। संध्या 7:30 पर

रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रायपुर से ही अनुप्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम। समय होगा आज रात 8:15। रात 8 बजे सुगम संगीत में सुना जा सकेगा गायिका सुनीता राव के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी रात 8:30 से।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 8:15 पर हम रायपुर से रिले करेंगे विशेष कार्यक्रम। रायपुर से ही अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। समय होगा संध्या 7:30। ये तो थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः अथ आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः भारतस्य राजदूतः विनय कुमारः एवञ्च संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यौ आस्ताम्। उपवेशनावधौ डॉ एस जयशंकरेण विशेषतः आर्थिक सहयोगे, व्यापार क्षेत्रे अथ ऊर्जा क्षेत्रे च भारत रूसयोः सहमतिं सुदृढीकर्तुं प्रतिपादितम्। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजीत डोभालः ह्यः चीनस्य द्विदिवसीय यात्रायां वार्ताम् उद्घोषयन् चीनदेशस्य विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान उक्तवान् यत् डोभालः, वांग यी च सीमाविवादस्य अतिरिक्तम् अन्येषु विषयेषु अपि घनचर्चां करिष्यतः। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य एम्स्टेलविन नगरे आयोजिते एफआईएच इत्यस्य विश्वचषकस्य पूल क्रीडायां भारतीय पुरुषदलं अर्जेंटीना दलेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। 2 दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरते

0: प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान एसएलआर, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे सभी सुधीर श्रोताओं का। कार्यक्रम आज सुबह के इस अंक में आपके साथ हूं मैं महावीर बरगाह। कीजिए स्वीकार हमारा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, प्रकृति की छटा इन दिनों देखते ही बनती है। हरियाली, छलकते बांध, तालाब, बहते झरने, नदियां, पहाड़ों, जंगलों पर मीलों फैली हरियाली की चादर और घुमड़ते बादल, ये मनोरम श्रृंगार देखने में बहुत सुहावना लगता है। ऐसा लगता है कि इन्हें निहारते ही रहें। लेकिन मित्रों, हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रकृति के इन दृश्यों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती है, या कहें कि देखने की क्षमता नहीं रहती है। दृष्टिबाधित श्रेणी में कुछ तो जन्म से प्रभावित रहते हैं, वहीं कुछ दुर्घटना या बीमारी के कारण आंखों की रोशनी से वंचित हो जाते हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति के नित नए खोज और उपचारों से आशा की किरणें प्रकाश बिखेर रही हैं। हमारे देश में नेत्र स्वास्थ्य और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही हर साल राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, और इसके लिए जो तिथि निर्धारित है श्रोताओं, वो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी आज से। इसकी शुरुआत वैसे तो भारत सरकार ने 1985 में की थी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तब से लगातार लोग नेत्रदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं और प्रेरित भी। फिर भी इस दिशा में अधिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों के जीवन में उजियारा आ सकता है और आता भी है। नेत्रदान कौन कर सकता है, या इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये कहाँ होता है, यदि ऐसे प्रश्न कौंध रहे हों तो इसकी संक्षिप्त जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, महिला पुरुष सभी कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें कोई संक्रामक बीमारी ना हो। चश्मा लगाने वाले

डायबिटिक, ब्लड प्रेशर के मरीज भी नेत्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जिन्हें चश्मा लगा हो, डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर के मरीज हो। नेत्रदान की घोषणा शासकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में फॉर्म भरकर किया जा सकता है। व्यक्ति के मृत्यु उपरांत 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान की प्रक्रिया होना आवश्यक है। इसके लिए मृतक के परिजन, मित्र, बंधुओं की सजगता बेहद जरूरी है, ताकि समय पर चिकित्सकों की टीम आकर ये प्रक्रिया पूर्ण कर ले। ये प्रक्रिया 10 से 15 मिनट की ही होती है और चेहरे पर कोई भी विकृति नहीं आती है। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने नेत्रदान की घोषणा न की हो, तब भी उसके मृत्यु उपरांत यदि परिजन चाहें तो नेत्रदान करवा सकते हैं। नेत्रदान की दिशा में हम अपने स्तर पर क्या कुछ सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं, अवश्य विचार कीजिए, और सटीक प्रयास भी। मित्रों, आंखें बंद होगी जब जीवन की शाम आएगी, किसी की और सुबह में रोशनी मुस्कुराएगी। दान ऐसा करें कि याद रहे इंसान, और इसके लिए नेत्रदान से बढ़कर क्या होगा महादान।

श्रोताओं, जान है तो जहान है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक वाक्य नहीं है, बल्कि शत प्रतिशत सच भी है। पिछले दिनों कई खबरें सुनने पढ़ने को मिल रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नदी नालों के उफान में दुर्घटना की खबरें शामिल हैं। बारिश के इन दिनों में फिसलन भरी सड़कें, गड्ढे सहित पुलों के ऊपर से पानी का बहना आम बात है, इसलिए सावधानी बेहद बेहद जरूरी है। बेवजह दुस्साहस न दिखाएं, आपका ये कदम प्राणघातक हो सकता है। कई बार हम अति आत्मविश्वास के कारण मोटर बाइक, साइकिल, पैदल या कार बहते पानी में निकालने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये बेहद खतरनाक है। जरा सी चूक, लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है। इसलिए साथियों, सजग रहें, सतर्क रहें। प्रकृति के भीगे रुत का आनंद जोखिम में न लें, बल्कि सावधानी के साथ, चाय पकौड़ों के साथ और गीत संगीत के साथ भी लिया जा सकता है।

0: गीत के बाद श्रोताओं बारी है कुछ संदेशों की, आइए सुनते हैं।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
5: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
4: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
6: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
7: स्वस्थ तन स्वस्थ मन, जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
0: संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं श्री उमा शंकर पांडे जी, ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर की ताजा जानकारियों के साथ, आइए सुनते हैं।
8: नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं बिलासपुर जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बिलासपुर शहर में 2 छोटी-छोटी रैलियां निकाली जा रही है, जिनमें पहली रैली शहर के वार्ड क्रमांक 63 और 65 के लोगों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में प्रातः 11 बजे नूतन चौक सरकंडा से चलकर सीपा चौक, मामाया चौक, इंद्र सेतु, नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। वहीं एक दूसरी रैली छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिलासपुर के सदस्यों की है, जिसके अंतर्गत आज दोपहर 2 बजे सभी कोनेर गार्डन में एकत्र होंगे तथा यहां से रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपेंगे। दोनों ही रैली के सभी सदस्यों से अनुरोध है, यह सुनिश्चित करें कि रैली से आम यातायात तनिक भी बाधित न हो, सभी सड़क के एक किनारे चले। इसके साथ ही शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वैसे तो ये वर्षा ऋतु है, किंतु विगत 2-3 दिनों से रुक रुक कर लगातार जिले में वर्षा हो रही है। इस वर्षा से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बहुत ही सावधानी

0: पूर्वक चलें, विशेषकर दो पहिया वाले विशेष सावधानी बरतें, धीरे चलें। यदि किसी पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो तो थोड़ा भी खतरा मोल ना लेवे, क्योंकि कई बार एकाएक जल स्तर बढ़ जाता है तब संभाल पाना कठिन होता है। साथ ही स्कूली बच्चों को विशेष समझाइश भी देवे कि शॉर्ट कट के चक्कर में नदी नाला पार कर आना जाना बिल्कुल ना करें, हमेशा निर्धारित एवं सुरक्षित रास्ते से ही स्कूल आना जाना करें। शॉर्टकट के चक्कर में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हमेशा ऐसे खतरे से बचकर रहें। हाल ही में इस प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। दोस्तों, कर्कशान या कान फोड़ू तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर सभी के लिए हानिकारक हैं, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में यह वर्जित है, दंडनीय है। बचकर रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर। और अब आइए सुने कुछ संदेश।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 8:30 पर हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। रायपुर से ही रिले करेंगे दिन में 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, और शाम 7:30 पर आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसका अनुप्रसारण भी रायपुर केंद्र से किया जाएगा और आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही हम एक विशेष कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा रात 8:15 पर, और हमारे केंद्र से शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर।

इन संदेशों और सूचनाओं के साथ ही श्रोताओं, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम आज सुबह के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम आज सुबह के इस अंक से दे अनुमति अपने साथी महावीर बरगाह को। नमस्कार।

0: आज सुबह।
1: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, आरडी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है और फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा।

हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना थी और आरडी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में आई श्रोताओं, अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में फिल्म रेशम की डोरी से लिया हुआ ये गीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: सदाबहार नगमे में आइए श्रोताओं अब सुनते हैं आरन बख्शी की रचना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं और इस गीत को हमने लिया है फिल्म अंधा कानून से।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं इंदिवर की रचना। संगीत है राजेश रोशन का, उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं, और फिल्म है करण अर्जुन।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में साहिर की रचना। खय्याम का संगीत है, फिल्म है चंबल की कसम।

चंबल की कसम। इस फिल्म का आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर की ये रचना थी, खयाम का संगीत। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। खुशी पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर

0: कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये

0: बाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
1: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है, बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अख्वापदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली

0: साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. An immense cricket centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
3: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilization strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agent for country's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Mr. Modi urged the officer trainees to work towards making India a more

हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादन और प्रस्तुति महेंद्र साहू की है।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू के तरफ ले। श्रोता साथी हो, आज के हमार क्रम है हमार संस्कृति हमार कलाकार। ये क्रम में हमन समय समय पर हमार छत्तीसगढ़ अंचल के जो लोकगीत कलाकार हैं एमनला आमंत्रित करथन और एमन छत्तीसगढ़ के लोक कला लोक संस्कृति ला बचाए के बगराए के काम करत हैं। गीत संगीत के माध्यम से, नाचा के माध्यम से, कई ठो अलग अलग विधा होते एकर माध्यम से अपन कला और संस्कृति ला नई पीढ़ी तक पहुँचाए के भी प्रयास करते हैं अपन अलग अलग जगह पर गीत संगीत के माध्यम से। एक ऐसे ही कलाकार हमार संग उपस्थित हैं आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में, श्री राम कुमार साहू जी। साहू जी, आपके स्वागत करत हैं आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि हम श्रोता साथी मतलब बताए कि आज हमारे साथ लोकगीत कलाकार हैं श्री राम कुमार साहू जी, एक गीत आप गुनगुना के हमारे श्रोता साथी मतलब सुना देवा।
1: जय महामाय मुँह बाकी तोर, अखरक गुरु बताले तोर, 64 जुगनी सुमराऊ तोर, तोरे भरोसा बल घर जाऊ तोर, तोरे ले गुरु गुमाने तोर, हाल बरस दई जावो तोर, लख 84 देवता तोर, डूमर के दीदी परे तीन तोर, मुँह

0: मुनि तोर आखी के दाई सत बहनी तोर सुमरा संत समाजे तोर पैया लागौ मैया मैया तोर पैया लागौ दाई दाई तोर। अरे जा दिन बोले मोर चंदैनी मोर बरी गिनाए हो। पहले नाचा होए
1: हाँ।
0: तो नाचा में मैं बचपना में सुना वो गाना सुना था
1: हाँ।
0: गुरु के बाना बांध लियो बाना जी गुरु के बाना बांध लियो बाना गुरु के बाना बांध लियो बाना जी गुरु के बाना बांध लियो बाना। पहली सुमरनी जी चंदा सूरज को पहली सुमरनी जी चंदा सूरज को चंदा सूरज को जी चंदा सूरज को। जग में कर उजियारा जी गुरु के बाना बांध लियो बाना जी गुरु के बाना बांध लियो बाना।
1: बहुत सुंदर रामकुमार जी, आप एक नाचा के एक जोकर गीत आप हमारे श्रोता साथियों में सुनाया। श्रोता साथियों मैं बताऊं, हमारे साथ में रामकुमार साहू जी स्टूडियो में बैठी हैं और सज धज के आए हैं, पजामा कुर्ता है, जैकेट भी पहने हैं और दो ठो हार भी पहने हैं आप।
0: जी जी,
1: का है ये हार? मन
0: ये हार एक तो रुपिया हरे,
1: हाँ,
0: दूसर सूता हरे।
1: अच्छा,
0: ये हमारे छत्तीसगढ़ के सिंगार दाई माई पुरुष मन के,
1: हाँ,
0: हमारे छत्तीसगढ़ के वेशभूषा हरे।
1: अच्छा अच्छा, ये महिला और पुरुष दोनों
0: दोनों पहन
1: पहन सकते हैं?
0: जी जी।
1: अच्छा, आप नाचा गीत से पहले आप बताया कि बचपन से ही आप गीत संगीत से जुड़े हैं और नाचा से जुड़े हैं।
0: जी जी सर।
1: कद का उम्र रही से आपके जब आप जुड़ा? तो
0: मैं नाचा तीसरी चौथी पढ़त रहे, मैं कम से कम 10-12 साल के रहे हूँ। मोर बाबूजी नाचा कलाकार रही से और मैं ओकरे साथ नाचा देखे।

0: कम से कम 10-12 साल के रहे हों, मोर बाबूजी नाचा कलाकार रही से, और मैं ओकरे साथ नाचा देखे पर जाऊं, नाचा में वो नाचे बाबूजी है।
1: अच्छा।
0: और पहली नाचा में 7 ठन लोटा बहुक नाचे जनाना मन, और कोनो चक्कल बहुक नाचे, कोनो हौलल बहुक नाचे, वो पैत आकर्षित और पारंपरिक ढंग से नाचे, चक्कल बहुक चक्का में दिया जलत रहा है, तो वो एक में जनाना गीत बहुत पुराना गीत है रे, ओला आपके बीच सुना दे
1: थोड़ा। ये सुना दे, लेकिन हमारे श्रोता साथी मन आपके बारे में ये नहीं जान पाए हैं कि आपके पैदाइश कहाँ हुई से, कौन गांव के रहे वाला है आप।
0: हाँ, मैं दुर्ग जिला राम कुमार साहू, और मोर जन्म 1 नवंबर 1965 के।
1: आप दुर्ग के ही रहे वाला
0: है? हाँ, दुर्ग पोटिया कला गांव के।
1: पोटिया का, हाँ वही हमन जानना चाहते हैं, पोटिया कला से।
0: पोटिया कला गांव के
1: जी, वो गीत आप सुनाए वाले रहे, वाला सुना दे।
0: पहली नाचा में जनाना मन जो गाए, लोटा बहो के चक्का बहो के जो नाचे, मेन जो जनाना है वो गाना में सुना तो आप मतलब। आई हो नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन कन्हैया आई हो, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया, नाने कुन का नहीं आया सोदा, अड़बड़ धूम मचा थे या जड़ कही देना या समझा देना या तुर बेताला, समझा देना या समझा देना या तुर बेताला, दही लवो हर खाते मटकी ला फोर दे थे, दही लवो हर खाते मटकी ला वो हफोड़ थे, कर थे छेड़ा खानिया जमुरिया, कर थे मनुमानी, कर थे छेड़ा खानी जमुरिया, कर थे मनुमानी, नाने कुन कन्हैया यशोदा, अड़बड़ धूम मचा थे या जड़ कही देनाया, समझा देनाया तुरबे डाला।
1: जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति है आपके राम कुमार जी, और हमारे श्रोता साथी मन आपके प्रस्तुति ल पसंद करत हो ही, और ये पता चल ही जब वो मन चिट्ठी लिखी तो।
0: जी, जी जी,
1: है ना। आप बताया कि बचपन से ही आप गीत संगीत से जुड़े हैं, नाचा से जुड़े हैं, आपके पिताजी ल देख देख के आप आगे बढ़ गए, तो आपके पिताजी के कितना सहयोग मिली से आप लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाए में?
0: आगे बढ़ाए में मोर पिताजी के बहुत सहयोग मिली बचपन से, और मोर बड़े पिताजी है ना तबला वादक रिश नाचम बजाए।
1: अच्छा।
0: मेहतर साहू करके, और मोर पिताजी के नाम गणपत राम साहू रिश छोटे भाई रही से, तो उकर से मोल बहुत, उकर बाद में मोला पढ़े भर गयो, मैं तीसरी पढ़ात रहा हूँ, मैं
1: स्कूल में,
0: स्कूल में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हो है, तो वहां भी मैं गीत गाऊ, तो गीत गाते गाते मैं यहाँ पुरस्कार दे, तो आजकल जैसे सील्ड विल्ड देते वैसा टाइप में नहीं देते रहे, वो पाई प्लास्टिक के डब्बा, या जिसे पढ़ाई करते तो वाला लैंप दे दे पढ़े वढ़े के, वो देते रही कॉपी पुस्तक पेन वगैरह, पेंसिल ज्यादा दे पेंसिल पेन,
1: लेकिन एक सम्मान राशि पुरस्कार हाँ। राशि कहीं ना कहीं आप आगू बढ़े बार वह प्रेरित करत रही से, है ना। जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी या जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो स्कूल में, तो आप में हर समय प्रतिभागी रहा, भाग लेवत रहा, तब तो आप पूरा गुरुजी मन और स्कूली बच्चा मन के बीच में, सबके बीच आप तो अपन पहचान बना ले रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इतना हाँ। कि गीत एक ठन गाओ तो औगा औगा की चिल्लाए, बोले लड़का मन बोले स्कूल में भी मैडम मन मोल गवा दे, और वही दौरान जब मोल स्कूल में गाते हुए देखीस, तो मोर गांव में एक गोविंद सांस्कृतिक कला मंच एक ठन नाटक खेले मन हा, जो सामाजिक मन वो तरसात है, तो एक नाटक में मैं काम कर रहा हूँ मैं, और ओमे गाय बर सीखे वहां मोला।
1: आप नाटक भी में भी भाग लेत रहा हाँ, और गीत भी गाते
0: हाँ, नाटक में भी भाग ले, ओमे भी गीत गाऊ, और फिर ओकर बाद में मैं नाटक करते करते मैं गाना गात गात, एक दिन शिव कुमार दीपक मोरे गांव खड़े, वो भी हास्य कलाकार है
1: हाँ।

0: ओकर नजर पड़ गए तो लइका बहुत जोरदार गाथे, वो महू कलाकार हूँ, छत्तीसगढ़ के माने हुए।
1: कतक उम्र रही आपके उस समय?
0: मैं वो पित में 12 साल के रहे हूँ।
1: 12 साल के? हाँ
0: तो वो हम ओला कहे कि थे केदार यादव से मिले, स्वर्गीय केदार यादव जी से।
1: जी।
0: और ओला में गुरु मान लें का नवा बिहान में बहुत कार्यक्रम दे,
1: अच्छा।
0: नवा बिहान में गाना भी गाऊं, फिर वहीं से मैं डांस करे बार भी सीखे हूँ, नृत्य करा हूँ मैं। हाँ
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: तो आप गीत भी गाता, नाचा में भी भाग लेता
0: हाँ
1: और साथ में नाटक में भी भाग
0: हाँ जी
1: लेता,
0: जी अभिनय भी
1: का
0: करूँ।
1: संगीत और गीत के और नाटक के क्षेत्र में का बच गई से आपसे?
0: ऐसे कुछ नहीं बचे, जब यही मन तो सब सार चीज
1: है
0: हरे।
1: ना, मतलब सारे विधा
0: हाँ
1: से आप
0: हाँ
1: जुड़े हवा।
0: हाँ
1: जी
0: जब मैं 9वीं पढ़त रहे और पिताजी खत्म हो गए तो घर में गरीबी आ गई, तो मैं 10वीं पढ़े के बाद पढ़ाई भी बंद कर दे। और मोर गुरुदेव के नजर पड़ गए, जन नीचे पढ़ाए थे है। वो सोनहा बिहान में लेकिन दाऊ महासिंह चंद्राकर के साथ मोला संगत करी से, वो सोनहा बिहान में मैं सन 88 से लेके 96 तक सोनहा बिहान में दाऊ के, जब तक सोनहा बिहान चली तब तक मैं पूरा दाऊ के साथ काम करे हूँ। ममता
1: अच्छा,
0: दीदी
1: आज
0: रही।
1: आपको एक मौका मिले हैं
0: जी जी जी
1: स्वर्गीय केदार यादव जी ला सुरता करे के
0: जी जी
1: और दाऊ जी का सुरता
0: दीदी
1: करे
0: जी
1: के,
0: जी
1: ये दोनों जन कैसे आप याद करिया अभी?
0: जी जी गाना
1: कैसे कैसे याद करिया आप बतावा? कुछ उमन के साथ जो घटित घटना है, जो समय बिताया है, वो कैसे समय बीती आपके?
0: वो
1: कुछ
0: समय
1: गीत संगीत जैसे आप सुनात रहा,
0: जी जी
1: कहीं कुछ गलती हो जाती रही, कायवन तो कला पार की
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: अगर मान लो कि आपसे कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती रही
0: जी
1: सोई,
0: जी जी जी
1: तो कुछ मार्गदर्शन मिले, साथ में कुछ हो सकत है, कुछ कड़ा भाषा में भी बोलत रही हुई,
0: जी जी जी
1: तो कैसे रही,
0: अतना
1: कैसे समय बीती
0: उमन
1: आपके?
0: ऐसे मैंने सिखा है कि एक गाना ला 4 बेर 5 बेर जब तक याद नहीं हो है वो गाना, हाँ तब तक वो गाना गाना है। और सुर से ना बिल्कुल एती बेती नहीं होना है, वहां जाके वो सरल स्वभाव से, जिसे कई जग डांटते वाड़ते वो सब नहीं। और उपैत के गीत मन भी बहुत प्यारा प्यारा गीत मन रहा है, जैसे केदार भैया के गीत सुनाता हूँ मैं।
1: हाँ सुनावा।
0: मुरली बाजे ना रे गुइया, बसुरी बाजे ना, नंदुलाला मनु मोहना के मिठू मुरली बाजे ना, नंदुलाला मनु मोहना के मिठू मुरली बाजे ना, रस रचावे जमुना खड़ किसन कदम छैया, गुप गुवालिन नाचे जी हाँ जोरे जोरे बैया, घूमर घूमर मगन रानी, घूमर घूमर मगन रानी, राधा नाचे ना, नंदलाला मनु मोहना के मिठ मुरली बाजे ना, नंदलाला मनु मोहना के मिठ मुरली बाजे ना।
1: और सुने के मन करत रही से, लेकिन चला फिर कभी सुनबो आपसे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही
1: अभी आप मन केदार यादव जी के सुरता
0: जी
1: करा,
0: जी
1: दाऊ जी के सुरता करा,
0: जी
1: वो समय के जो कलाकार रहीन है,
0: जी जी जी
1: लोक कला लोक संस्कृति के एक
0: जी
1: आधार स्तंभ रहीन, उन बचाए वाला
0: जी जी
1: रहीन,
0: जी
1: और
0: जी
1: साथ साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाए के प्रयास भी करत
0: प्रयास
1: रहीन अलग अलग माध्यम से,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना? ऐसे और कौन कौन कलाकार रहीन उस समय के, जेमन जाने जाते हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ले उन बचाए के और बगराए के कोशिश करत रहे हैं?
0: बहुत। उमे सर केदार यादव खुद सोनहा बिहान में जात रही से, चंदैनी गोंदम जात रही से, ओकर यहाँ भाभी जी है साधना यादव जी, वो भी जात रही से। और वो पे बड़े बड़े साहित्यकार मतलब बुला के गाना मतलब गवाए, माने रचना करे गवाए था मतलब गवाए, जैसे बड़े बड़े केदार भैया, मिथिलेश भैया, कुलेश्वर ताम्रकार जी, लक्ष्मण मस्तूरिया, एमन सब गाए, मस्तूरिया जी भी रचना कर रही। लेकिन अब के जिसे कवि है ते मन लिख दी और डायरेक्ट गवा देते, वो पे ट्यूशन नहीं दी से। दाऊ जी है जिसे गाना लिखवातीस तो बोला 10 झनला पढ़ा ये गाना बने हित नहीं है, और काकर से गवाओ कि 3-4 झनला गवाए, जेकर से गाना अच्छा लगतीस वही गवाए।
1: तो ऐसे में तो जो गायक कलाकार रहे,
0: हाँ
1: ओमन में भी एक तरह से आपसी जरा हमन कंपटीशन कथन है ना, कि मैं अच्छा गाऊं, मैं अच्छा गाऊं, मोला मौका मिल जाए, ऐसा मन में आत रही सो ही।

0: गाना सफा कोई गवाए, लेकिन आवाज में कनी सुनना चाहे वो
1: जो
0: सफो कलाकार और बराबर प्रेम करे वो
1: जो भाव से लिखे हैं जी जी। वो भाव कौन कलाकार के आवाज में आते
0: और रचनाकार घलो लिख देतीस ना तहूला नहीं और दूसरा साहित्यकार यदि बने लिखा है नहीं लिखा है कहीं सुधार सकते का एक सीती पहली जो गाना है वो मन छांदे पानी तात भात कस लगते एकरे कारण लगते पहली जो पुराना गीत है मैं लोरी चंदम दाऊ महासिंह चंद्राकर संजाओ तो भाई चंदैनी में कथा गायन गाऊ लोरी चंदक पाठ कराऊ लोरी गीत जो रहा है वो अभिनय करे बर मिले बहुत सीखे बर मिलिस मोला और अच्छा अच्छा संस्था मिलिस मैं तीजन बाई के साथ भी गयो पंडवानी गायिका तीजन बाई जो रही से ओकर साथ में अंडबार निकोबार दिल्ली भोपाल भारत भवन रविंद्र भवन यहाँ में कार्यक्रम दे हूँ तो ओकर जो ये रही छत्तीसगढ़ी पंडवानी नहीं गायकी जग जान तो वहां ना ये होए कि कर्मा छत्तीसगढ़ के अपन मेन गीत कर्मा गीत हरे तो कर्मा गीत मतलब आठ लड़का आठ लड़की लेके डांस करके वहां कोई म्यूजिक नहीं दूझन मादर वाले और नित्य करैया लड़का और गाना गवैया लड़का मन बस जान आठ लड़का आठ लड़की और गाना गवैया गान वहां और नाचन भी
1: आठ लड़का में आप भी रहा
0: हाँ मैं भी रहा
1: अच्छा
0: जिन दिल्ली अंडमान निकोबार भोपाल उदयपुर सिरपग्राम जो राजस्थान में बने वहाँ
1: आप विदुषी तीजन बाई जी के साथ में कई जगह गए
0: कई जगह मनमोहन करके
1: आज दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच नहीं है
0: जी जी जी
1: अब आप बहुत लंबा समय जगह जगह आप उनका साथ बिताया है कार्यक्रम में ये मौका में आप उनके कैसे सुरता करिया तीजन बाई जी के
0: तीजन बाई एक नई पढ़े लिखे रही इस पर भी से एक ऊंचाई छुई कलाकारी में और इतना जोरदार पंडवानी का है पंडवानी सफो कहा थे लेकिन तीजन बाई जो कथा बताए के जो शैली रही से जो तमूरा ला माने गदा बना देना तमूरल धनुष बना देना वो जो कपाली सैलीम जो बोले वो अलग रही छांदे पानी का बोले सर वो
1: लेकिन एक चीज है कि वो एक अच्छा काम करके गिन है कि आज उनकर बहुत शिष्य है जीवन उनकर जो एक कला परंपरा है आगे बढ़ा के कोशिश करत तो कर्मा गीत के आप चर्चा करत रहे तो दो चार लाइन सुना
0: एक लाइन सुना दे सर
1: सुनाओ
0: चल जो ही जा बुनिया बजार चल केरा चर केरा बारी मा गोर लेबी चल जो ही जा बुनिया बजार चल केरा चरकेरा बारी मागोर लेबी लाली रे लुगुरा के हरियर छोर हो लाली रे लुगुरा के हरियर छोर तुरमाया मुरमाया लाए के संग जो चलकेरा चलकेरा बारी मा गोर लेबी चल जो ही जा बोनिया बा जा चल केरा बारी मा अगोर लेबी
1: आप बचपन से आप जुड़े हैं कलाकारी
0: जी
1: से
0: जी सर जी
1: है ना और आप कला के हर विधा से आप परिचित
0: हैं जी जी सर
1: अब आपके अभी जो उम्र है एकर हिसाब ले
0: जी जी
1: आप लोग क्या लगते कि मोला और कुछ अभी सीखना है
0: अभी तो बहुत कुछ सीखने कलाकारी एक ऐसे चीज
1: हरे
0: जो कतको शिक्षा कमी रही आज भी हम कतको अच्छा गाथन की कथे लेकिन औ गाय के सुधरे के आवाज अच्छा निकले अच्छा अच्छा गाना गान ये आज भी चाहता हूँ मैं यहाँ कि कोई मेरी त्रुटि मत होए और ज्यादा माने अच्छा से गान ज्यादा लोग तो ताली बजाते आज हम सबले बड़े पुरस्कार हम ताली ही समझतन ताली बजा दी चार जन आदमी तो अच्छा लगते
1: राम कुमार जी आपसे हमारे बातचीत होते हैं मैं आप अपन स्कूल की चर्चा करो
0: जी जी जी
1: जब आप स्कूल पढ़त रहा 15 अगस्त 26 जनवरी में गीत गावा
0: जी जी जी
1: और साथ ही साथ आप नाचा गम्मत गीत संगीत सब जगह जुड़े हवा
0: जी जी जी
1: और आपके पिताजी के भी योगदान है आप आगे बढ़ाए में आपके बड़े बाबूजी के जिला हम बड़े बाबा कथन
0: जी जी जी
1: उनकर भी
0: जी जी
1: है
0: जी
1: एक और आपके साथी हैं आपके जीवन साथी उनकर कितना योगदान है आप लग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाए में कुछ सहयोग है उनकर
0: है मोर साथ मोर पत्नी है वो भी अच्छा गाना गाते
1: वो भी कलाकार है
0: वो भी कलाकार है
1: अच्छा
0: बहुत बढ़िया गाते वह
1: तो दोनों कलाकार

0: दोनों कलाकार के पहचान मिलजुल कैसे हुई?
1: मिलजुल कार्यक्रम में याद रहो मैं यहाँ वो डबरी बनाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम कुष्ठ उन्मूलन
0: कोई
1: नशा
0: सरकारी
1: उन्मूलन
0: सरकारी कहाँ?
1: सरकारी कार्यक्रम में
0: हाँ
1: तो कॉलेज में गीत गात रही से तो मोला कॉलेज में कार्यक्रम देना रहीस और वहां गए हो तो बहुत अच्छा गाए
0: अच्छा
1: और पित मोल शादी करना रही से और गायिका सन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि के तो
0: जी,
1: मैं ओकरे साथ शादी कर लूं सर।
0: शादी कर लिया उसके बाद आपन दोनों जन के
1: हाँ
0: संगीत यात्रा कैसे आगे बढ़ाते आप?
1: आकाशवाणी में गाँव हो सर आकाशवाणी भी रेडियो भी मोर गाना आते दोनों कोई गाथन जिल गिरवर दास मणिकपुरी अजय वस्ताज मन लिखे हवा एक प्रेरणा गीत है जो स्वर्गीय गिरवर दास मणिकपुरी के लिखे गीत हरे
0: अच्छा नहीं, मैं
1: तो
0: वो तो ठीक है,
1: जी
0: लेकिन मैं आपसे ना, आपकी जो पत्नी है
1: जी जी
0: उनकर खातिर कोई प्रेम गीत आप गाए हो या
1: हाओ
0: तो वो गीत ला सुना देवा।
1: जी जी जी दोनों कोई गान काला जूही करूं राम सोचे ना समझे वहां पटू पर्यूं काला जूही करूं राम सोचे ना समझे वहां पटू पर्यूं तै दिया हावस मैं हाँ वो बाती वो।

0: सुहावन जिंदगी के साथी ना, काला जूही करे राम, सोचे ना समझे वहां पर टू पर्यू, काला जूही करे राम, सोचे ना समझे वहां पर टू पर्यू।
1: जी, ये आप बहुत अच्छे
0: ये
1: गीत
0: एक
1: आप सुना।
0: ददरिया गीत है,
1: हाँ
0: और एक प्रेरणा गीत भी गाऊं मैं आकाशवाणी से होकर साथ।
1: हाँ अच्छा
0: वो प्रेरणा गीत इतना बढ़िया गीत है, गिरवर दास के लिखल हरे, जिल
1: हाँ
0: हमन जन जन तक नशा उन्मूलन में गान, तो सबसे शुरू गीत वही रहा है, तो वो गीत भी एक कनी गुनगुना देता हूं मैं।
1: हाँ गुनगुनाओ।
0: चली यही से किरिया खाबो संगी, गांव सरग बनाबो, चली यही से किरिया खाबो संगी, गांव सरग बनाबो, ज्ञान गंगा जन चेतना के सोरु संदेश बताबो, ज्ञान गंगा जन चेतना के सोरु संदेश बताबो, चली यही से किरिया खाबो संगी, गांव सरग बनाबो, दाही जिला खूंदन नहीं दे मन हमर गांव के मेड़ो, दाही जिला खूंदन नहीं दे मन हमर गांव के मेड़ो, चले ऐसे किरिया खाबो संगी, गांव सरग बनाबो, चले ऐसे किरिया खाबो संगी, गांव सरग बनाबो, गांव सरग बनाबो।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रेरणा गीत है ये
0: जी जी
1: रामकुमार जी।
0: जी जी जी जी
1: और हम तो ये शुभकामना देवो आप ला कि आप दोनों मिल के ऐसे ही समाज ला,
0: जी जी
1: देश
0: जी
1: ला,
0: जी
1: श्रोता मल्ला प्रेरित करा
0: जी
1: गीत के माध्यम से कि जो समाज में जो बुराई है, कई
0: जी
1: तरह की बुराई
0: जी जी
1: है,
0: जी सर
1: वो बुराई से हमारा समाज
0: जी जी
1: मुक्त हो सके। बहुत
0: जी सर
1: अच्छा प्रयास है। और जब आप दोनों एक साथ कलाकार हो गया,
0: जी जी जी
1: एकर बाद आप मन के प्रस्तुति कहाँ
0: जी जी
1: कहाँ हो इसे?
0: मोर प्रस्तुति मोरम देव महोत्सव है दुर्ग में, कई जगह गांव गांव में, और जहां जहां महोत्सव होते वहां मोला बुलाते सर। बिलासपुर महोत्सव है, मैं हाँ जुनून हो कारण एक सांस्कृतिक पार्टी चलाए। पहली दाऊ जी मन के पार्टी में जात रहे हो, केदार यादव पार्टी में, केदार भैया नहीं रहीस, दाऊ जी नहीं रहीस, और दीदी मन के भी प्रोग्राम में गए, जैसे ममता चंद्राकर जी है, ऐसे बड़ा कन प्रोग्राम मन में गए हूँ। लेकिन ओकर जुनून हो एक बाद में नव अभियान में, अब मोला गायक इच्छा है, अब मोला इच्छा पूरा करना है, तो मैं खुद पार्टी खोलूं, जिम
1: अच्छा
0: काया खंडी भजन निर्गुण भजन मन लगाता हूँ, पारंपरिक गीत मन लगाता हूँ, जिसे बसदेवा गीत है, बांस गीत है, पारंपरिक मल्ला जे आज नंदाज जावत है। आज बड़ा दुख के बात है, कोई कलाकार मन हा पंडवानी भरथरी सुने बर कम करते, लोक संगीत ला जिसे नाचा थे लड़की मन हा लड़का मन हा ओला ज्यादा पसंद करते। मैं सबसे ज्यादा आज भी पसंद करता हूँ, तब मैं नाचल पसंद करता हूँ, नाचा लेकर से पसंद करता हूँ। आजकल लड़की मन रिंगी चिंगी नाचा था अच्छा करत है, महिला मन भी नाचा था वो अच्छा करत है, लेकिन जो पुरुष मन जो महिला बन के नाचते वो ला जो देखता हूं ना।

0: चक्कल भोग नाचत हे, हौलल भोग नाचत हे, तू और सात ठन लोटल भोग नाचे। मोर गांव के महंत रहा जो अपन जवानम जब नचकारिन बने और नाचे तो इतना बढ़िया लगे। वो दू झन जोकड़ा है पेटला पेटला जे मन बगल बगल में ओकर काय की थे छोटे छोटे रहा है ओकर दोनों का खान मतलब धर धर के नाचे जिसे तो इतना आनंद आए वो जवानम हम नाचा देखन तो। आज भी बसदेवा मन आते तो वो बसदेवा गीत हमला इतना बढ़िया लगते आशीष दे के जाते हैं। बस देवो मन भी नंदा थे
1: तो मैं आपसे एक निवेदन ये करत रहे हैं कि बस देवो मन जैसे आशीष दे के जाते हैं
0: जी जी
1: तो ऐसे हम उन कार्यक्रम ले विदा लेबो वैसे उकर पहली एक बस देवा गीत आप सुना देवा आशीष के रूप में फिर आपसे एक और आपकी उपलब्धि के बारे में चर्चा करूं।
0: जी जी जी
1: तो एक बस देवा गीत आप सुना देवा।
0: जय हो गौटनिन जय हो तोरु धर्मी चोला दयालु मोर जय गंगान। जय हो गौटनिन जय होए तोर धर्मी चोला दयालु मोर जय गंगान। तोर बुतावो छिन भर के ब्रह्मा बुतावो दिन भर के लेना दाई करना दान। बांसुदेव जाही चारे दुआर जय गंगान। जय हो गौटनिन जय होए तोर धर्मी चोला दयालु मोर जय गंगान। बड़े बिहनियल दे दे दान ओला बैकुंड भेजे भगवान जय गंगान। और जय हो गौटनिन जय होए तोर धर्मी चोला दयालु मोर जय गंगान।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गीत अब तो मुझे लगता है धीरे धीरे नंदाज जाओ।
0: गवैया नहीं है सर,
1: गवैया नहीं है। लेकिन आप जैसे कलाकार मन
0: जी जी
1: नई पीढ़ी के जो नवोदित कलाकार है वो मन ला तैयार करिया तो हो सकत है आए वाला समय में जितना भी नंदाज जात है
0: जी जी
1: चाहे वो लोक वाद्य है लोक गायन है लोक नृत्य है वाला हम बचा पाबो। राम कुमार जी
0: जी
1: बहुत कम उम्र से आप कला के क्षेत्र से आप जुड़े हवा अपन पूरा जीवन कला आप समर्पित कर दे हवा है ना तो इतना समर्पण आप करे हवा तो कुछ कहीं से आप ला आगे और अच्छा काम करे खातिर प्रोत्साहन मिली से
0: मिले सम्मान मिले है जैसे धरती पुत्र सम्मान भूया सम्मान ये मिले हवे और अन्य जगह से भी कई ठन समाज वाले मन भी बुला बुला के सम्मान देते। बस यही है कि अहबर में प्रयास करता हूँ जो राज्य अलंकार के लिए वो में भी बहुत कलाकार है कर कारण मोल नहीं मिल पाए। मैं खुद संतुष्टि हूँ एक दिन जरूर मिल ही हासिल करूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मोर प्रयास है सर मोल कोई दुखी नहीं है
1: जी। आशा से ही उम्मीद बने रहते
0: जी जी जी
1: और हम उम्मीद करवो कि आए वाला समय में
0: बिल्कुल
1: आपला जो राज्य अलंकरण सम्मान मिली हम शुभकामना देवत हैं आपला। आप कला के क्षेत्र में ऐसे समर्पित रहा। और एक सवाल वो आपसे करना रही थी कि जो नई पीढ़ी के जो लड़का है एमन कुछ आपके पास आते हैं कि हम मल्ला ये रास्ता में आगे बढ़ावा करके
0: आते आते बहुत लड़का आते। मैं कई ठन स्कूल में जाता हूँ ना तो मैं यहाँ आजकल के गीत नहीं गाऊ काकरू लिखेल गीत ला नहीं गाऊ लेकिन पारंपरिक गीत लगाता हूँ ना तो बहुत लड़का मन तैयार हो जाते हमू सीखबो सीखबो की के।
1: राम कुमार जी आज आप आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आया और आपसे आपके कला यात्रा के बारे में हम चर्चा करें
0: जी।
1: और अभी भी आपके मन में काफी ऊर्जा है
0: जी जी सर
1: लोक कला
0: जी जी
1: लोक संस्कृति आगे बढ़ाए के। हम तो यही उम्मीद करबो कि आए वाला समय में आपके नाम पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेश में भी लोग आप लोग जाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये शुभकामना आप लोग देथन। आज आप आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आया एक खातिर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देथन। श्रोता साथियों अभी हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में दुर्ग के वरिष्ठ लोकगीत कलाकार राम कुमार साहू जी से हमन उनकर लोक यात्रा के बारे में चर्चा करत रहें। समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ये अंकले मोला यही विदा देवा। जय जोहार राम राम।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां अभी आप सुन रहे थे। संपादन और प्रस्तुति महेंद्र

0: बाहों की थी।
1: अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को ही हैं। अब हम 9:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से ये गाना। केके की आवाज में विशाल ददलानी के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में ये गाना सईद कैदरी के बोल, और म्यूजिक था मिथुन का।

जाने तू या जाने ना, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना बेनी दयाल और साथियों की आवाजों में, अब्बास टायरवाला के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मर्डर थ्री, इस फिल्म से शफकत अमानत अली की आवाज में, सईद कादरी के बोल और प्रीतम का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में रजत अरोड़ा के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म से आप सुन रहे हैं कमाल खान और नीति मोहन की आवाज में गाना, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

है देश की सुरील धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित पर।

घराने से है, जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक, गायिकाएं, अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगे।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वेयर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं, अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज डोंडी लोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिले के डोंडी लोहारा में आयोजित बिहान दीदी और स्वसहायता समूह सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 67 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 631 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। यह राशि सितंबर महीने की किश्त है, जिसे मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को सौगात के रूप में समय से पहले प्रदान करेंगे। योजना के तहत अब तक 30 किश्तों में महिलाओं को 19,444 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त को राजधानी रायपुर में सिविल लाइन्स स्थित न्यू सर्किट हाउस में राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। विस्तृत चर्चा और सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूह को पृथक से भी आमंत्रित किया जाएगा। लोग अपने सुझाव ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में शामिल विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 27 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। इस संबंध में मंडल ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। राजधानी रायपुर में आज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की प्रदेश स्तरीय दो दिवसीय बैठक होगी। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल और 10 विद्युत और यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। नियुक्ति के साथ ही सभी चयनित अभियंताओं की पदस्थापना भी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और रणजी खिलाड़ी राजेश दवे को आगामी महिला टी20 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सरगुजा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और बिलासपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर अगले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज डोंडी लोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ में धान की लहलहाती फसलों पर जब सावन उतर आता है तो धरती पर हरियाली की चादर से बिछ जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा तब होता है जब खेतों पर भंवरों की तरह उड़ते हैं छोटे छोटे ड्रोन। इन ड्रोनों से खेत पर खाद का छिड़काव किया जाता है और इन्हें उड़ाने वाले हाथ होते हैं ड्रोन दीदियों के। किसान अपनी खेती के रकबे के अनुपात में खाद छिड़काव की मात्रा तय करते हैं और फिर इनके छिड़काव का जिम्मा सौंप देते हैं प्रशिक्षित ड्रोन दीदी को। छत्तीसगढ़ में नमो ड्रोन दीदी योजना ने महिला स्वावलंबन को एक नई दिशा प्रदान की है। सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आधुनिक कृषि ड्रोन उड़ाने की 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग देती है और ड्रोन खरीदने के लिए 8 लाख तक या ड्रोन की कीमत पर 80% की सब्सिडी। ड्रोन दीदी बनने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है।
1: मेरा नाम दिनेश गांधी है। मैं इफ्को राज्य कला रायपुर में उप प्रबंधक विपणन के पद पर पदस्थ हूँ और आज हम लोग बात कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी के विषय में कि किस तरह से नमो ड्रोन दीदी का चयन होता है और किस तरह से वो ड्रोन को लेके काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ड्रोन दीदी के लिए क्या क्राइटेरिया होती है कि कैसे वो ड्रोन दीदी बनती है महिलाएं। तो ये इफ्को के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसमें हम लोग NRLM जो होती है स्वयं सहायता समूह उससे जुड़ी हुई जो महिलाएं होती हैं उनको इसमें प्राथमिकता देते हैं और उन्हीं महिलाओं को लेते हैं जो NRLM से जुड़ी हुई हो। दूसरा, उनका 12वीं पास होना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। साथ ही वो काम करने की इच्छुक हो क्योंकि यह काम जो है वो किसानों से और खेत से संबंधित है तो उन्हें ड्रोन का कार्य जो है ड्रोन पायलट का वो खेत में जाके करना होता है तो उनकी इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। इसके अलावा जब हम उनको चयन करते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो 15 दिन के लिए उन्हें माधोराव इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ग्वालियर में वहाँ ट्रेनिंग लेनी होती है ड्रोन पायलट की जिसके बाद ही उन्हें ड्रोन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये थोड़ा कठिन ट्रेनिंग होता है और उसके एग्जाम में

परीक्षा में पास होने के बाद ही उनको ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि वह महिला उस परीक्षा को पास करने में सक्षम है कि नहीं है, या उस ट्रेनिंग को पास करने में सक्षम है या नहीं। अगर वो ट्रेनिंग पास कर लेती है, ड्रोन पायलट का लाइसेंस उनको मिल जाता है, उसके बाद में 2 दिन का फील्ड में खेत में हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग होती है ड्रोन को लेके, उस ट्रेनिंग के बाद ही उनको इफ्को के द्वारा ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो किसानों के खेत में जाके ड्रोन से नैनो उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां आदि का छिड़काव कर सके और किसानों को इसके लिए सुविधा मिल सके। तो ये हो गया उसमें क्या क्राइटेरिया है और कैसे वो ट्रेनिंग ले सकती है महिलाएं। इसके अलावा जो इसको उनको ईवी ड्रोन देती है, साथ में एक स्पेयर, एक सेट बैटरी स्पेयर में देती है अलग से, ताकि वो बैटरी को बार बार बदल के उसका कंटिन्यू इस्तेमाल कर सके। और ड्रोन का जनरली एक एकड़ को वो 5 से 7 मिनट में छिड़काव कर देता है, और एक एकड़ के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके लिए बैटरी को बार बार जो है, एक बैटरी एक बार फुल रिचार्ज करने पे 3 एकड़ तक छिड़काव करती है। तो एक जो स्पेयर सेट ऑफ बैटरी है उसको हमें रिचार्ज करना होता है, तो उसके लिए इसको ने डीजल एक जनरेटर भी होंडा का प्रोवाइड किया है, तो वो तब तक जो है उसको चार्ज कर सकती है जब तक कि दूसरा बैटरी खत्म नहीं हो जाता। तो इस तरीके से वो एक दिन में 8 से 10 एकड़ बड़ी आसानी से स्प्रे कर सकती है, या 20 एकड़ तक कई महिलाएं जो है, अगर मौसम साफ रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो 20 एकड़ तक भी एक दिन में स्प्रे किया जा सकता है। और इसमें हमने मिनिमम जो है वो 400 से 500 रुपए तक महिलाएं जो है वो एक एकड़ का स्प्रे कर लेती है किसानों से, और एक दिन में 20 एकड़ करती है मतलब 6000 से लेके 5000 से 6000 रुपए तक का वो प्रतिदिन अपना आय लेती है इससे। और ये उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो रहा है। जो महिलाएं बेरोजगार हैं और कुछ अपने स्तर पे करने की इच्छुक हैं, तो वो साल में 200 दिन तक ड्रोन का स्प्रे कर रही है, और 5 लाख से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का इससे आय ले

0: छत्तीसगढ़ में बोई जाने वाली सभी किस्मों की फसलों की अच्छी बढ़वार और भरपूर पैदावार के लिए खादों और कीटनाशकों के छिड़काव की समय समय पर जरूरत पड़ती है। इसके लिए महिलाओं को केंद्रीय एजेंसियों या संस्थानों के माध्यम से ड्रोन संचालन का तकनीकी प्रशिक्षण और रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ड्रोन दीदियां खेतों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कीटनाशकों का कुशलता के साथ छिड़काव करती हैं। इससे किसानों का समय भी बचता है और मेहनत भी। इस तरह महिलाएं खेतों में अपनी सेवाएं देकर हर साल अतिरिक्त आय कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।
1: मोना चित्ररेखा साहू है और मैं बालोद जिला से हूँ। अब मैं ड्रोन दीदी के काम करता हूँ। ड्रोन दीदी जो है एक ड्रोन के माध्यम ले खेत मन में दवाई छिड़के के काम करते। अब ये योजना हमारे प्रधानमंत्री महोदय की योजना हरे, ड्रोन दीदी बना के ओमला सशक्त करना है। कम से कम ओला 10वीं पास होना जरूरी है। एकर से तो सरकार डहान ले हमन जैसे इफको कंपनी के तहत गए हवन तो हमारा 100% अनुदान मिली से भी इफको कंपनी के तहत में। और हमारा ड्रोन के साथ साथ में हमारा ईवी घला मिले हुए चार्जिंग गाड़ी घला का थे, उसमें हमारा लाने ले जाए सुविधा हो जाते। ये ड्रोन के प्रशिक्षण हमारा मिलते है। जैसे हमन गए रहे हमारे राष्ट्रीय इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी ग्वालियर, हमारे वहाँ 15 दिन के ट्रेनिंग दी सब। हमन थ्योरी प्रैक्टिकल ये करके कैसे करना है, कैसे उड़ाना है, यह सब चीज के वहाँ हमारा ट्रेनिंग दी सब। और वहाँ आए के बाद तो हमारे असली परीक्षा तो हमारे फील्ड चालू हुई सब खेत मन में। कबर हमारे वहाँ मैदान में ही सिखा रही सब 5 एकड़ को मैदान है बहुत बड़े वहाँ सिखा रही।

लेकिन हमन ला तो चलाना सिर्फ खेत मन में रही सब जहाँ फसल होते अधिकतर खेत मन में होते, तो हम मन के परीक्षा वहीं चालू हुई सब कि खेत में कैसे उड़ाना है। फील्ड ट्रेनिंग आ रही सब ट्रेनर कि कैसे उड़ाना है ये बस ला हमला 2 दिन के बस बताई सब। वो 2 दिन के बाद में ही हमन हा आज तक के कंटिन्यू करत करत आज मन अति कह हो गए कि हम दूसरा घर ट्रेन कर सकते हैं। चाहे किसान हो या जिन भी इच्छुक है लेने वाला वो मन डायरेक्ट कंपनी मन से भी ये ले सकते है। अब अगर योजना के तहत ये कर सकते है तो हमें योजना भी आते है, चाहे कीटनाशक हो कि निंदनाशक हो, चाहे आपके आजकल उर्वरक खाद मन भी आ गए लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म आते ना सब ड्रोन से हमन है स्प्रे कर। किसान भाई मतलब का रखते कि जब वो मतलब चाहे वो हर लिक्विड फॉर्म में डाले दानेदार में डाले वो मतलब खेत में उतरे लागते, अब खेत रहते गिल्ला तो मतलब माड़ी भर चिखला में उतरे लागी, अब चलना खेत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाते गिल्ला खेत मन में, ऊपर से उतना सारा मतलब लादन पकड़े लागते और चलना ज्यादा हो जाते। अब हमन का करते ड्रोन से हम छीते हम सिर्फ मेड़ में खड़े रहते और ऑपरेट करते हैं 1 एकड़ 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत कम्प्लीट हो जाते, समय बचत और प्लस हमें 10 से 12 लीटर के आसपास हम पानी आते एक टंकी में 1 एकड़ पर्याप्त है। दूसरा के पानी भी बचत हो जाते में, तीसरा हो जाते समय की बचत भी हो जाते। और कई ठाम का करते कि जब अपन छीतत रहते हैं कई बार ना चाहते हुए भी हवा है ये है के माध्यम से हमारे बॉडी में वो वापस वो हवा के माध्यम से उड़ के आ जाते, तो हमें स्वास्थ्य के भी बचत हो जाते। पैसा गलत कम लगते हैं हम जैसे कि एकड़ पीछे लेते 1 एकड़ की फसल के हिसाब से लेते हैं 300, 400, 500 हर फसल के अलग अलग रेट है। और जैसे हमारे मजदूर भाई मन जैसे छीतते तो वो मन का करते चाहे वो आधा एकड़ छीते चाहे 1 एकड़ अपन दिन भर के रोजी ली पांच की अब एक्स्ट्रा खर्चा वोकर हो जाता, इमें भी हमें बचत हो जाते भी ओकर पैसा के काबर हम सिर्फ 1 एकड़ पीछे ले था ना कि हमन हर रोजी पीछे नहीं लेन। बहुत अच्छे रिजल्ट मिला थे हमारे किसान भाई मन है ड्रोन से छिड़काव वाला बहुत अच्छा से अपना था और बहुत खुशी खुशी अपना थे कि हर चीज के मतलब फायदा मिला था कहीं जैसे सीजन रहते तो हम तो एकदम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं एडवांस बुकिंग बोले जाए तो चलत रहते कि हाँ आज ये किसान के कल वो किसान कैसे हमने एक शेड्यूल बना के रखन कि आज ये किसान के है करना है और कोई भी हो फोन के माध्यम से हम ऑर्डर लेते हैं। जिन किसान भाई मन लगला अगर छिड़काव करवाना है तो हम सब जगह से हर सोसाइटी मन में हमारा नंबर है, हर कृषि विभाग में हमारा नंबर है, हर जिला पंचायत जनपद पंचायत में जति बालो जिला के अंतर्गत ये है ना तो मन में सब में हम के नंबर है वहाँ देखा हुआ ओकर माध्यम से किसान भाई मन हमारे कॉल कर गए थे अपन ऑर्डर कन्फर्म करवा लेते। मैं तो दीदी मन ला यही कह सकता हूँ कि एती ओती भटके के सेती ले ये योजना जो है अति सुघर हवे कि बिना कहीं यह के बिना खर्चा ज्यादा में खर्चा घला नहीं हवे। दूसरा व्यवसाय जैसे चालू करते हैं तो हमारा लाखों रुपया लग जाते, ये ऐसे भी योजना हवे कि इसमें आप ला सिर्फ ट्रेनिंग के लागी और थोड़ा बहुत पैसा में 20% हमला अपना हेर लगाए पड़ते बाकी 80% तो हमला सरकार डाले अनुदान मिल जाते। तो ये इतना अच्छा योजना है जैसे महिला मन सशक्त हो सके लखपति दीदी और करोड़पति दीदी घला बन सकते।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ड्रोन आधारित कृषि को विशेष संबल प्रदान कर रहा है। राज्य के लगभग सभी महिला स्व सहायता समूहों की सदस्य आगे आकर ड्रोन दीदी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं और आधुनिक खेती को नई दिशा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के विकास का ये गौरवशाली अध्याय है जिसमें महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के लागू हो जाने से महिलाएं अब चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम कर रही हैं।
2: भुवनेश्वरी साहू, ग्राम परसदा, जिला बालोद, गुंडरदेही से मैं सिद्धि महिला स्वसहायता समूह

मुरसमुख नाम है। मैं उनमें से आज एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ, जिला की एक दिल्ली से ऑनलाइन इंटरव्यू हुई थी, वो इंटरव्यू के माध्यम से मोर सिलेक्शन हुई थी नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत, जिनमें की मैं ग्वालियर में रही के 15 दिन की ट्रेनिंग ले हूँ, जो की इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी से मैं 15 दिन के ट्रेनिंग ले हूँ। वो ट्रेनिंग में हमारे 15 दिन की ट्रेनिंग देगी से, जिन्हें की हमारे रिटर्न और फील्ड दोनों निकालना रही से, वहाँ से जब हम दोनों ही निकाल लें तो हमारे मन से सिलेक्शन नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत हुई से, और फिर 14 फरवरी से मतलब ड्रोन मिली से, फिर 14 फरवरी से ड्रोन मिले के बाद मैं निरंतर अपन कार्य करते गए हूँ। आज अपन छिड़काव काम करत हूँ, अब आज मतलब पूरा ड्रोन दीदी के नाम से अपन जिला ब्लॉक और पूरा छत्तीसगढ़ में जाने जाते ड्रोन दीदी के नाम से। हमला वहाँ सबसे पहले तो एक व्यवस्थित जीवन टाइम टेबल के हमला बताएगी से, और जो एक पायलट को जो ट्रेनिंग दे जाते आर्मी की, तो हमला ट्रेनिंग देगी से और वहाँ बताई थी की हमला ड्रोन ला कैसे चलाना है। सबसे पहले तो हमला रिटर्न मतलब जो लिखे थे पेपर है पर हम 2 दिन तक पढ़ाई करें, तीसरा दिन में हमारे मन के पेपर हुई से, जब ओला निकालें हमारे मन के फील्ड ट्रेनिंग हुई से, और वो फील्ड ट्रेनिंग के बाद हमारे मन के एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई से, उन्हें जब हम वो पेपर ला हम पास कर लें तब हमारे मन के शासन की योजना जो चला थी नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत हमला शामिल करेगी से। और यानी हमारे मन के साथ में जो हमारा जो ट्रेनिंग है उन्हें इसको के भी बहुत सहयोग है कि हमारे मन की ट्रेनिंग ला कराए, हमारे मन के बहुत साथ दे ही हमारे मतलब आज यहाँ सफलता तक लाए। मतलब यहाँ ड्रोन के लिए पैसा लगा नहीं लगे जी, मतलब मात्र अपना मन ट्रेनिंग हम जो गए हम ट्रेन में बस ओके बस लगा फिर रहना खाना हर चीज वही शासन से ही हो गए। हमारा ड्रोन में एक ईवी भी मिले, ईवी में पूरा सेटअप बॉक्स बना है, में जनरेटर है, जनरेटर के माध्यम से अपन बैटरी चार्ज करते हम ड्रोन लाए ले जाके लिए बैटरी वाला ईवी देगी। हम ड्रोन के मेन उद्देश्य ही सिंचाई जैसे कोई भी कीटनाशक है खाद है किसकी हम अलग छिड़काव करना है, लेकिन लिक्विड ये करना है, इन्हें का है एक महिला ला आत्मनिर्भर बनाना है ना। तो अभी शासन की योजना ये है कि जैसे कि कोई भी महिला सबसे पहली प्राथमिकता एक कारण भी समूह आदमी समूह से बढ़ के आगे बढ़े, मतलब कि ये महिला समूह है कि नहीं यही देखना चाहती, मतलब पूरा समूह के ना है हा? एक आदमी देखे समूह देखे कि नहीं आज एक समूह में जुड़ के महिला आगे बढ़ी देश के यही हरे ये अपन सेपरेट हरे समूह के कोई समूह से जुड़े है कि नहीं महिला इला प्राथमिकता देना है, काबर की एक पढ़ाई खुद ला करना है के नाम से लाइसेंस है ना। का है देखो जैसे हम अपन कोई भी किसान हाथ से स्प्रे कर रखे है ना, सबसे पहली बात है समय लगना है और पानी भी लगना है। एने का है जैसे ड्रोन से छिड़काव कर रखे तो जो काम हम लोग दिन भर में करना है वो अपन एक आध घंटा में सफल हो जाते, ओकर से का है किसान लोग समय बचत भी होते, और जो पानी हम जहाँ 200 लीटर के उपयोग कर रखन वो पानी हाँ 10 लीटर में हो जाते हमारे काम है, तो एक से का है किसान मतलब बहुत सहूलियत होते कि सही समय में ओकर सही काम हो पाते, जेकर से वाला अपन पानी है समय है साथ ही स्वास्थ्य के भी लाभ मतलब मिलते।

0: उपयोग से कृषि कार्य अब आसान हो रहे हैं। इससे किसानों को खाद और उर्वरक के छिड़काव में आसानी हो रही है। वास्तव में इस योजना के आ जाने से तकनीक में जिस तरह का बदलाव आया है, उससे खेती के स्वरूप में भी आशाजनक परिवर्तन हुआ है। ये सब बेहद सुखद है। किसान पहले अपनी खेतों में दिन रात मेहनत किया करते थे। अक्सर वे समय पर खाद पानी का हिसाब नहीं रख पाते थे, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ड्रोन तकनीक ने इस सारी परेशानियों से किसानों को मुक्त कर दिया है।
1: मोर नाम श्रीमती चंद्रकली वर्मा है। मैं हाँ ड्रोन दीदी हरा हूँ। किसान मन के खेत में जाके ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव करता हूँ, और एक से किसान मन भी बहुत खुश हो इसे, जागरूक हो इसे कि ड्रोन में हमन कुछ भी पेस्टिसाइड दवाई भी मिला के नैनो यूरिया डीएपी के साथ में स्प्रे कर सकथन। डबल मेहनत नहीं लगाए, एक साथ हो जाही इसे करके वो मन भी खुश और स्प्रे करवा तो आप मन के खेत में एक एकड़ ला 10 मिनट में स्प्रे करके दे देते। और नैनो डीएपी के उपयोग ड्रोन से करे में बहुत अच्छा।

होते वह हवा के साथ में जब प्रेशर के साथ उड़ते ना ड्रोन हा तो एक एक पत्ता मन हिलते तो ओकर अंदर तक के जाते जो यूरिया और डीएपी के स्प्रे है वह तो एकर से असर बहुत जल्दी करते हैं। हाथ वाले में थोड़े धीरे धीरे से करता ना तो ओकर से ज्यादा ड्रोन में मतलब अच्छा रिजल्ट है। तो ड्रोन में ही आप मन नैनो यूरिया नैनो डीएपी के स्प्रे करवाए की कोशिश करूँ और उपयोग करो लाओ। अपन हेल्थ भी बचाना है, प्रकृति भी बचाना है और अपन धरती मातल भी बचाना है कठोर हो। तो एकर लिए नैनो यूरिया नैनो डीएपी के उपयोग सब किसान भाई मतलब अपन खेत में करना बहुत जरूरी। सुबह मतलब हम लोग सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं, 11 बजे तक स्प्रे करते हैं, उसके बाद वहीं आराम करते हैं दोपहर में, उसके बाद शाम को फिर स्टार्ट करते हैं 3 बजे, फिर 6 बजे तक स्प्रे करके वापस। और इसका सही समय वही है और ड्रोन चलने का भी सही समय वही है। ड्रोन को भी सुबह से मतलब 11-12 बजे तक, उसके बाद शाम को चलाना है, दोपहर में ड्रोन भी नहीं चलाना है। मैं चंदखुरी फार्म के पास नकपुरा ग्राम है वहाँ के रहने वाली हूँ। मैं ड्रोन के ट्रेनिंग लेबर ग्वालियर गए रहे हैं, वहाँ 15 दिन के ट्रेनिंग हुई से माधव इंस्टीट्यूट में, वहाँ से मैं यहाँ ट्रेनिंग लेके आए हूँ तो मुला लाइसेंस मिली से। ओकर बाद फिर हम इफ्को के तरफ से ही फूलपुर उत्तर प्रदेश गए रहे हैं, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमो ड्रोन दीदी के उपाधि दी। और कुछ और एक्स्ट्रा इनकम नहीं था मेरा, मेरे पति जी का इनकम था। और जब से मेरे को ड्रोन मिला और मैं स्प्रे करना स्टार्ट की तो फर्स्ट साल ही मैं करीबन 700 एकड़ स्प्रे की, जिसे मेरे 2-2.5 लाख रुपए का इनकम। और उसके बाद रवि सीजन आया तो उसमें मैं 400 एकड़ स्प्रे की और अभी टोटल मेरा मतलब 1600-1700 एकड़ स्प्रे, जिसमें मैं 5 लाख तक का इनकम हुआ है।

0: छत्तीसगढ़ में महिलाएं नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीक की एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। ड्रोन दीदियां खेतों में पोषक तत्वों और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव करके किसानों का समय और श्रम दोनों बचा रही हैं। ड्रोन आधारित ये नई नवेली तकनीक खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। ये किफायती भी है और प्रभावी भी। इस पहल से खेती अधिक आधुनिक, आसान और तकनीक आधारित हो गई है।
1: मेरा नाम सीमा वर्मा है और मैं बिलासपुर जिले के मसूरी ब्लॉक सिपात पौड़ी की रहने वाली हूँ। मैं एनआरएलएम बिहान योजना से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह में 10 सदस्य है सर। तो एनआरएलएम समूह की एक योजना थी जो सरकार निकाले है एनआरएलएम के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी का सर, जिसकी जानकारी मुझे जीसी भारत के थ्रू पता चला। जैसे कि एक योजना है नमो ड्रोन दीदी का, तो दीदी आप अगर करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो ग्वालियर में दिसंबर में 15 दिन की ट्रेनिंग है, जिसका ट्रेनिंग लेने के लिए आपको ग्वालियर में रहना पड़ेगा 15 दिन। तो सर मैंने फिर सर मैं काम तो कर रही थी लेकिन मुझे कुछ और करने की इच्छा थी पहले से। मैं करना चाहती थी कुछ और करूं, कुछ और करके आगे बढ़ूं। जैसे मेरे पास इस योजना की जानकारी आई मैंने तुरंत हाँ कर दिया। और उसके बाद सर दिसंबर में मैं 2023 में ड्रोन दीदी के ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर चली गई, जहाँ पे 15 दिन रहकर ग्वालियर में ट्रेनिंग लिया सर। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम लोगों को सरकार और इसको के द्वारा फिर ड्रोन प्राप्त हुआ। और फिर मैं ड्रोन को फील्ड में लेकर सर किसानों से मुझे स्प्रे का ऑर्डर आने लगा। तो ऑर्डर आया तो सर हम लोग 1 एकड़ में 300 रुपए चार्ज करते हैं। तो फिर मैं स्प्रे करने के लिए खेतों में जा रही थी, सारे किसानों का स्प्रे कर रही थी। तो इससे किसानों को भी फायदा हुआ, क्योंकि उनको फायदा ही हुआ क्योंकि जो मजदूर थे उन लोग करवाते थे तो फसलों को नुकसान होता था। और ड्रोन चलाने से हम लोग मेड़ में खड़ा होकर ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किए तो किसानों को एक तो फसलों की नुकसान से बचत हुई और समय की भी बचत हुई सर। और इससे सर मेरी मैं ड्रोन दीदी की इनकम से मेरी इनकम में बढ़ोतरी हुई, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है।

खेतों में जब से ड्रोन उतरा है, तकनीक की कमान अब आ गई है महिलाओं के हाथ, क्योंकि यहाँ ड्रोन दीदियाँ दे रही हैं हाईटेक कृषि को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदियाँ अपने को धन्य मानती हैं, उनके कुशल हाथ अब किसानों के मददगार जो साबित हो रहे हैं। स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने

0: ये सिद्ध कर दिया है कि अब वे किसी से पीछे नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में नारी को मिल गए हैं पंख और सपनों को मिली है नई उड़ान।
1: आप हैं लोकमाता अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की पहली ड्रोन दीदी श्रीमती शांति विश्वकर्मा।
2: ये नमो ड्रोन दीदी जो योजना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारी महिलाएं हैं महिला समूह में जुड़ी हुई हैं SSG के थ्रू जो विहान योजना से है, तो उसी में ये सब महिलाएं लाभ उठा रही हैं। और ये मेरे को हो गया मतलब 2023 में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, हम लोग को ट्रेनिंग ग्वालियर से दी गई है, 15 दिवसीय था हम लोग का जो प्रशिक्षण है वो ग्वालियर से हुआ है हमारा 2023 में। अच्छा। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की मदद करना और मेन उद्देश्य तो ये है कि जो मेहनत किसान भाई लोग करते थे, जो डब्बा टांग के खेतों में काम कर रहे थे दिन दिन भर, एक एकड़ में उनको दिन भर लग जाता था, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब महिलाओं की भी मदद की है एक तरफ से और किसान भाइयों की भी मदद हुई है। और समय भी एक एकड़ में उनको दिन भर लग जाता था और यही ड्रोन से 10 मिनट लगता है अभी, और पानी जहां उनको 100 लीटर लगता था एक एकड़ में आज 10 लीटर में काम हो रहा है सर। ये पूरी प्रधानमंत्री योजना के तहत ही है नमो ड्रोन दीदी, इसमें हम लोग को पूरा फ्री है, इसमें हम लोग को आमदनी बहुत है, बारिश में तो हम लोग दिन में 3,000-4,000 एक दिन में कमा लेते हैं सर, बाकी समय में हम लोग का भी वही महीने का 20,000-22,000 रुपए तो मिनिमम कमा ही लेते हैं। हम लोग रख रखाव करते हैं और उसकी साफ सफाई है, देख रेख करना है, जब भी आते हैं खेत से तो हम लोग उसको फिर मेंटेनेंस करने का काम हमारा ही रहता है। खाद का छिड़काव के लिए हम लोग 300 रुपए ही ले रहे हैं प्रति एकड़। अच्छा। और जो बड़े क्रॉफ्ट है उसका 500 रुपए है, जैसे गन्ना है, केला है, पपीता है, राहर है, उसका 500 रुपए रेट है, और धान का तो सरकारी रेट है 300 रुपए। हम लोग तो अभी मतलब जो कमाई का सीजन रहता है ये बारिश का ही सब। इस योजना के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही फायदा उठा सकती हैं। ड्रोन तो एक ही है। अच्छा। जो मुझे मिला है लखपति दीदी योजना के तहत, और जिले में अभी ड्रोन दीदी मैं ही हूँ हमारे राजनांदगांव जिले में, और 2 भाइयों को भी मिला गया है तो वो भी है अपने क्षेत्र में, वो भी काम करते हैं। स्वावलंबन की जो योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बहुत सारा अभी रोजगार जो दिए हैं हमारी भारत देश की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, बस उसमें लाभ उठाना महिलाओं का काम है महिला समूह से जुड़कर। इसके तहत फिर मेरा नाम इसमें सेलेक्ट हुआ तो मैं ड्रोन दीदी बन गई। ये हम लोग को जनपद से ही आज इफको की तरफ से है ये। अच्छा। और जो ड्रोन भी मिला हम लोग को इफको द्वारा ही मिला है, इफको कंपनी से ही। एक ड्रोन की कीमत जो आयोटेक की कीमत है वो 10 लाख की है। अभी हमारे जो जिले से है कृषि विभाग वो भी मेरी बहुत मदद करते हैं। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा मैं भी गांव-गांव में जा रही हूँ शिविर में। अब ड्रोन दीदी बनने से तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। अभी तक तो मैं गृहस्थ जीवन में ही बिजी थी, अचार पापड़ तक ही सीमित थी कि बस अचार बनाना है, सप्लाई करना है, लेकिन जब बाहर निकली तो बाहर की दुनिया देखी और ड्रोन दीदी बनी हूँ तब से तो अभी तक मुझे छत्तीसगढ़ में दिल्ली तक सम्मानित किया गया है, वहाँ भी मुझे लोकमाता अहिल्याबाई का अवार्ड दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो एक सुखद संकेत है। आने वाला समय ये तय कर रहा है कि प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी बनकर अपना भाग्य स्वयं लिखें। ये है भी स्वावलंबन और स्व सहायता समूह का मूल सिद्धांत। ड्रोन दीदी बनकर महिलाएं कृषि के क्षेत्र में जो योगदान दे रही हैं, वो समानता और सम्मान का अनुपम उदाहरण है। लहराते खेतों के निगहबान बनकर दीदियों के ड्रोन जब नील गगन में परवाज भरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है बेहिसाब ख्वाहिशें अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही हैं उजाले की ओर।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद
1: उजाले की ओर। ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्वेता बोथरा के लिखे इस गीत को। जावेद अली, पलक मुच्छाल की आवाजें हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में आयु श्रोताओं, आप सुनते हैं आशीष कौर, सचिन जिगर और साथियों के स्वर में जिगर सरैया का लिखा यह गीत। संगीत सचिन जिगर का है और फिल्म है आंख मिचोली।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

अब दिल्ली दूर नहीं। श्रोताओं, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाजें हैं और गीत लिखा है अजय सिंह ने।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पापा।
3: हाँ बेटा।
2: आप ये अपनी अटैची क्यों जमा रहे हैं?
3: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
2: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
3: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
2: आप जा कहाँ रहे हैं?
3: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
2: ओह, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
3: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
2: आप भी लाती हूँ।
3: पता नहीं क्या ला रही है।
2: ये भी रख लीजिए।
3: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
4: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास।
5: कार्यक्रम में आए श्रोताओं, अब सुनते हैं शिल्पा राव, विशाल मिश्रा और साथियों के स्वर में तनिष बागची का लिखा और संगीत में बद किया गया ये गीत। फिल्म है क्रैंक।

0: क्रैंक, इस फिल्म का गीत आपने सुना शिल्पा राव, विशाल मिश्रा और साथियों के स्वर में। गीत और संगीत तनिष्क बागची का था। और इसके साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने के इस अंक को देते हैं यहीं विराम। और आइए अब जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं बिलासपुर जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर कार्यक्रम में आप सभी

0: स्वागत है। साथियों, आज बिलासपुर शहर में दो छोटी छोटी रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनमें पहली रैली शहर के वार्ड क्रमांक 63 और 65 के लोगों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में प्रातः 11 बजे नूतन चौक सरकंडा से चलकर सीपा चौक, मामाया चौक, इंद्र सेतु, नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगी। वहीं एक दूसरी रैली छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिलासपुर के सदस्यों की है, जिसके अंतर्गत आज दोपहर 2 बजे सभी कोनेर गार्डन में एकत्र होंगे तथा यहां से रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपेंगे। दोनों ही रैली के सभी सदस्यों से अनुरोध है, यह सुनिश्चित करें कि रैली से आम यातायात तनिक भी बाधित न हो, सभी सड़क के एक किनारे चले। इसके साथ ही शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वैसे तो ये वर्षा ऋतु है, किंतु विगत 2-3 दिनों से रुक रुक कर लगातार जिले में वर्षा हो रही है। इस वर्षा से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक चलें, विशेषकर दो पहिया वाले विशेष सावधानी बरतें, धीरे चलें। यदि किसी पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो तो थोड़ा भी खतरा मोल ना लेवे, क्योंकि कई बार एकाएक जल स्तर बढ़ जाता है, तब संभाल पाना कठिन होता है। साथ ही स्कूली बच्चों को विशेष समझाइश भी दे रहे कि शॉर्ट कट के चक्कर में नदी नाला पार कर आना जाना बिल्कुल ना करें, हमेशा निर्धारित एवं सुरक्षित रास्ते से ही स्कूल आना जाना करें। शॉर्टकट के चक्कर में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हमेशा ऐसे खतरे से बचकर रहें। हाल ही में इस प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। दोस्तों, करकसार या कान फोड़ो तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर सभी के लिए हानिकारक हैं, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में यह वर्जित है, दंडनीय है। बचकर रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर का पुनः प्रसारण।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 8:15 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम। रायपुर से ही रिले करेंगे शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आज शाम 5:05 पर सुनिए कार्यक्रम साहित्य की, प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
0: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
0: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
0: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
0: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
0: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
0: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
0: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
0: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
2: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
0: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
2: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
2: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
0: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे
2: जी।
0: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर है।
2: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे

0: सैनिकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांक योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
0: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांक समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
1: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
0: जी,
1: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
0: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
1: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
1: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
0: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी लग रहे
3: हैं, हमारे घर के सारे सामान गिर गए
2: हैं। अरे
3: हो गई है
2: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
4: सारी फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ

0: नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा, काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
2: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी में।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी दूषित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
2: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारे सामान इन्हें जल्दी से ऊपर ले
7: जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो।
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना। सांप

0: ध्यान से संभल कर।
1: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
2: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
3: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
4: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगीं और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।

0: आपने मुझे बुलाया मैम?
1: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
0: जी कहिए मैम।
1: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
0: मैम अच्छा चल रहा है।
1: गुड।
0: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
1: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
0: जी मैम।
1: तो तुम्हें एक काम करना है।
0: जी।
1: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
0: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
1: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
0: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
1: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू मैम।
2: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
3: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
2: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
3: वर्ष था 1977 का जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
2: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
0: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
0: लेकिन सर मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
0: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
4: अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
0: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
0: ओह, थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
2: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: आज तो बड़ा मजा आएगा दौड़ देखने में।
6: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है।

0: पीटी उषा सबसे आगे निकल गई।
1: उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गुंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
2: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
2: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
2: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
2: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: चेतना,
3: जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। दिन के 11:30 हुए हैं। 11:55 तक अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। और श्रोताओं, आज दिन में 4 बजे सुनना ना भूलें कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। आज आप इसमें सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। तो जरूर सुनिए ये कार्यक्रम। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं अल्ताफ राजा की आवाज में, दिल के टुकड़े हुए हजार, ये एल्बम का नाम है। अरुण भैरव ने इसे लिखा है, अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का संगीत।

0: जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की लिखा ये गीत। गोल्डी ने इसे संगीतबद्ध किया है, एल्बम का नाम तू ही मेरे रब की तरह है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी

आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत, गीत संगीत ललित सेन का, एल्बम का नाम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी तो नजर मिलाओ, इस एल्बम का गीत अब सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में, रियाज और रहमान।
3: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 11:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार के लिए जुड़ेंगे रायपुर केंद्र से।
4: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन से पहले आज रायपुर में आयोजित हो रहे स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हो रहे हैं। वे महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 67,28,918 महिलाओं के खातों में 631,38,37,700 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके बाद वे बालोद जिले के दौरे पर रवाना होंगे। यहां डोंडी लोहारा के लाल रघुवीर सिंह मिनी स्टेडियम में आयोजित मातृशक्ति सम्मान समारोह में

0: शिरकत करेंगी। वहीं करीब 5,000 बिहान दीदियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। रायपुर लौटने के बाद वह भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई सिस्टम का शुरू होना भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को देश भर में कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से देश भर में 1,500 से ज्यादा स्थानों पर युवाओं, खिलाड़ियों और शिक्षण संस्थानों को एक साथ लाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी युवाओं से सीधा संवाद करेगी। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित न्यूज सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में आज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय बैठक होगी। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सरगुजा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में शामिल विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 27 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। शाम 5 बजे तक अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई

0: प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चांद का टुकड़ा इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। महेश और किशोर ने इसे संगीत से सजाया है।

0: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन के हवा,
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

0: रही?
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
1: महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं येसुदास और अनुराधा पौड़वाल के आवाजों में साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत। इंदिवर की रचना, उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: बेवफा से वफा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: पंडित की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है। आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम अब क्या होगा।

इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी हाँ साथियों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम एक पहेली लेकर आते हैं इबारत के रूप में। आपको बुझानी होती है पहेलियां और बताने होते हैं वो शब्द जिनसे आज गीत बजने वाले हैं। तो चलिए जान लें एक बार की कौन सी है वो पहेली और फिर आप बताएंगे वो शब्द। ध्यान से सुनिएगा। बात एक रात की थी, आसमान में चांद निकला था, खिड़की पर बैठी जो

युवती अपने साजन का इंतजार कर रही थी। हवा चली तो दिलवर की याद आई, याद आई तो नैना भर आए। तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। दिल ने कहा, वो आ गया। पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इस पहेली को लेकर आप सभी ने कई सारी बातें लिखी हैं और उन कमेंट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक बात हम आपको आज की इबारत को लेकर बता देते हैं। तो वो बात ये है कि अक्सर हम जब पहेली बताते हैं, कोई पहेली सुनाते हैं या इबारत पढ़ते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं उनसे कोई भी गीत हो सकता है, मगर आज के जो गीत हैं उनसे कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना आज के कार्यक्रम में आपको क्या करना है। तो यूं तो अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताती हूं, जैसे ज्योति शब्द से हो सकता है आप समझे ज्योतिष कलश छल के ये गीत बजेगा, और फूल से शायद आप समझें कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गीत बजेगा। मगर नहीं, आज जो गीत बजेंगे वो कहानी के रूप में होंगे, यानी कि वो गीत ना सिर्फ शब्दों से जुड़ते हैं बल्कि पूरी पहेली की कहानी से जुड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। पहचानिए वो शब्द।

कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हों तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथ ही लिखते हैं आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण, वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है। बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है, जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है। जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार, सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं, इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अनजान और प्रकाश मेहरा ने।
1: रात प्यार की,
0: एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है।

0: और हवा के झोंकों से उसके नैन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है। और ऐसे में हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो वियोग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है। तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं दो बदन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए। तो इसमें याद शब्द था, और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में, उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना दिना दिना।
0: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, कैफ

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो। मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो, जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं।

इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं, और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है, परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

ऐसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा आगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों

0: को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 230,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
3: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनी

0: को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
1: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80

0: करोड़ अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: आईएमडी रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना चश्मे बहादुर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

बंदर मेरा करता है कि देखो रॉक एंड रोल, नए जमाने की इसको भी लगी ये बीमारी, सदके बच के ओ

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कि धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सुनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे हाँ। ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता, कह रुको रुको फेंको मत।

0: फेंकना मत। वे पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है।
1: उन्हें तो हम खास तौर पे संभाल के रखते हैं।
0: हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं फेंकना मत। कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमके कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे
1: बिल्कुल
0: ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह।
0: या फिर वो
1: जी
0: अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो कि सह संस्थापक हैं एमपीआर व्हीकल्स की। उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
0: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
1: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना कि
0: मजेदार।
1: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे, वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो
0: अरे
1: जाते
0: अभी तो कल
1: हैं।
0: ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए। या फिर करेले सपने खाते तो भी 1 किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को, यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया
1: इसे तो
0: सब्जी
1: हम ही
0: लाने
1: करेंगे
0: के
1: असली।
0: लिए।
1: बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सहेज के रख भी नहीं सकते कि
0: फेंक
1: भाई
0: भी नहीं
1: चलो
0: सकते
1: अगले
0: और
1: दिन
0: रख
1: खा
0: भी
1: ले,
0: नहीं
1: ऐसा भी नहीं।
0: सकते।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सकें।
0: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले
1: हाँ
0: अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी
1: बिल्कुल
0: हंसेंगे उन अनुभवों को पढ़ के।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
0: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ। पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
1: या
0: क्या।
1: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी, तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
0: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है, छोड़नी। हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। तो
1: और
0: आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने,
1: प्रेरणादायी
0: बिल्कुल, जिन्होंने
1: जी।
0: जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो, जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई, जिन जो संस्था सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, कि यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण

0: और अर्धशहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल, उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल, अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांग जन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीए ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक पर्यावरण रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूं।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देख कर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तैर सका कर फ्री में नहीं लाता। कितनी
1: बहुत
0: अच्छी।
1: अच्छी बात है, सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज। वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर, पत्नी हो या माँ हो, उसका मुआयना करती हैं। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं। अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता
0: और एक साथ ही
1: है।
0: कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है, अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कही है। और एक और मैं श्रीतंश लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, पूरे सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं।

0: जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं। उसी उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ और ही बनाना पड़ा है। यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी, लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा। हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस से।
1: एक
0: तो
1: साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही,
0: नहीं, आप पढ़िए।
1: एक एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है, और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी, और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं, मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं। यानी देखिए दोनों दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी, लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोक झोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
1: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नापतुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं, ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं।
0: अच्छा। और साथ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है, ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता, लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं, वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
1: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। ये बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं, और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
0: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किनकी बात लेने जा रही हो
1: हाँ,
0: सनाली?
1: आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि ये पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के
1: सुना
0: बाद
1: लेकिन
0: हम
1: बताइए।
0: हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर बहुतेरे मोल भाव हुआ कर फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी
1: बहुत
0: अच्छी
1: अच्छी बात,
0: बात है।
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते, मनपसंद चीज ना मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, अब क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना,
1: बिल्कुल,
0: डांट खाने से अच्छा ऑप्शन है।
1: पहले बात कर लीजिए आप।

0: एक साथी
1: हाँ
0: कहते कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती
1: अच्छा
0: हूँ।
1: हाँ बिल्कुल, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है, कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देख कर सब्जी खरीदते हैं, तो कुछ कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी
1: गीत
0: है।
1: सुनना है।

0: घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है, तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है, तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। यह विषय हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
0: क्या बात है। एक साथी कहते, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है इन्होंने।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से, जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पूरा
0: कॉकरोच
1: वातावरण
0: हो जाएंगे।
1: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले 1 साल से इस्तेमाल में नहीं आई है, उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करे।
1: बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। यानी कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
1: वाह, इन्होंने तो गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों, छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल, बरगद के पेड़, ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के
0: जी।
1: लिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही
1: बिल्कुल।
0: करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
1: एक
0: आरती
1: गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

ताना तछम तछम सच सिखाते सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है, तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है, ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं।
1: ये ना बहुत
0: हाँ
1: उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है
0: हाँ
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जो बर्तन
1: रखना भी
0: होते हैं पुराने
1: चाहिए।
0: दिए
1: और अब
0: के।
1: तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें हैं ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे,
0: हाँ
1: बीच के जमाने में, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की चीजें
1: खासकर
0: हैं,
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक
1: थैलियां,
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक की
0: बिल्कुल भी आप
1: बोतलें,
0: बिल्कुल मत रखवाइए।
1: रद्दी रद्दी के जो पेपर हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे
0: हाँ
1: भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है,
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं, लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं, और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल
1: यानी
0: दीजिए।
1: दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है, आप खुद देखिए अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत

0: ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भाई सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम इन्हीं सभी कामों में
1: बिल्कुल
0: उलझे
1: उन्हीं
0: रहते
1: पे लगे रह जाते हैं।
0: हैं। तो हमें इन सब बातों को
1: बिल्कुल
0: ध्यान देना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
0: हाँ, ये तो बात बिल्कुल
1: ये बार
0: सही
1: बार
0: कही आपने
1: कहेंगे क्योंकि
0: कि
1: हम
0: जब
1: लोग
0: हम
1: ये
0: खाली रहते हैं ना, तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है, तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए, जैसे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो, और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है,
1: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया है ना,
0: समझाया
1: वर्णन किया
0: जी।
1: है। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे जिस तरह से बताया, तो वही बताने उस बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने थे, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से, कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
0: बिल्कुल सही
1: दुखों
0: कहा।
1: को नहीं, दुखों को, ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
0: हाँ, तो आप क्या करना है, एक
1: गीत
0: गीत
1: सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं, गीत।

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के
1: आप
0: बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मार्ग

0: बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो, इसके बाद अगर मकान मालिक किराए लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी ही
0: बिल्कुल
1: बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द
0: जी
1: या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे, तो इसे ये मुहावरा कहा जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और मत
1: बल्कि
0: करिए।
1: मरहम का काम करें अपने
0: बिल्कुल
1: शब्दों के माध्यम से। और
0: जी
1: अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और
1: बिल्कुल।
0: बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप,
0: और
1: और
0: विविध भारती सुनते रहें। और हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ, ऐसे ही हमारा वही हम भी खेलते थे वो। हाँ, सारी चीजें गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और उस
1: मिट्टी में
2: वो वाला। हाँ, वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
2: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इस तरह

0: का
1: नैतिकता बहुत
0: हाँ
1: सिखाई
0: बहुत
1: जाती
0: सिखाई
1: थी
0: जाती
1: बचपन
0: थी।
1: में।
0: माँ
1: जी
0: बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
0: मेरे
1: तो
0: माँ
1: कौन
0: बाप
1: सी गांव की
0: दोनों,
1: बात है ये?
0: ये जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहां
1: जी,
0: गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
0: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती था, तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं हमने सुना है, हाँ। गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, हाँ। कमाल
0: जी। आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी जी
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
1: राकेश देशमुख हैं।
0: आपकी कैसी
1: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना

0: चाहता हूं क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी जैसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया।
1: हाँ।
0: बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
1: अच्छा।
0: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है। और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है, एक्टिंग बड़ी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला। काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी हैं, एक एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल।
1: जी, अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी, इन सब इंस्पेक्टर।
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
1: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप। वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं। और इतनी बार पुलिस की,
0: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि वो पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी।
0: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा, धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बहुत दी फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो रामगोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए। बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं। अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमित अमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ, देखता हूँ। तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल, यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन। मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर तो एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन।
1: क्या बात है,
0: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
0: याद है तुमको तुमने कहा था तुझे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
3: क्या

0: कसम वो इरादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने
0: इन्होंने मेरा
1: आपका?
0: बहुत बार दिल तोड़ा
1: बहुत सारा। बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
0: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
0: समय
2: बोल
0: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
0: बहुत
2: हजार
0: ज्यादा पुराना
2: हुए,
0: गाना है
2: कोई
0: वो
2: यहाँ गिरा कोई। अरे
0: यहाँ
2: लेकिन गाना कमाल है
0: गिरा।
2: ये।
1: नहीं,
0: हाँ,
1: अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
0: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
1: वो
0: पैर
1: तो
0: तक पसंद
1: पसंद तो
0: करते
1: शादी के
0: हो।
1: पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
0: नहीं,
1: पत्नी
0: वो
1: में।
0: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती
2: लेकिन अब हम क्या उससे
0: उनके
2: ऊपर उठ चुके हैं।
1: बारे
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए, फिर
1: में
2: दोबारा से प्यार हो गया। तो अभी
1: ऐसा
2: हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: अच्छा एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा बहुत
2: कभी ऐसा
1: बढ़िया।
2: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
0: रात
2: को।
0: गई बात गई।
2: हाँ गई बात गई,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं, अभी हम कितनी उम्र बची है, इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
2: बिल्कुल
1: का।
2: बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
0: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें, जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर
0: नहीं,
1: रखने
0: ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज
1: की। अच्छा
0: घर में, उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं। मैं

0: जबकि इतर बितर करके रखती हूँ
1: अच्छा,
0: चीजों
1: क्या
0: को।
1: बात है, बहुत
0: मैंने
1: बढ़िया।
0: इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
1: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं, कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए, कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है, फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत
1: सच
2: बेकार
1: बोल
2: लगती
1: रहे
2: हैं।
1: प्रतिभा जी? चलिए मान
0: हाँ
1: लेते हैं।
0: करती हूँ मैं
1: बताइए
0: ऐसा।
1: अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
0: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद
1: नहीं नहीं आपको अपने से
2: है?
1: बताना
2: जो
1: है।
2: कुर्ता हमेशा पहनता हूं।
0: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं,
1: का रंग।
2: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था एनएसडी में, वो जो उसमें लगते थे ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई
1: ओ
2: है।
1: हो, क्या बात
2: वो ड्रेस
1: है।
2: में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो
1: जी
2: राजस्थान के या किसी
1: हाँ
2: फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस,
1: हाँ
2: वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी,
1: क्या बात है।
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो
1: क्या
2: टीवी नहीं है, रेडियो है,
1: बात
2: कि अरे नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर
1: है।
2: लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ।
1: श्रोता सुन रहे हैं वो
2: हाँ
1: इमेजिन कर
2: हाँ
1: रहे
2: हाँ हाँ तो
1: हैं।
2: वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर, तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो एनएसडी वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
0: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: भूल
0: वैसे
1: जाते हैं,
0: मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: मतलब आप गांठ रख लेती हैं मन में।
0: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी
2: अरे
1: मान रहे
2: बेकार में बदनाम है पुरुष,
1: हैं।
2: काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, वो हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए,
1: देखिए यहाँ
2: सारी
1: दुल्हन
2: उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म, इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और
1: जी
2: हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई पांच पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे पांच या छह
2: हाँ हाँ
1: फिल्में
2: बिल्कुल, क्यों नहीं,
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात कोई खास याद साझा करना।
2: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर श्याम
1: श्याम
2: बेनेगल
1: जी
2: के,
1: जी।
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी,
1: जी
2: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
0: उसमें मैंने भी
2: बहुत,
0: छोटा सा
2: उसमें
0: रोल किया
2: प्रतिभा ने
1: था।
2: भी एक
1: जी
2: रोल किया,
1: जी
2: बहुत ही
1: जी
2: बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको,
1: जी।
2: कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो
1: बिल्कुल
2: बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी,
1: जी
2: पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है,
1: जी
2: 5 साल लगे बनाने में,
1: क्या बात है,
2: लेकिन
1: बहुत
2: बनाई,
1: बढ़िया
2: अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
1: जी। आपने डायरेक्ट भी की है
2: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को
1: और
2: प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
0: मुझसे आया
1: जी
2: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की,
1: जी
2: उसमें एक कहानी थी, एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है, और वो अपने बच्चों को
0: बहुत
2: सब कुछ
0: फेमस
2: दे
0: प्ले
2: देता
0: है
2: है।
0: मराठी का नट सम्राट।
2: हाँ तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर

0: की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था। फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला,
1: जी जी
0: नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी जी जी
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी। तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है,
1: जी
0: गाने भी बहुत हैं। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया,
1: जी
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद,
1: जी
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन, उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा
1: जी
0: बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए, यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को?

0: राउडी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस, शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है, अक्षय कुमार, उसको पता चलती है,

0: तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है, और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर,
1: जी
0: और ये
1: जी
0: लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो वहाँ गए थे शूट करने,
1: जी।
0: अच्छा रहा।
1: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए। आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं,
0: जी
1: आप
0: हाँ,
1: और प्रतिभा जी
0: प्रतिभा
1: मिलकर?
0: उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है। अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं। पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी। तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में, और गाने, वीडियो सॉन्ग्स, और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है।
1: जी
0: तो इस तरीके का स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं। तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं
1: जी
0: टोटल, जिसको हम देख करके सेलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास। फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को,
1: जी जी
0: जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म्स का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं, और वो फिर रिजल्ट देते हैं। फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं, और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है। तो वेदा कुंभा में, बॉम्बे में, हर
1: पुरस्कार
0: दिसंबर को
1: भी
0: हर
1: देते
0: साल
1: हैं।
0: तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार, ओपनिंग फिल्म। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
1: जी। बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
0: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था, हवाई जहाज, हाँ, उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा सा। वो एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है, तो उसका ये
1: जी,
0: रोल था मेरा।
1: बिल्कुल।
0: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है,
1: जी
0: ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो। तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं,
1: जी जी
0: और बड़ा अच्छा वो करते हैं। तो इसीलिए
1: समाज को।
0: प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं। तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और मो ओपनिंग फिल्म, और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
0: जी
1: हमने
0: जी
1: भी देखी।
0: तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया है, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है, तो हाँ
0: कैसा एक्सपीरियंस होता है इतने सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक
1: हाँ
0: एक मुखिया की तरह करना?
1: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म अमोआकाएक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहाँ था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो, मेरा एडिटर था उस, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
0: क्या बात है।
1: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे, मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी, दो चार लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं। शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

0: जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके
1: जी
0: होंगे
1: जी
0: या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया
1: जी
0: और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
1: जी
0: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली
1: जी जी
0: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
2: लॉकडाउन था उस वक्त
1: जी
0: लॉकडाउन।

0: जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी
1: बिल्कुल
0: हो सकते
1: बिल्कुल होना ही चाहिए।
0: हैं। और प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
1: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर
0: अच्छा वो
1: है।
0: प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
1: नहीं नहीं कभी नहीं मिला। नहीं हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना।
0: कोई रोल दे दो हमें भी, ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों के नाम
1: मतलब
0: बताइए।
1: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है,
0: जी
1: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है ना। ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो,
0: जी
1: नो
0: जी
1: एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे, और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
0: अब एक गाना सुनते हैं, फिर
1: हाँ
0: थोड़ी सी बातें और करते हैं।
1: जी,
0: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
1: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी? उन्होंने
1: मैं
0: तो बताया,
1: इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान
0: जिक्र
1: तो
0: करना
1: ऑफ कोर्स
0: चाहती हैं?
1: मेरी बहुत
0: और
1: ज्यादा
0: कुछ फिल्मों के
1: फेवरेट
0: नाम?
1: है, और अब तक छप्पन, और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की, कि ये रे ये एक्टिंग
1: हाँ
0: ठीक
1: मैं
0: नहीं थी?
1: बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है?

0: यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान
1: हाँ
0: प्रदान
1: मुझे
0: हुआ?
1: तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का,
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देती है, सिखा देती ना जो कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूं अब।
0: हाँ।
2: मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था सब मराठी बोलते थे, इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी, फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे, इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें। तो मैं हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलते थे, मजा शेमड़ा, मजा गाढ़ो, मजा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए, अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो, समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
1: मैं तो मुझे
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते तरीके, हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली, कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया, मान लो तो बुरा मान गए, और मैं सोचू यार मैं तो मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है, तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल
0: सही रहते हैं। ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
0: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
1: नहीं, नहीं इतने भी शरीफ नहीं है।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
2: हाँ।
0: तो
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा मतलब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है,
1: और हमारा ही खाना
0: वाह।
1: हमारे ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा दे खा जाते थे।
0: अच्छा, तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है, बना
0: बना के
1: लेता हूँ।
0: खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा
2: खिलाते हैं।
0: जी, तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे
1: नहीं
0: श्रोताओं
1: नहीं
0: को।
1: बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए और साइकिल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर अंदर बाहर, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाए, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी, गली में 20 मकान थे, हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान, उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे
0: क्या
1: रंग
0: बात।
1: की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना
0: क्या
1: मजेदार दिन था वो कि
0: बात
1: मैं बता नहीं सकता।
0: है।
1: कट्टू

0: बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम। तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में, दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
2: जनरेशन
1: बाप
2: एक
1: रे,
2: खिलौना बहुत कीमती हुआ
1: हमारा,
2: करता
1: हम
2: था
1: तो
2: अब।
1: 20-20 पैसे, 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
2: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: नहीं,
2: यशपाल
1: मैं
2: जी अपने आप
1: तो
2: बताइए।
1: सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम ना दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता। जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं
2: जी
1: और हम
2: जी
1: यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास करके, हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
2: जी जी
1: तो
2: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए, और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर,
2: जी बिल्कुल
1: करो मत, हो जाओ।
2: बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया, जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं। कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की नहीं,
1: या?
2: मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल। और
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग, बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
0: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो
2: जइयो
0: कहाँ
2: कहाँ
1: से
2: के
1: हुजूर।
2: हुजूर। क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता
2: नमस्कार,
1: जी, थैंक यू
2: थैंक
1: सो
2: यू सो
1: मच,
2: मच।
1: सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी हम रिले अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा

सुबह के कार्यक्रम FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF अनुभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंड्रा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ा डाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये पिंडारी, कोटराही, मदनपुर, गुरमुटी, सोनहत, नवगई, गैना, धौरा, बिशुनपुर, सिलाजू, उचेरवा, चीनिया, महावीरगंज, इंदरपुर, शिवपुर, रामपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, घासीडी, सरगा, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चूंदी, कुंजारा, पाकर टोली, श्री टोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी, शाही डांड, कर्मा, नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल, धरमजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, उड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये कांसी पानी, जाम पानी, साजा पानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के देवपुर और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, कोठारी, तालदादर, नवा गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुढ़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल

0: करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
2: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ अनुभाग सरगुजा। शाम के 5:06 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की। इसमें आप सुनेंगे आधुनिक नवगीत परंपरा में युगबोध और सामाजिक चेतना विषय पर जाने माने साहित्यकार और गीतकार डॉक्टर अजय पाठक से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत।

0: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में जो विचार हैं, जो अभिव्यक्ति का सूक्ष्मतम माध्यम है, वो कई तरीके से है, लेकिन कविता एक बड़ा ही प्रभावी माध्यम है जिससे हम अपने मन को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारे आसपास जो घट रहा है और उससे हमारे अंतर्मन में जो प्रभाव पड़ रहा है, उस सब को मिलाकर यदि उसकी कोई सूक्ष्मतम और प्रभावी अभिव्यक्ति हो सकती है तो कविता बड़ी बलशाली है। और मानव के उद्भव से लेकर अब तक इस अभिव्यक्ति ने अनेक रूप बदले हैं, शायद समाज की जरूरतों के अनुसार, सोच के अनुसार, और कविता का भी स्वरूप उसकी भाषा शैली बिंब के अनुसार तब से लेकर अब तक बदलता आया है। हमने कई दौर की कविताएं पढ़ी हैं और आज इस दौर में किस तरह की कविता प्रासंगिक है, वो क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने साहित्यकार, कवि, गीतकार, संपादक, समीक्षक, अनुवादक, इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर अजय पाठक जी। और जैसा कि आज का हमारा विषय है, आधुनिक नवगीत परंपरा में युगबोध और सामाजिक चेतना, इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा परिचय मैं अपने श्रोताओं को आपका देना चाहूंगी। डॉक्टर अजय पाठक छत्तीसगढ़ के अग्रणी साहित्यकारों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के विविध माप विज्ञान के विभाग प्रमुख के पद पर आप कार्यरत रहे हैं। अब तक आपके 17 गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की लोकप्रिय कृति मधुशाला के दर्शन पर आधारित आपकी कृति तेरी मेरी मधुशाला का सफल प्रकाशन हुआ है। आपने देश के स्थापित और उदीयमान नव गीतकारों के संकलन सापेक्ष 56 का संपादन किया है। प्रकृति, पर्यावरण, सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियां, विसंगतियां, इन सब पर आप लगातार लिख रहे हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए लगातार देश और प्रदेश की अनेकों साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आपके गीत संग्रह जंगल एक गीत है को भारत सरकार का प्रतिष्ठित मेदिनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर अजय पाठक, आपका परिचय इस छोटे से कालखंड में नहीं समाहित हो सकता। हमारा सौभाग्य है कि आप आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और नवगीत के संदर्भ में डॉक्टर अजय पाठक से जानते हैं कि आखिर कविता का स्वरूप बदलते बदलते, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, नई कविता होते होते आज जिस रूप में पहुंचा है वो क्या है, उसे हम कैसे समझें।
1: धन्यवाद सुप्रिया जी, आपने नवगीत और विशेषकर गीत को लेकर एक जिज्ञासाजनक प्रश्न किया है। तो ये बता दूं कि हम कह सकते हैं कि गीत जो है वो मनुष्यता की मातृभाषा है। वह एक आदिम राग है जो हमारे सुख दुख का साथी रहा सदियों से। आज उसका स्वरूप थोड़ा विकसित और परिमार्जित होकर हमारे समक्ष जब सामने आता है तो हम सब उसको साहित्य की भाषा में नवगीत नाम से संबोधित करते हैं
0: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि ये नवगीत में एक शब्द जुड़ा हुआ है गीत, तो जब वो गीत ही है तो उसमें नवता नाम की क्या चीज हो गई, नवगीत किस तरह से हो गया। तो

0: ये बता दूं कि ये नवगीत विधा ठीक उसी तरह गीत विधा से विकसित हुई जिस तरह से कविता के पश्चात ये नई कविता की एक मुख्य धारा विकसित हुई। इस तरह से नवगीत ने गीत का ही पश्चातवर्ती रूप लिया। अब उसमें नवता नाम की क्या चीज है, उसमें नई चीज क्या है, एक जिज्ञासा का प्रश्न उठता है। तो उसमें नवता और नवीनता या नयापन कथ्य और शिल्प को लेकर है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे।
1: तो ये जो दौर चल पड़ा है, इस सिलसिले में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि ये गीत परंपरा तो बहुत पुरानी है, तो इससे ये आके कैसे जुड़ती है।
0: हुआ क्या कि आजादी के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद जो एक संघर्ष था अंग्रेजों के विरुद्ध या उपनिवेशवाद के विरुद्ध, वो खत्म हो चुका था। देश आजाद हो चुका था, लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं ये नए स्वरूप में सामने आ रही थी, क्योंकि संघर्ष का समय बीत चुका था
1: जी।
0: अब लोग एक नए राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना में लगे थे और हो ये रहा था कि उनकी अपेक्षाएं बलवती हो रही थी जनता की। अब वो लगता था कि अब हम कुछ नया रचेंगे गढ़ेंगे, लेकिन कालांतर में कुछ समय बीतने के बाद कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षाएं उस तरह पूरी नहीं हो पाई जितनी उनकी अपेक्षाएं थी
1: जी।
0: तो लोगों को थोड़ा सा निराशा का भाव उनके मन में आया और तत्कालीन जो साहित्यकार थे उन्होंने इस चीज को पहचाना और जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन भावनाओं को उजागर करने का काम किया। तो इसी तरह जो कविता परंपरागत रूप से चली आ रही थी उसने नया स्वरूप लिया और उसको नई कविता नाम दिया। उसमें नई चेतना की बात थी, जन अपेक्षाओं की बात थी। जो लोग गेय जो परंपरा थी गीतों की, छंद के साथ जुड़े थे, ऐसे कवि नई कविता के साथ न जुड़े और उन्होंने अपनी विधा के रूप में गेयता को अपनाते हुए ही उस गीत का अनुसरण किया और उसमें नए कथ्य और शिल्प गढ़े और उसका नाम इस तरह से नवगीत पड़ा।
1: बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया। और वाकई में नई कविता के दौर में यदि हम श्रीकांत वर्मा की उस कविता को कहें, इतने मकान पास पास सटे सटे मगर प्रेम नहीं, इतना घनत्व इतनी संकुलता मगर सभी कटे कटे, कहीं भी कोई छंद नहीं है। लेकिन उसके बाद गेयता की जरूरत क्यों महसूस होती है? जब भाव तो अभिव्यक्त करने की बात कविता में है तो उसका गेय होना क्यों जरूरी है? क्यों ज्यादा आकर्षित हमें छंद और उससे जुड़े हुए तुक बंद ये सब आकर्षित करते?
0: ये मनुष्य का स्वभाव है, रागात्मकता से आकर्षित होना हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति है। जो अतुकांत कविताएं होती है वो होती प्रभावशील है
1: जी,
0: इसमें कोई दो राय नहीं, और कहीं कहीं तो वो छांदसिक रचनाओं से ज्यादा प्रभावशाली भी होती है। और कुछ रचनाकार हमारे हिंदी साहित्य में जो कवि हुए, जैसे धूमिल हुए, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय हुए, भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत सारी अतुकांत कविताएं हैं, कालांतर में नागार्जुन हुए
1: जी जी।
0: इस तरह की कवियों की रचनाएं हम पढ़े तो बड़ी प्रभावी थी और लोगों को वो बड़ी भाती थी और आज भी उसी तरह से लोकप्रिय भी है और अपने सृजन के उद्देश्य में सफल भी है रचनाएं। ठीक देखें इसके समांतर ही उसी कथ्य को लेकर, जैसे भूख की बात यदि कोई कवि कर रहा है अपनी अतुकांत या नई कविता में, तो भूख की बात नवगीत में भी हो रही है। फर्क इतना है कि यह एक तुकांत शैली है और इसमें नई कविता के भी कुछ कैरेक्टर या कुछ गुण इसमें शामिल हैं, क्योंकि इसमें मुखड़े और अंतरे वाली इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन रचनाएं तुकांत होती हैं। तो तुकांत रचनाएं आदमी को ज्यादा आकर्षित करती हैं, बोधगम्य होती हैं और उसकी स्मरण शक्ति में जल्दी ये जो है ग्राह्य हो जाती हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता ज्यादा है।
1: नवगीत के संदर्भ में और भी जो भाषा शिल्प और उसका जो बिंब है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपने भूख की बात कही तो आपकी एक रचना की कुछ पंक्तियां मेरे सामने हैं कि भूख का आयाम बढ़ता जा रहा है और संसाधन सिमटते जा रहे हैं, मौन तब तक है यहाँ सबकी विकलता जब तलक वह दाल रोटी पा रहे हैं, भूख ही नवक्रांति का पर्याय होगी इस चिरंतन सत्य को स्वीकार करना। बहुत ही कठिन जटिल सा विषय है। और पाठक जी मैं जानना चाहूंगी कि छंद में या गेय रूप में इन कठिन बातों को प्रस्तुत करना एक श्रम साध्य कार्य है और स्वाभाविक तौर पर भाव उपज रहे हैं और उसको इस रूप में ढालने से क्या कहीं इसकी प्रबलता कम तो नहीं हो जाती?
0: यही नवगीत की विशेषता है कि कथ्य और भाव की

0: जो एक प्रभावान्विति होती है जिसे हम अधिकांशतः नई कविता में देखते हैं, उसकी मारक क्षमता, उसका तेवर, उसका कलेवर और उसको प्रभावान्विति, ये सारी नवगीत में चीजें ये समाहित होती हैं और छंद के साथ समाहित होती हैं। जो नवगीत अभी आपने पढ़ा, ये नई कविता का भी विषय हो सकता है, यही बात उसमें भी कही जा सकती है और कही जाती है, लेकिन जब ये छांदस रूप में हमारे सामने आती है तो इसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है और सुदीर्घकालीन होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि नवगीत विधा में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए कैलाश गौतम, जी, जी। उनका बड़ा नाम था और वो सच्ची सच्ची और खरी बात कहने के लिए जाने जाते थे। कचहरी नाम की उनकी एक कविता है जो बड़ी मार्मिक है और यथार्थ से बिल्कुल रूबरू है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ रखना चाहूंगा। हालांकि वो बहुत लंबी कविता है और कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर वो एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन वो पंक्तियां जो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ आपके सामने रखता हूँ। कचहरी का एक दृश्य देखें और कचहरी की उपादेयता देखें। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है। है बासी मुंह घर से बुलाती कचहरी, बुला करके दिन दिन भर रुलाती कचहरी। कचहरी का पानी, कचहरी का दाना, तुझे लग न जाए तू बचना बचाना। भले और कोई मुसीबत उठाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना। भले डांट बीबी की घर में तू खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धुनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना।
1: कितनी बड़ी सच्चाई इन शब्दों में छुपी हुई है, पूरे कचहरी का सार, जीवन का सार समेट जाता है।
0: ये कुछ पंक्तियां हैं, कुछ मिसाल है।
1: बिल्कुल,
0: नई कविता में भी यह बात आती है। तो ये यथार्थ का जो वर्णन है, ये एक आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में जो नवगीतकार कह रहा है तो उसकी प्रासंगिकता तो बनी रहती है।
1: छायावादी जो कवि थे वो प्रकृति, आध्यात्म और प्रकृति की सुंदरता, श्रृंगार, बहुत सारी बातें उसमें भी कही जाती थी और जिंदगी में इनका औचित्य खत्म भी नहीं होता है। अजय पाठक जी, मैं मानती हूँ कि प्रकृति, श्रृंगार, सौंदर्य, आध्यात्म, ये भी हमारे साथ जिंदगी में है, तो नवगीत में ऐसी कौन सी अन्य बातें हैं जिन्हें हम नवगीत के रूप में शामिल करते हैं और उसे उन कविताओं से एक अलग स्थान दे पाते हैं?
0: बहुत सही प्रश्न हमने किया। देखिए, हम यदि गीतों की बात करते हैं, हिंदी की साहित्यिक गीतों की यदि हम बात करें
1: जी,
0: तो इसका संदर्भ छायावादी काल के गीतों से लिया जाता है और छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और
1: सुमित्रा
0: नंदन पंत, ये कवि थे, बड़े नाम थे
1: जी,
0: तो इन गीतों में होता या था, इन कविताओं में, छायावादी कविताओं में, खासतौर से गीतों में
1: जी,
0: इनमें वैयक्तिकता ज्यादा थी, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि उस काल के कवि, वो मध्यकालीन जो परंपरा चली आ रही थी उसका कहीं ना कहीं एक छाया प्रभाव जरूर कवियों में था। तो वो किस तरह की रचनाएं लिख रहे थे, अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि महादेवी वर्मा जी की कविता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली
1: जी,
0: आप सबने पढ़ा होगा, हम लोग कोर्स में पढ़, समेट के दर्द को टुकड़ों में, कुछ आहों और आंसुओं में, कुछ मिलन विरह की रस्मों में, स्मृतियों का भार के उठा चली मैं नीर भरी दुख की बदली। दूसरी कविता एक उदाहरण पे दूंगा, बच्चन जी की, तुम्हारे नील झील से नैन, नीर निर्झर से लहरे केस, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये रूमानी कविता है
1: जी, जी।
0: तो ये 60 के दशक के पहले हिंदी साहित्य की जो गीत विधा थी उसमें कवियों की वैयक्तिक चीजें ज्यादा परिभाषित हो रही थी। एक रूमानियत थी, एक दर्द थी, एक व्यथा थी जो कवि की निजी भाषा थी, और कालांतर में चल के जो नवगीत विधा आई तो फिर इसने युग बोध को अपने साथ समेटा और उसको अपना विषय वस्तु बनाया।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा उन लोगों ने भी कोशिश भी की तो बहुत सीधे तौर पर व्यक्त करने की कोशिश नहीं की
0: जी।
1: जैसे महादेवी जी की वो कविता जो कह दे माँ अब क्या देखूं,
0: देखूं हाँ।
1: देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, लेकिन फिर भी जिस सीधे तौर पर प्रहार हाँ। अब होता है वो नहीं हो रहा,
0: ये आत्मनिवेदन था कवि का
1: जी।
0: लेकिन ये जो नवगीत है, नवगीत का कवि तो सीधे सीधे प्रहार करता है, क्या वो निवेदन नहीं करता
1: इस समर में
0: कौन तांडव कर गया है, सत्य का हर एक योद्धा मर गया है,
1: ये आपकी ही
0: इस तरह की भाषा इस्तेमाल।

0: काल होती है। तो इस तरह से नवगीतों का जो जो भाषा विन्यास है या कथ्य है या शिल्प है वो गीतों से सर्वथा अलग है परंपरागत गीतों से।
1: अब मैं आपने एक शब्द अभी बीच में कहा युग बोध का, तो बहुत सारी बातों को हम समेट रहे हैं, तो युग बोध से आपका तात्पर्य क्या है और वो किस तरीके से नवगीत में ज्यादा प्रासंगिक और सशक्त है?
0: देखिए, युग बोध की सीधी सी परिभाषा ये है कि किसी विशेष कालखंड में, जैसे हम वर्तमान में अभी जी रहे हैं, तो हमारे समय के इस कालखंड की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये पूरी एक जो वातावरण कहें
1: जी जी,
0: इसका ज्ञान और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह पड़ रहा है, इन सारी चीजों का, ये किस तरह से हम इससे प्रभावित हो रहे हैं, या हमसे यह विषय, चाहे धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे समाज का हो, ये किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ये मिली जुली जो बातें उससे निष्कर्ष सामने आती हैं वो युग बोध कहलाती है। उसका ज्ञान ही युग बोध है। हम देखते हैं कि राजनीति के दृश्य में आज से जो कुछ दशक पहले राजनीति का चेहरा चरित्र कुछ और था, आज उसका चाल चलन चेहरा कुछ और हो चुका है।
1: बिल्कुल।
0: ये तो आज के समय में यदि हम कहें तो आज के समय की राजनीति का युग बोध हुआ, ये जो अंतर था।
1: बिल्कुल। तो नवगीतकारों को इस संपूर्ण युग बोध के संदर्भ में एक चैतन्य उनके भीतर होना चाहिए, तभी तो उस तरह की कविता की रचना होगी जो सामाजिक सरोकार से प्रेरित होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। यदि किसी रचनाकार में या नवगीतकार में युग बोध के प्रति संवेदनशीलता ही नहीं है, युग बोध का उसको भान ही नहीं है, तो वो काल्पनिक कविताएं लिखेगा।
1: सच।
0: कल्पना से लिखी हुई कविता का कोई औचित्य ही नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर चारों तरफ तबाही का मंजर है, मनुष्य का मनुष्य शोषण कर रहा है, हर क्षेत्र में अवमूल्यन हो रहा है, प्रकृति जो है विनाश के कगार पर खड़ी है, प्रदूषण हो रहा है, मनुष्य का शोषण है,
1: बिल्कुल,
0: बेकारी है, भूख है,
1: जी जी,
0: हत्या है, युद्ध है, ये समकालीन युग बोध इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है। और यदि कवि या रचनाकार या नवगीतकार इन सब बातों को अपनी कविता या रचना का कथ्य या विषय वस्तु नहीं बनाता, तो वो एक बेकार की रचना है, वो लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पाएगी। और कवि होने का धर्म भी यही है कि युग बोध को वो कम से कम परिभाषित करे।
1: तो आपको लगता है कि अभी के जो नवगीत है उसमें युग बोध का पूरा समावेश
0: है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: तो मुख्य रूप से आपको इसके प्रतिनिधि कवि कौन से लगते हैं जो इन बातों को लेकर खुलकर अपने विचार रख रहे हैं और लिख रहे हैं?
0: नवगीत कवियों में एक बड़ी लंबी परंपरा है, और मैं तो कहता हूं कि ये ये ये एक तरह से ये जन प्रतिनिधियों से ज्यादा ताकतवर
1: जी
0: प्रभावशाली लोग रहे हैं अपने समय के, और आज भी है कि लोगों ने इनकी बातों में अपने वर्तमान को देखा है और अपनी मुक्ति का रास्ता तलाशा है और इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में पाए। मैं नाम ले लेता हूँ, शंभुनाथ सिंह हैं,
1: जी जी,
0: वीरेंद्र मिश्र हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, ओम प्रभाकर हैं, कैलाश गौतम हैं, ये अभी हाल तक थे ये लोग, इसमें कुछ दिवंगत हो चुके हैं, ये बहुत प्रभावशाली और सशक्त नवगीत लिख रहे हैं।
1: जी अजय पाठक जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप इतने लंबे समय से नवगीत लिख रहे हैं, आप देश विदेश जाकर इन कविताओं का पठन पाठन कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से, इस दौरान ये उठान कैसे हुआ और कलम में इतनी ताकत कहाँ से आई?
0: सही कहा, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये रुचि किस तरह मुझ में विकसित हुई। इसके पीछे ये है कि मेरी प्रवृत्ति रही है अध्ययन करने की, अध्ययनशील तो रहा हूँ मैं, और खास तौर से हिंदी गीत परंपरा के बहुत सारे कवियों को मैंने अध्ययन, मुझे मेरे प्रिय कवि में हरिवंश राय बच्चन रहे
1: जी।
0: बच्चन जी को पढ़ते हुए नीरज हुए और महादेवी वर्मा जी हुई, तो गीतों की जो एक रचना शैली है, एक शिल्प विधान है, इसका ज्ञान तो मुझे था। इस बीच जिन कवियों का मैंने अभी नाम लिया, नचिकेता हुए, शलभ श्री राम सिंह हुए, कैलाश गौतम हुए, इनकी रचनाओं को पढ़ते पढ़ते मुझे एक अंदर से एक इच्छा भी हुई कि क्यों ना मैं भी इस नवगीत विधा से जुड़ूं
1: जी।
0: और मैंने लिखने का प्रयास किया और मैं मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि कई ऐसे विषय हैं जो कि गीत में नहीं, जैसे भूख को आप गीत का विषय नहीं बना सकती, लेकिन नवगीत विधा में मेरी कई रचनाएं ऐसे हैं कि जिसको मैंने भूख पर जो है नवगीत जो है लिखे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह के विषय,
1: आपकी कुछ पंक्तियां तो प्रकृति से जुड़कर संवेदनाओं, मानवीय संवेदनाओं को भी अलग ढंग से परिभाषित करती हैं। सावन के बादल को जाने किसने तीर

0: चुप हुए थे, बाहर बाहर बरस रहे थे, भीतर भीतर, भीतर, रोए, भीतर थे। रोए थे। रचना ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रकृति से जुड़ी है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है वो मानवीय संवेदना और समाज के जो अन्य चैतन्य बोध से जुड़े जो विषय हैं उनसे भी जाकर जुड़ती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि नवगीतों में जो सामाजिक उन्नयन की बात है वो किस तरह से संभव, वो कैसे हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमने देखा था कि कविताओं ने बहुत बड़ा एक काम बीड़ा उठाया था, देश भर में उस चेतना को जगाया था, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जिन सारी परिस्थितियों के बीच हम जी रहे हैं उसमें नवगीत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो कैसे ये संभव है नवगीत के द्वारा?
1: देखिए, किसी बात के प्रतिकार के दो तरीके होते हैं। या तो जो कुछ हो रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाके आप लाउडली, जिसको कहते हैं कि मुखर होकर कहिए कि भाई ये हो रहा है। अब हो रहा है तो निश्चित है आपका उद्देश्य ये है कि ये नहीं होना चाहिए, यदि कोई गलत बात हो रही है तो।
0: जी, जी।
1: या जो नहीं हो रहा है उसके बारे में कहना कि ये नहीं हो रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि अब ये होना चाहिए।
0: बिल्कुल जी।
1: तो नवगीत विधा में जो रचनाएं आज की जा रही हैं, मैं आपको बताऊं कि उसकी प्रहारक शक्ति इतनी तेज और प्रचंड कहूं मैं, कि जो लोग इस अव्यवस्था या व्यवस्था के लिए दोषी हैं या जिम्मेदार हैं उन तक जब यह पहुंचती है तो वो लगभग तिलमिला जाते हैं, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है
0: जी।
1: तो एक तरह से ये जन सामान्य की भावनाओं का भाई एक सामान्य आदमी हर जगह उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कहने का, वो तो मूक होकर तमाशा देख रहा है, मजबूर है, उसकी मदद करने के लिए भी कोई उपलब्ध नहीं है। तो कवि और खासतौर से ये नवगीत कवि या नवगीतकार
0: जी,
1: उसके प्रतिनिधि के रूप में उन विसंगतियों को बड़े तेजी से मुखर होकर किसी प्लेटफॉर्म पर यदि उजागर करते हैं तो एक तरह से ये भी एक लड़ने का या एक सुधार की गुंजाइश का मार्ग तो प्रशस्त करते ही
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: कोई संदेह नहीं इसमें। और वाकई में ये जो आज की स्थिति है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इतना कुछ सबके हाथ में है, तो उस समय सामाजिक उन्नयन में नवगीत बड़ी ही प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसकी शैली और बिंब और इसके संदर्भ में भी हमारे जो युवा लोग हैं, युवा जो पीढ़ी है जो कविता से जुड़ी हुई है, कविता लिख रही है, तो क्या इसमें बहुत बंधनों के साथ ही इसको आगे ले जाना है या इसका बदलता स्वरूप भी आगे चल सकेगा?
1: नवगीत विधा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें मैंने जो कहा कि छांदस तो है
0: जी,
1: लेकिन आपको एक पैरामीटर जो पहले निर्धारित था गीतों के लिए कि साहब एक मुखड़ा होगा दो पंक्ति का, फिर उसके बाद जो है वो अंतरे होंगे और अंतरों में मात्रिक या वार्णिक रूप से बिल्कुल समानता होना चाहिए, लय भंग नहीं होना चाहिए। नवगीत विधा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इस दृष्टि से नई कविता के लगभग करीब है ये
0: जी।
1: इसमें छोटी सी पंक्ति भी मुखड़ा हो सकता है, कुछ शब्दों का भी मुखड़ा हो सकता है और कई शब्दों का अंतरा भी हो सकता है। एक लचीला, एक रबर तरह का जो लचीलापन होना चाहिए या जो रबर होता है उसमें जो लचीलापन होता है, नवगीत में स्वतंत्रता है।
0: तो जितना जो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, जो परिदृश्य है, उसको समेटने के लिए लचीलापन तो बहुत जरूरी है, कुछ छूट भी तो होनी चाहिए।
1: बिल्कुल होनी चाहिए और नवगीत इस विधा की इजाजत देता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। समकालीन परिदृश्य में बहुत सारी विसंगतियां हैं देश में, कहने में कोई मुझे संकोच नहीं और ये सबको मालूम भी है।
0: वैश्विक परिदृश्य में ही
1: है, वैश्विक परिदृश्य में है
0: जी।
1: एक वितंडावाद सा चल रहा है, छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर इस तरह विशाल कर दिया जाता है कि पूरा जन समुदाय आंदोलित हो जाता है
0: जी।
1: अब देखिए, एक नवगीत में इस बात को कैसे कथ्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरे विश्व परिदृश्य में देखें
0: जी। जी बिल्कुल।
1: कि क्या करेंगे हम तुम्हारे इस वितंडावाद का, क्या करेंगे हम तुम्हारे इस वितंडावाद का, और झील का पानी ठहर कर शांत जो होने चला था, मार कर पत्थर अतल में हलचलें तुमने मचा दी, आंख में चिंगारियां और खून में तेजाब भरकर ध्वंस का सामान सबके हाथ में तुमने थमा दी, गालियों तक आ गया अब सिलसिला संवाद का, क्या करेंगे हम तुम्हारे इस वितंडावाद का।
0: कितनी स्पष्ट अभिव्यक्ति है,
1: स्पष्ट अभिव्यक्ति है और प्रभावान्विति, ये शैली नवगीत विधा की है
0: जी। जी,
1: इसमें अपनी बात छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से प्रभावी रूप से आप कह सकते हैं।
0: बहुत ही सुंदर। और आपको इसका भविष्य कैसा दिखता है, क्या युवा पीढ़ी इससे जुड़ रही है, और जुड़ती है तो ये नवगीत किस रूप में आगे जाएगा,

0: उसके बारे में आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है?
1: सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो गीत विधा है जिसकी शुरुआत हम देखते हैं वेदों से, वेदों की रचना हुए हजारों साल हो गए
0: जी,
1: और मूल रूप से वह एक छांदस रचनाएं ही हैं। उसके बाद गीत विधा ने अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से लंबी यात्राएं की है,
0: बिल्कुल,
1: और आज तक ये सब चल रहा है। तो यह बात तो स्पष्ट है कि जब तक सृष्टि कायम है तब तक गीत जो है वो जीवित रहेंगे, अजर अमर विधा है।
0: सच।
1: बस इसका स्वरूप में थोड़ा बहुत यथानुरूप जो मैंने कहा युग बोध के हिसाब से परिवर्तन होते रहेंगे। और मैं इस बात को लेकर आशान्वित हूं कि ये जो आने वाली अभी जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, वो नवगीतों में उसकी काफी रुचि देखी जा रही है। और हाल ही के दिनों में आपको जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नवगीत विधा को लेकर पाठ्यक्रमों में इसे समाहित किया जा रहा है, और बहुत सारे छात्र नवगीत विधा पर शोध कार्य भी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी कर रहे हैं।
0: बहुत सुंदर। और निश्चित तौर पर यदि इस ढंग से हम इस विधा को आगे बढ़ाते हैं तो जो सामाजिक सरोकार के जितने भी विषय हैं, ज्वलंत विषय, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, इन सभी विषयों पर खुलकर अपने विचारों को रखने का एक मंच देता है नवगीत, तो निश्चित तौर पर इसका भविष्य उज्जवल ही है। और आप आज यहाँ हैं और हम आपकी कुछ कविताओं को यहाँ ना सुने तो ये कार्यक्रम अधूरा सा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपनी कुछ कविताओं की पंक्तियां यहाँ सुनाएं।
1: चंद पंक्तियां मैं नवगीत विधा की ही, एक खास तौर से मैं शासकीय सेवा में रहा हूं, आप जानती हैं, और
0: आज हमारे श्रोता भी जान रहे हैं।
1: हाँ, श्रोता भी जान रहे हैं। तो हम लोग जो सरकारी सेवा में होते हैं वो छुट्टियों के लिए तरसते रहते हैं कि कब शनिवार आए, कब रविवार आए,
0: जी जी,
1: और उस दो दिनों के अवकाश के लिए हम लोग चार दिन को स्वाहा कर देते हैं।
0: सच।
1: एक स्वाभाविक सी बात है। तो इसको लेकर चंद पंक्तियां ही मैं आपके साथ साझा करूंगा। सोम शनिचर स्वाहा स्वाहा एक अदद इतवार के लिए, सोम शनिचर स्वाहा स्वाहा एक अदद इतवार के लिए, और तन को झोंका हवन कुंड में माथे बहा पसीना, भूख प्यास को रहे गटकते चाक चाक है सीना, और सूख रही है बोटी बोटी मुट्ठी भर आहार के लिए।
0: क्या बात।
1: सोम शनिचर स्वाहा स्वाहा एक अदद इतवार के लिए। और जो हफ्ते के दिन कार्य के होते हैं वो ऐसा लगता है कि चींटी जैसे दिन रेंग रहे, जल्दी इतवार क्यों नहीं आता।
0: सच।
1: तो रेंग रहे दिन चींटी जैसे कोसों दूर महीना, निर्वासित खुशियों को लेकर अभिशापित सा जीना, पान गिलोरी जैसी तनखा वेतन पान गिलोरी जैसी तनखा हाथी से बाजार के लिए, सोम शनिचर स्वाहा स्वाहा एक अदद इतवार के लिए, और अग्नि फांस में जले निरंतर सुख स्नेह सब छूटा, रिश्तों से दूर हैं, माता पिता कहीं हैं, भाई कहीं हैं, मिलने की इच्छा होती है लेकिन नहीं मिल पाती, ये मजबूरी। तो अग्नि फांस में जले निरंतर सुख स्नेह सब छूटा, पथरीली राहों पर चलते पुर्जा पुर्जा टूटा, और गर्दन लेख लिखा कर बैठी है खूनी तलवार के लिए, सोम शनिचर स्वाहा स्वाहा। अंतिम पंक्ति है कि साध अपाहिज, बहुत सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है नौकरी के दौरान, तो साध अपाहिज सपने खंडित समय कसाई जैसा, अर्थशास्त्र घुल गया खून में, मांग रहा है पैसा जीवन की जरूरतों के लिए, अर्थशास्त्र घुल गया खून में मांग रहा है पैसा, हम लगान के संसाधन हैं, हम लगान के संसाधन हैं, बस अपनी सरकार के लिए, सोम शनिचर स्वाहा स्वाहा एक अदद
0: इतवार
1: के लिए।
0: इतनी सच्ची बात है एक सरकारी कर्मचारी के जीवन का,
1: सरकारी
0: एक निचोड़ है कि वो जिंदगी के इन उतार चढ़ावों से ही गुजरता
1: होता है। इसमें आलोचना नहीं है, यथार्थ है।
0: बिल्कुल, हमारी अपनी कहानी कहने का एक बहुत सुंदर माध्यम है नवगीत। इस पूरी बातचीत के साथ मुझे तो ये समझ में आ रहा है पाठक जी कि हम सब किसी बड़े मंच पे खड़े होकर अपनी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कवि जो नवगीत लिखता है इस जन जन की कहानी को, उसके मन की अंदर की भावनाओं को ऊपर लाकर, सतह पर लाकर कहीं प्रस्तुत कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहूंगा कि कविता को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से न देखें,
0: जी।

0: यदि कवि कोई बात कह रहा है तो उसके साथ कदम ताल करते हुए उसका साथ भी दे और उसकी बात को स्वयं अपने हृदय में उतार कर आगे की यात्रा करें। और ध्यान रखिएगा कि कवि जो है वो समाज का सचेता होता है, वो आपका प्रतिनिधि है, वो आपके हक में अपनी लड़ाई लड़ रहा है जो आपकी लड़ाई है।
1: बहुत सुंदर। और आज जो व्यक्तित्व तो हमारे बीच है, इतनी गहराई से उन्होंने इस विषय पर काम किया है, कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी लेखनी, आपकी कलम इसी तरह प्रवाहित होती रहे, इन विषयों के साथ समाज में युगबोध और चेतना का संचार करती रहे। और आधुनिक नवगीत परंपरा में युगबोध और सामाजिक चेतना इस विषय पर आज हमारे बीच थे इस अंचल के जाने माने साहित्यकार, लेखक, चिंतक, विचारक डॉक्टर अजय पाठक। आज आप आकाशवाणी आए और इतनी बढ़िया, सुंदर, सारगर्भित जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी में, आधुनिक नवगीत परंपरा में युगबोध और सामाजिक चेतना इस विषय पर साहित्यकार और गीतकार डॉक्टर अजय पाठक से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। और अब समय हुआ है श्रोताओं कार्यक्रम महिला सभा का।

सखियों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम महिला सभा में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त लिंडा। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने परिवार के साथ सुखद समय बिता रही होंगी। सखियों, आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूं जो केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारी पहचान भी है, और वो है मेहमान नवाजी और अतिथि धर्म। हम सभी ने बचपन से एक बात जरूर सुनी है, अतिथि देवो भवा, यानी हमारे घर आने वाला मेहमान भगवान के समान होता है। और हमारी दादी नानी भी कहा करती थी कि घर आए मेहमान को कभी खाली हाथ और खाली मन नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन सखियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम व्यस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक कोई मेहमान या अतिथि हमारे घर आ जाए तो हमें असुविधा महसूस होती है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी मुस्कान, मीठे बोल और सम्मान के साथ उनका स्वागत करें तो वही पल हमारे इन रिश्तों को मजबूत बना देते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि हमारे रिश्ते व्यवहार से बनते हैं। फिलहाल आप सभी से एक छोटा सा सवाल, यदि आपके घर की घंटी बजती है, आप दरवाजा खोलती हैं और सामने बिना बताए मेहमान खड़े मिल जाएं, तो आप उनसे क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और चेहरे पर आपकी हल्की सी मुस्कान भी होगी। वहीं मन ही मन अपने आप से आप बोल भी रही होंगी, अरे अभी तो किचन भी मैंने ठीक से नहीं समेटा है, घर भी अस्त व्यस्त है, चाय के साथ क्या बनाऊंगी, वगैरह वगैरह, है ना सखियों? और ऐसा कभी ना कभी हम सबके साथ होता ही रहता है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेहमानों के स्वागत में हमारी मुस्कान कम नहीं होती है। फिर चाहे वो हमारे पड़ोस से आए हों या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर से, हमारे प्यार भरे दो मीठे शब्द मेहमानों को अपनापन जरूर महसूस कराते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है सखियों। यदि मेहमान दूर से आए हैं तो उनके आते ही सवालों का सिलसिला शुरू नहीं करें, पहले उन्हें आराम से बैठने दें, पानी वगैरह का पूछें, फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू करें। आपके घर में जो भी चीजें सहजता से उपलब्ध हैं, उसी से प्रेम पूर्वक आप उनका स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी दिखावे का नाम नहीं है सखियों। और यदि कोई रिश्तेदार या आपका परिचित कई दिनों के लिए आने वाला हो तो उनके रहने, सोने, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में भी पहले से ही सोचकर तैयारी रखें तो बेहतर होगा। ऐसे में मेहमान भी सहज रहेंगे और आपको भी असुविधा या तनाव नहीं होगा। और हाँ बहनों, आपके घर के जो नियम हैं उन्हें सहजता से आप बता सकते हैं, जैसे कि बच्चों के पढ़ाई का समय, किसी सदस्य के ऑफिस का समय या फिर सुबह उठने की दिनचर्या। ऐसे में दोनों ही जो पक्ष हैं उनको सुविधा रहती है।

और इसके साथ ही मेहमानों की प्राइवेसी या निजता का भी सम्मान करें। यदि वे अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं या कुछ निजी समय चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दें। और बच्चों को भी मेहमान नवाजी सिखाएं। बच्चों से कहें, मेहमान आए हैं, अंकल आंटी आए हैं, उन्हें नमस्ते करें, पानी वगैरह पूछें और उनके सामानों को बिना पूछे मत छुएं। इस तरह की आदतें सखियों बच्चों में केवल अच्छी आदत

0: तो बारिश तो इस बार बहुत अच्छी हो रही है।
1: बहुत अच्छी बारिश हुई और ये नाजायज बारिश हो गया, इतना ज्यादा एक साथ इसको गिरना नहीं था।
0: बरसात के पानी को तो आजकल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा भी इकट्ठा किया जाता है पानी को।
1: मैं जिस से बोल रहा हूँ मैडम, उसका एक आपको जानकारी बता दूँ
0: जी।
1: ये गांव 1960 से जगह हुआ गांव है
0: जी।
1: 1960 में यहाँ पहले लाइट आ गया था, कोटा से पहले।
0: अच्छा।
1: इस गांव के एक विकास पुरुष थे स्वर्गीय श्री मराठालाल कौशिक जी, तो उस समय हमारे गांव में पूरा खोदा हुआ था कुआं उस समय में
0: जी,
1: और जिसको हम लोग अभी वर्तमान में कुआं का तो चलन खत्म हो गया, बोरवेल आ गया क्योंकि
0: जी जी।
1: तो हमारे पूरे जितने भी हमारे गांव में हैं अभी भी 18-20 कुआं हैं अभी
0: जी,
1: सब वाटर हार्वेस्टिंग का ही काम करते हैं उसमें सीधा, जितना बरसात का पानी आया ओवर फ्लो हुआ सीधे कुएं में डालो।
0: वाह बहुत सुंदर।
1: हमारे गांव में लगभग 300-350 से ऊपर पंप है प्रति किसान
0: जी। सुशील जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, और जैसा कि हमारा आज का विषय है अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार आप किस प्रकार से करते हैं?
1: क्या है छत्तीसगढ़ी में तो कहावत मैडम, जैसन देवता तैसन नेवता
0: जी,
1: जैसा जिस प्रकार का मेहमान आ जाए उस तरीके से उसका स्वागत हम लोग करते हैं। मैडम जी हमारे यहाँ जो राखी का त्योहार होता होगा और इसके पहले और कई भी त्योहार आते हैं और होने वाला है, तो जो जैसा त्योहार आता है सभी के लिए हम लोग उत्साह के साथ त्योहार मनाते हैं और उनका स्वागत भी वैसे ही करते हैं
0: जी।
1: तो घर में जो पारंपरिक जो बनता है जैसे हलवा हो गया, पूरी हो गया, खीर हो गया, भजिया हो गया
0: जी,
1: तरीके से हम लोग जो अपना हम लोग करते हैं वैसा मेहमान का भी स्वागत उसी तरीके से करते हैं
0: जी। बहुत जी, अच्छी जी, बात बताई आपने। और कौन सा गीत आप सुनने की फरमाइश रखेंगे सुशील जी?
1: बातों में ऐसे गाना, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, मेरी मम्मी का फेवरेट है
0: जी। बिल्कुल।
2: हेलो
0: हेलो सखी, कौन बोल रही है?
2: मैं माधुरी बंजारे बोल रही हूँ बलौदा से।
0: अच्छा माधुरी जी आप कैसी हैं?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम।
0: और अभी क्या कर रही हैं?
2: अभी स्कूल में हूँ, थोड़ा 5 मिनट का गैप लेके आपसे बात करने आई हूँ।
0: वाह, ये हाँ। बताइए कि इतनी बिजी रहती हैं और घर पर जब कोई मेहमान आता है तब आप हाँ। किस प्रकार से तैयारी रखती हैं?
2: मैं तो बिजी रहती हूँ दिन भर, क्योंकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में समय तो मिल नहीं पाता है, लेकिन अगर अचानक कोई अतिथि आ गए मेरे घर
0: जी,
2: तो बिल्कुल आते हैं, तो अगर फोन करके आए, क्योंकि आजकल तो फोन है ना
0: जी,
2: तो फोन करके आए तो उनकी तैयारी में लग जाती हूँ तुरंत, और अगर फोन करके नहीं भी आए तो आने के बाद तैयारी करती हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
2: और बिल्कुल मेरे से जितना संभव हो सकता है ना उतना प्रयास करती हूँ उनको ना कम्फर्टेबल महसूस कराने का
0: जी। ये बताएं कि मेहमानों की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं?
2: हाँ, मेरे घर जो अतिथि आते हैं या फिर मेहमान आते हैं ना, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि मेरे पास जो समय है ना वो काफी कम होता है, इसलिए मेरी सुविधा के अनुसार आते हैं। अतिथि देवो का मतलब ही है हर व्यक्ति जो आपके घर में आए या ना आए
0: जी,
2: है ना, वो आपके लिए मेहमान समानी है। तो आप जानते हो चाहे ना जानते हो उनका सम्मान करना निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल अपने व्यवहार से उन्हें अपनापन देना भी अतिथि का मतलब होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। माधुरी जी कौन से फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: बातों फिल्म से मैम, उठे सबके कदम, बहुत अच्छा सॉन्ग है मैम, पुराना गीत है और मुझे बहुत पसंद है।
0: आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
3: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम

0: हेलो
1: हेलो, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
0: दीदी नैना, श्रीमती अंजू जी ने जिला जांजगीर बड़ौदा से बोल रही हैं।
1: जी अंजू जी, कैसी हैं आप?
0: सब ठीक है दीदी।
1: अच्छा, और जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा आज का विषय भी है अतिथि देवो भव, तो ये बताएं कि अपने घर आए मेहमानों का स्वागत आप किस तरह से करती हैं?
0: जी मेरे को तो अतिथि वासी में भगवान लगते हैं, क्योंकि आज के इस भागदौड़ की दुनिया में क्या है ना,
1: जी
0: तो मेहमान आना बहुत कम हो गया है, तो मेरे को जब लगता है कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं वो भगवान से कम नहीं है। मैं पहले से ही तैयारी में लग जाती हूँ कि
1: अच्छा,
0: मुझे क्या बनाना है, क्या खिलाऊंगी, इसके बाद फिर तो उनके साथ थोड़ा बैठने का मौका मिले।
1: जी जैसा कि आपने कहा कि पहले से ही तैयारी करते हैं, तो जरूर वो फोन पे आपको बताते भी होंगे कि वो कब आने वाले हैं।
0: फोन लोग बाहर में रहते हैं, एक सप्ताह तो हम स्कूल चले जाते हैं, फिर छुट्टी मिलता है तो हम लोग कभी गाँव चले गए, ससुराल चले गए, तो मैं बोलती हूँ की जो भी मेहमान है ना, मेरे को ना आने से पहले एक दिन पहले कॉल करके बताना की आप आ रहे हैं करके।
1: जी, और यदि कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो?
0: अचानक से आते हैं तो और खुशी लगता है मैडम।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो मेरे लिए सरप्राइज हो जाता है।
1: अच्छा,
0: क्या है, जब पहले से आते हैं उनके लिए तो मैं तैयारी करके रखी रहती हूँ, लेकिन जो अचानक से आ जाते हैं उनके साथ मैं जो भी घर में रहता है उसी से काम चला लेते हैं। दीदी मेरे लिए एक मायने रखता है कि खाना पीना उतना महत्व नहीं रहता, आदमी का व्यवहार उतना महत्व रहता है।
1: बहुत ही सुंदर बात कही अंजू जी आपने। और कौन सा फिल्म का गीत आज आप सुनना चाहेंगी?
0: जी दीदी, मेरे को क्या कहना का फिल्म का गाना

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: हेलो
4: जी, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
3: मैं भारती जगत बोल रही हूं, ग्राम महमनपुर से, अकलतरा ब्लॉक से।
4: भारती जी, अभी क्या कर रही हैं आप?
3: अभी मैं रक्षा बंधन पर तैयारी कर रही हूं। मैं
4: अच्छा हाँ। पकवान वगैरह भी बना रही होंगी?
3: हाँ बना रहे हैं, पकवान वगैरह बनाए हैं।
4: क्या क्या पकवान बना रही हैं?
3: पकवान में हम लोग ऐसा बनाए हैं और कुशली बनाए हैं।
4: अच्छा,
3: तो इस सब बनाए।
4: तो क्या माहौल रहता है उस दिन, राखी के दिन आपके घर में?
3: राखी के दिन सब ननंद आए हुए रहते हैं और आप खुद को भी जाना होता है मायका, तो उसका खुशी कुछ ज्यादा ही रहता है।
4: बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसा कि हमारा आज का विषय भी है अतिथि देवो भव, तो घर आए अतिथि या मेहमान का सत्कार आप किस प्रकार से करती हैं?
3: हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो उनको मैं अपने बच्चों को पहले प्राथमिकता देती हूँ उनका स्वागत करने के लिए।
4: क्या
3: मेरे बच्चे पहले प्रणाम करते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर चाय नाश्ता वगैरह, और फिर उसके बाद हम सब एक साथ बैठ कर सब अपने अपने हाल चाल पूछते हैं।
4: बहुत अच्छी बात बताई आपने, बच्चों को आज के समय में ये सभी जो संस्कार है वो सीखना और सिखाना हम माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है। और कौन से फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगी?
3: जी जी जी, मैं जब भी मैं इसका गीत सुनना चाहती हूँ।
4: जी
5: हेलो।
4: हेलो, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है?
5: मैं रंजू सरते बोल रही हूँ, मैं मेंटल हॉस्पिटल स्टाफ नर्स हूँ सेंद्री मोक्का में।
4: अच्छा जी, रंजू जी अभी क्या कर रही हैं आप?
5: मैं दीदी अभी तो ऑफिस में हूँ, ड्यूटी पर हूँ दीदी अभी मैं, और राखी की तैयारी भी जोरों से चल रही है।

0: मेरी दीदी अभी।
1: अच्छा,
0: रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो मैं एकदम खुश हो रही हूँ कि कब अपनी बहनों से मिलूंगी, अपने भाइयों से मिलूंगी, बस एकदम खुशी जाहिर नहीं हो पा रही है। ड्यूटी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि मेरे को कब मैं अपने घर जाऊँ अपने मैके। दीदी मैं अपने भाइयों के लिए राखी भी बना रही हूँ। ऐसा है कि अपने भाइयों को अपने हाथ से बनाकर राखी पहनाओगे उसका खुशी ज्यादा होता है।
1: बहुत खूब, यही तो हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। और आपको लगता है कि अच्छी मेहमान नवाजी जो है वो हमारे रिश्तों को मजबूत करती है?
0: दीदी हम लोग सब एक साथ अपने भाई बहनों से मिलते हैं तो अपनापन लगता है, प्यार बढ़ता है, भाइयों के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है समय बिताना, हमारे भाई बहन का जो रिश्ता है वो और भी गहरा होता है और अटूट भी बनता है। और दीदी हम लोग साल में एक बार मिलते हैं राखी के समय तो बहुत अच्छा लगता है, उस समय का जो पल है, ये जो पल है हमेशा याद रहता है कि उस समय क्या किए क्या नहीं किए। जब वहाँ से आते हैं तो रोते हुए आते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ दिन और रुक जाए अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास।
1: जी वाकई कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं लेकिन उनकी यादें बहुत लंबी होती हैं रंजू जी।
0: हाँ दीदी, हाँ दीदी सही बात है, भाई बहनों का प्यार जो है बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने।
0: दीदी जब हमारे घर में भी मेहमान आते तो हम लोग को बहुत खुशी जाहिर होती है
1: जी,
0: और वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी खुशी जाहिर होती है, तो हम अपने मेहमानों का भी इसी तरह से मेहमान नवाजी भी करते हैं, हमारे साथ और दो दिन और रुके हमारे साथ, अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, सम्मान यदि दोनों तरफ से हो तो रिश्तों की मिठास और भी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात बताई रंजू जी आपने। और कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: दीदी मैं जब भी बैठ का गाना सुनना चाहती हूँ।
1: जी बिल्कुल, आप तक पहुँच रहा है आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो सखियों, हमारा और आपका आज का सफर बस यहीं तक। और आज की बातों से हम सभी ने जिंदगी के दो खूबसूरत पलों की बातें की, एक तरफ अतिथि देवो भवा और दूसरी तरफ भाई बहन के मीठे और प्यार भरे यादों का पर्व रक्षाबंधन। अगले क्रम में फिर किसी रोचक विषय के साथ आपके साथ बातचीत जरूर होगी सखियों। आपको बताना चाहेंगे कार्यक्रम में प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और सखियों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा पत्रों के जरिए आप हमें अवश्य बताएं। हमारा पता कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर, पिन नंबर है 495006। आप हमें महिला सभा BSP@gmail.com पर भी मेल्स के जरिए अपने फरमाइशी गीतों को हम तक भेज सकते हैं। और प्रत्येक मंगलवार और

0: गुरुवार को कार्यक्रम के दौरान उनका लुत्फ उठा सकती हैं। और इन्हीं बातों के साथ अब अनुमति दीजिए आपकी दोस्त लिंटा को। नमस्कार।
1: कार्यक्रम महिला सभा अभी हम प्रसारित कर रहे थे और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले जानकारी दे दें आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 8:15 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम। शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाणी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। सुगम संगीत में आज श्रोता सुनेंगे सुनीता राव के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत रात 8 बजे और विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक। और अब आपको जानकारी दे दे कल की सभा के कार्यक्रमों की।

कल सुबह 7:05 पर कार्यक्रम आज सुबह, और उसके बाद आनंद लीजिएगा कार्यक्रम यादों के झरोखे से का। कार्यक्रम अमराई सुबह 8:30 पर लेकर आएंगे। इसमें श्रोता सुनेंगे शेख हुसैन और साथियों के गाए गीत, और साथ ही सुनिएगा राखी गीत उमा सोनी, अमचीरी बाई, शैल बाला ध्रुव और साथियों की आवाज़ों में। सुबह 10 बजे हम प्रसारित करेंगे फरमाइशी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जुड़िएगा सुबह 9 बजे, दिन के 11:30 पर, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, और रात 9:15 से रात 11 बजे तक। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण होगा दिन के 11 बजे। शाम 5:05 पर कार्यक्रम युवा जगत हम लेकर आएंगे। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नेत्रदान पखवाड़ा और मेजर ध्यानचंद पर, साथ ही क्रम मदर टेरेसा जीवन दर्शन हम लेकर आएंगे। कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में बागवानी, फसलों की वर्षाकालीन देखभाल और ईद और ओणम, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भेंट वार्ता में लेकर आएंगे आकाशवाणी गांव मां, इसमें सुनिएगा रेशम कीट पालन से लाभ। इस विषय पर श्री अनिल कुमार कश्यप, सहायक संचालक रेशम जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा से की गई बातचीत। रिकॉर्डिंग और संपादन पंची भैया का, प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौका में रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी समेत 21 जन शिक्षक मल्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दी। रायपुर में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम के आयोजन करेगी बहिनी मन जवान मल्ला राखी बांधिन। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिला में राखे गए एकठन कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना

0: 31वां किस्त के राशिला जारी करीन। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौका मा नई दिल्ली के विज्ञान भवन मा उच्च शिक्षा संस्थान और पॉलिटेक्निक के 21 जन शिक्षक संकाय सदस्य मल्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भेंट करही। एमा रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मा शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी ला घलो शामिल करे गए हे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई हा प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी के चयन मा ओमन ला बधाई और शुभकामना दे हे। राखी तिहार के पहले रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम मा आज स्नेह की डोर कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम मा केंद्रीय सुरक्षा बल सेना और पुलिस जवान मन के हाथ मा स्कूल मा पढ़िया नोनी दिव्यांग नोनी और महिला स्व सहायता समूह के बहनी मन हा राखी बांधिन। ये कार्यक्रम मा विष्णु देसाई हा घलो शामिल होइन। ए मौका मा बछर 2017 मा राखी तिहार के एक दिन पहले माओवादी घटना मा शहीद होए उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा के गोसाइन माधुरी वर्मा हा घलो मुख्यमंत्री ला राखी बांधिन। कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री श्री शाह कहिन कि ये डोरी हा सिर्फ भाई बहनी के माया के बंधना नहीं रह रहे भलुक एहा शहीद परिवार के विश्वास और माया के चिन्हा हरय। ए दौरान मुख्यमंत्री हा रायपुर जिला प्रशासन और आने आने विभाग डहर ले तैयार करेगे 5 अभिनव प्रोजेक्ट हरित पोषण प्रोजेक्ट निरामय तिरंगा शक्ति फेस्ट प्रोजेक्ट अही गुंडिक और रायपुर अनफील्ड के शुरुआत करी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में 27 अगस्त के देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के संग कार्यक्रम रखे जाही। ए दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा वर्चुअल माध्यम ले देश भर के अलग अलग जगह मन मा मौजूद 8 लाख ले ज्यादा युवा मन ले संवाद करही। ए कार्यक्रम ला हरेक जिला के 2 ठन प्रमुख महाविद्यालय मन मा रखे जाही। ए कार्यक्रम हा युवा कनेक्ट के माध्यम ले स्थानीय स्तर मा युवा मन संग गोट बात करे मा केंद्रित थे। एकर अलावा युवा प्रतिभागी मल्ला स्थानीय खेल के माध्यम ले सांसद विधायक और जनप्रति मन के संग सोझे गोटबात करे के मौका मिली। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट के 1 ठन युवा संवाद सत्र घलो रखे जाही। ऐसो ए कार्यक्रम ला युवा भागीदारी खेल विकास और राष्ट्र निर्माण के थीम ऊपर रखे जाही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई हा आज बालोद जिला के डौंडी लोहारा में राखे गए 1 ठन कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के 31वां किस्त के राशि ला जारी करी। ओमन माई लोगिन मन के खाता में 631 करोड़ ले ज्यादा के राशि ला ट्रांसफर करे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री हकीन कि राखी तिहार के पहली बहनी मन के जिंदगी में खुशहाली पहुँचाए के मौका मिले है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करे बर राज्य सरकार डहर ले बनाए गए उच्च स्तरीय समिति के मौजूदगी में परम दिन 27 अगस्त के राजधानी रायपुर में बैठक रखे जाहे। खबर के मुताबिक विषय ऊपर बने विचार विमर्श करे खातिर अलग अलग क्षेत्र के करीबन 200 मनखे मल्ला आमंत्रित करे गए है। एमा आयोग निगम मंडल सामाजिक संगठन समाज के मुखिया विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मल्ला घलो बुलाए गए है। ये दौरान समान नागरिक संहिता के प्रावधान सामाजिक प्रभाव और कई ठीन पहलू ऊपर गोठबात करे जाहे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन हा आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI हा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लावत आज 10 बसर पूरा कर ले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा सोशल मीडिया पोस्ट में कहिन कि राष्ट्र के ए डिजिटल क्रांति में हम जम्मो झन भारतवासी मन ला गर्व करना चाहिए। ओमन कहिन कि UPI प्रणाली के शुरुआत हा भारत के डिजिटल भुगतान हा देश के सबले बड़े फैसला रहिन है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ह एसो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल विद्यार्थी मन ला स्कूल में दाखिला दे म

0: मसूलियत दे है। मंडल डहर ले जारी आदेश के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पास और फेल होए विद्यार्थी मन तय करे गए पात्रता के आधार में 27 अगस्त तक स्कूल मन में दाखिला दे जाही। मंडल हा जम्मो मान्यता प्राप्त स्कूल के प्राचार्य मन निर्देश दे है कि दाखिला के पहली विद्यार्थी मन के पात्रता के जाँच जरूर करे। राज्य में कक्षा 6वीं ले 12वीं तक के पढ़िया लिखा मन प्रदेश के कला संस्कृति इतिहास और लोक परंपरा मन के जानकारी दिवाए खातिर विशेष पाठ्य तैयार करे जाते। खबर के मुताबिक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद डहाल ले राजधानी रायपुर में 24 ले 26 अगस्त तक 3 दिन के कार्यशाला रखे गए है। एमा साहित्यकार संस्कृति के जानकार शोधकर्ता और विशेषज्ञ मन शामिल होके छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति ऊपर आधारित एक ठन कार्य योजना तैयार करे जाते। खेल और युवा कल्याण विभाग डहर ले अवैया अक्टूबर महीना में रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहली सीजन के आयोजन करे जाही। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साह आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोड बात करत बतेन कि लीग में राज्य के आने आने क्षेत्र के 6 टीम भाग ली। एमा राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियन, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाल टाइटन्स शामिल है। ओमन बतेन कि यह देश के कोनो भी राज्य में होवैया पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग है जेला हॉकी इंडिया लीग के तर्ज में खेले जाहे। श्री साह बतेन कि हॉकी लीग के लोगो छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आधारित है। उन्हें लीग के टैग लाइन चलाओ रे संगी हॉकी खेलबो रखे गए है। लीग के अधिकारी शुभंकर बघवा हवाई और जौन छत्तीसगढ़ के समृद्ध वन्य जीवन विरासत के प्रतीक है। हॉकी लीग के मुकाबला दर्शक मन भर निःशुल्क रखे गए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर डहाले राजनांदगांव के सरकारी दिग्विजय स्वशासी महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत फोटो प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य सुचित्रा गुप्ता कार्यक्रम के उद्घाटन करीन। ए मौका में उमन विद्यार्थी मल्ला नशा ले दूरिया रहे के शपथ दिवाइन है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डहाल ले 111 उप अभियंता मन के नियुक्ति आदेश जारी करे गए है। एमा 101 जन सिविल और 10 जन विद्युत यांत्रिक अभियंता शामिल है। नियुक्ति के संगे संग चुने गए जम्मो जन अभियंता मल्ला पदभार सौंप दिए गए है। चुने गए अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति आदेश जारी होए के 15 दिन के भीतर कार्यालय में पदभार संभाले के निर्देश दे गए है। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साहो कहिन कि बड़ संख्या में युवा इंजीनियर मन के नियुक्ति होले विभाग के काम में तेजी आई। और अब थोड़कुन समाचार सार मा। केंद्र सरकार है गेहूं के आटा उखर ले जुड़े उत्पाद में लगे निर्यात प्रतिबंध ला हटा दे है जेखर ले आटा मैदा सूजी और आने आने गेहूं आधारित उत्पाद के विदेशी निर्यात के रास्ता खुल गए है। जांजगीर चांपा जिला के बोड़सरा गांव में करेंट के चपेट में आए ले 3 साल के एक झीन नोनी के मौत हो गए और राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक ठीन गाड़ी ले करीबन 5 क्विंटल गांजा बरामद करे गए है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और रणजी खिलाड़ी राजेश दबेला अवैया महिला T20 एशिया कप 2026 बर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मैनेजर बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड ले श्री दबेला जिम्मेवारी सौंपे गए हैं। और अब एक घाव फिर प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौका में रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी समेत 21 जन शिक्षक मल्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दी। रायपुर में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम के आयोजन करेगी। बहिनी मनहा जवान मल्ला राखी बांधिन। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिला में रखे गए एक ठन कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के 31वां किस्त के राशि ला जारी करीन। एकर संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने। सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हाजिर हूँ आप सभी के फरमाइश भरे ईमेल्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले फरमाइशी गीत से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत से सजाया है शिवहरि ने। फिल्म का नाम है लम्हे और पसंद आई है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं श्रोता अभिजीत कहवाड़कर, सरिता प्रिंस और एकांश कहवाड़कर। और ये श्रोता हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। अम्बागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान। और ये श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, साथ में राजदीप, राशि और शीतल राजेश। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू का मेल हम तक पहुंचा है। और आप हैं डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत और इफ्जाल ताज। कोटवा नारायणपुर बलिया से पसंद ओम प्रकाश राय, उषा अमित राय और हैप्पी राय की आई है। और आप हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहवाकर, निर्मला और विशाल नहवाकर। ये श्रोता हैं सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी और गजेंद्र कुमार, साथ में हयांश कुमार चंदन का मेल। कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले। कर्मा चौक लहारीडीह जिला कवर्धा से पसंद आई है अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू की। और आप है रोहांसी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, साथ में जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमेरी कुरासिया कालेरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, साथ में राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालेंद्री लहरे का मेल। मजनू कटिल्ला से पसंद भेजी है कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा ने। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर लम्हे फिल्म का ये गीत।

लम्हे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें दी थी सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल थे शिव हरि का संगीत। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं अगला फरमाइशी गीत फिल्म चितचोर से। आवाज़ें यशुदास और हेमलता की हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आई है सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा की। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। और यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर। दिल्ली से पसंद बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु की। पांकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, साथ में किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वयाल, प्रथमेश, प्रणाली देशमुख और सर्वद देशमुख का ये मेल। दिल्ली से पसंद आई है तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन की। और इसी गीत को सुनना चाहे है पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चांसोलिया ने। राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी। रघुवीर नगर से है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। हांसी से पसंद भेजी है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक का ये मेल हम तक पहुंचा है। और धुर्रा बांधा भाटापारा से है प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। ये श्रोता है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा और अलका मिठा। बैठाना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। और ये हैं दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना यदु। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का मेल। भिलाई से पसंद भेजी है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर ने। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन का मेल आया है। और ये पसंद भेजी है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम। सनावत से हैं श्रोता मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अल्तमश खत्री, अलकमा, साथ में रमेश गौड़ और मोहम्मद शदाब खत्री ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। रुद्रा खमरिया से पसंद आई है अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका की। और ये श्रोता है लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह। रिंगनी से पसंद भेजी है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। और नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और ये पसंद आई है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया की।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: और अब अगला फरमाइशी गीत छाया फिल्म से तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलील चौधरी का संगीत पसंद है, लुत्रा खमारिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज की। ये श्रोता हैं तिवरता डबरी पारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्री बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और साथ में है चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी। मघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव का ईमेल आया है। मुड़गहन से पसंद भेजी है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति ने। और आप हैं पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीड़ा विनय शंकर पांडे। महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। रोहानसी से ईमेल हम तक पहुंचा है डगेसर राम साहू, घनश्याम, नूतन, गौरव और अलका जानवी साहू का। गांव जाखोत से हैं श्रोता शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। और ये मेल लघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी साहिल और भारती बघेल का। तो लीजिए सुनिए फिल्म छाया का ये गीत।

0: ग्राहक बनिए। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत फिल्म पड़ोसन से, किशोर कुमार की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के गीत, आरडी बर्मन का संगीत और पसंद जमानिया गाजीपुर यूपी से है, सुरेश जसवाल उर्मिला दीपक स्वाति जसवाल की, गांव हीरा वाली फाजल का पंजाब से, सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहनी कल्पित गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया नारंग, बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शोभाताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार, और ये श्रोता है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल विलीज डिक्रेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू राजबत्ती टोप सिंह काजल पूर्वी हेजल राजेश और रेशमा साहू, नाई वाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा अलका मिठा, और इसी गीत को पसंद किया है बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पड़ोसन का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे और अब इसी गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं समाप्त हुआ।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होंगे।

0: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
0: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज डोंडीलोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि जारी की। रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री सहित सुरक्षा बल के जवानों को बांधे रक्षा सूत्र। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा संस्थानों के 21 सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी भी शामिल हैं। और कल ईद मिलादुन्नबी का पर्व प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के डोंडीलोहारा में आयोजित बिहान दीदी और स्व सहायता समूह सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि जारी की। उन्होंने महिलाओं के खाते में 631 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व से पहले बहनों के जीवन में खुशहाली की एक और सौगात पहुंचाने का सौभाग्य मिला है।
8: हमारे प्रदेश की बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार ठीक से मन जाए, इसके लिए सितंबर महीने का महतारी बंधन का पैसा अगस्त में एडवांस में आज जारी किए हैं। कुल 68 लाख बहनों के खाता में 631 करोड़ से ज्यादा की राशि आज अंतरित हुई है। तो मैं छत्तीसगढ़ की समस्त बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन की भी उनको बधाई है।
7: रक्षाबंधन पर्व से पहले रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस जवानों की कलाइयों पर स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बालिकाओं और महिला स्व सहायता समूहों की दीदियों ने रक्षा सूत्र बांधे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर वर्ष 2017 में रक्षाबंधन से एक दिन पहले माओवादी घटना में शहीद हुए उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी का ये धागा केवल भाई बहन के स्नेह का बंधन नहीं बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शहीदों के

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।

0: परिवार के सम्मान, स्वाभिमान तथा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का ये रिश्ता अटूट रहेगा।
1: स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है, जो रक्षाबंधन जैसे त्योहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियां हैं, लखपति दीदियां हैं, बिहान की दीदियां हैं, उनकी कलाई में राखी बांधी है और हमारे जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा तैयार 5 अभिनव प्रोजेक्ट्स, हरित पोषण प्रोजेक्ट निरामय, तिरंगा शक्ति फेस्ट प्रोजेक्ट अही गुंडिक और रायपुर अनफिल्टर्ड का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देशभर से चयनित 31 उत्कृष्ट शिक्षकों में स्थान बनाकर डॉक्टर चौधरी ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए आज 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम युवा कनेक्ट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं से संवाद करने पर केंद्रित है। इसके तहत युवा प्रतिभागियों को खेल हस्तियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से पिछले 12 वर्षों में भारत के खेल इकोसिस्टम के विस्तार और जमीनी स्तर के खेल अधोसंरचना में आए सकारात्मक बदलावों को रेखांकित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र भी होगा, जिसके माध्यम से युवा अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। इस वर्ष ये समारोह युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण की थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं, खेल हस्तियों और भावी कर्णधारों को एक राष्ट्रीय मंच पर जोड़ना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल ईद मिलादुन्नबी का पर्व प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर रायपुर में जुलूस निकाला जाएगा, साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग और अन्य प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईद मिलादुन्नबी की बधाई देते हुए कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जो आपसी भाईचारा और मोहब्बत का संदेश दिया है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आगामी अक्टूबर महीने में रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का आयोजन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस लीग में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की 6 टीमें भाग लेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह देश के किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग है, जिसे हॉकी इंडिया लीग की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के आधार पर 27 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकेगा। मंडल ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि प्रवेश देने से पहले विद्यार्थियों की पात्रता की जाँच जरूर करें। गौरतलब है कि द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त को जारी

0: किया गया था। स्कूलों को प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी 31 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर आज विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से 8:30 तक होगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और रणजी खिलाड़ी राजेश दवे को आगामी महिला T20 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 35 लाख रुपए ठगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वारदात नाकाम हो गई। ठग ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद अलग अलग बैंक खातों में जमा रकम को एक खाते में ट्रांसफर कराने के बाद करीब 35 लाख रुपए निकालने की तैयारी थी। बुजुर्ग के मित्र ने मामले की जानकारी एसएसपी रजनेश सिंह को दी। उनके निर्देश पर सरकंडा टीआई प्रदीप आर्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने आज नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल की करीब 120 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का भूमि पूजन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल और 10 विद्युत तथा यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। और जांजगीर चांपा जिले के बोरसरा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 वर्ष की एक बच्ची की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज डौंडी लोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि जारी की। रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री सहित सुरक्षा बल के जवानों को बांधे रक्षा सूत्र। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा संस्थानों के 21 सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी भी शामिल हैं। और कल ईद मिलादुन्नबी का पर्व प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
6: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
7: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
6: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
7: 47 सालों से निरंतर सेवा में
6: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
8: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
9: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
8: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
10: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
11: FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:01 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है अनजाना। पसंद आई है गुमला झारखंड से नज़मुल हुदा, असम जावेद और शगुफ्ता अंजुम की। तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। तखतपुर से पसंद भेजी है मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने। पानीपत से हैं श्रोता नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। लोरमी चचेड़ी से पसंद आई है कमलकांत मरावी, प्रमीला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी की। और आप हैं सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण विनायक सेन। कुंभार गली कोलगांव से पसंद पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडु रंग कुंभार की। रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। और आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना शर्मा और मेंडी शर्मा। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरो, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। धनोरी तलीवाला से पसंद आई है निसार सलमानी, नौसाद, आलिया और आयान की। और इसी गीत को हमारे और भी श्रोताओं ने पसंद किया है टोरो वाले जिला नवासहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा। धाड़ी नादरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे। दतरंगी भाटापारा से पसंद आई है हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा की। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र शाह। बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। और ये श्रोता है रायगढ़ बिहार से उमराज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। और इसी गीत को अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा ने पसंद किया। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिम, झीम गुप्ता। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता। राजकोट से है राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मेनपाट से अजीत पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से पसंद आई है अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन की। पीपर लोडसर गांव से हैं हमारे श्रोता दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत, लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। और हमारी ये श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल, उमा गुप्ता। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश। भूचो कैंचिया बटिंडा पंजाब से पसंद प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम दमन और अभिजोत की। हिंगोली महाराष्ट्र से पसंद आई है शाहजी भुटके, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े की। और आप हैं महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहनाज, तलहत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। गाँव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दौड़ी, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार का ये मेल आया है। नागरकुड़ा से हैं श्रोता कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये श्रोता नरगोड़ा से हैं। और वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मेल हम तक पहुंचा है। तो लीजिए सुनिए अनजाना फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अनजाना फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। और अब अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले की आवाज़ में दो बदन, इस फिल्म से शकील बदायूनी ने लिखा है, रवि का संगीत। पसंद आई है इन सभी श्रोता साथियों की। ये श्रोता हैं खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियोल हक डावर, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। और ऐठीपारा भाटापारा से पसंद अनीता साहू, वीणा नेहा, मुनिशा साहू की। भाटापारा से पसंद आई है बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवराम वर्मा, सूरज पारिकर, नारायण यदु, भुवन कामरी की। यवतमाल से है पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्य रामटेके। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश कहवाड़कर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित कहवाड़कर और ध्वनि कहवाड़कर का मेल हम तक पहुंचा है। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने भी इस गीत को पसंद किया। आप हैं जालंधर से संदीप चटोलिया, मुंबई से अदीबा नास, फातिमा नसरीन, आलिया और सबानसारी का मेल। जमशेदपुर से पसंद हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया की। सावतपुर से है ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। देवरी भाटापारा से पसंद के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री की। बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, साथ में रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास।

अब्बास वाधवानी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा और चाहत। और बुलंदशहर से पसंद आई है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहना नवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी की। नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, रितु राजपूत। और आप हैं डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका निष्का, तन्मय गजभिये। कुरावाली से पसंद भेजी है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा ने। यह श्रोता बक्सर बिहार से हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरित और रमेश साहू। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा सुलोचना और चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। दिल्ली शहर से असमा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से पसंद फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव की आई है। और ये श्रोता है नागर कोहरा राजनांद गांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा राध्या साहू। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया। जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबर राय। महाराष्ट्र से पसंद भेजी है रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई ने। और भागलपुर से कमल किशोर, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति, टिकू और मुस्कान। दतरंगी से के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन का मेल हम तक पहुंचा है। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। आप है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से पसंद सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एस के पप्पी की। सहारनपुर से है आशु। कस्बा गुनोर से नशीमुल इस्लाम, गुनोरी, फरहीन और दानिश। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा वंडलकर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म चांदनी से ये गीत, आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, शिव हरि का संगीत। पसंद है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति और साथ में है प्रतिभा शर्मा, माया कुमार। निमानाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। और ये श्रोता है गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश, वासु डॉली और पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बाग बहारा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन का मेन हम तक पहुंचा है। और फाजिल्का पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, साथ में है शालिनी, लाडी वानी और आरबी खेरा। पांढरकरवा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे का मेल। खोंधला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवधन सिंह, पैकरा घूर्णी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरा मनी और ऐश्वर्या पैकरा। और ये श्रोता है भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। दिल्ली से पसंद लाल बाबू दीवाना, उमराज और दिव्या भारती की। छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जाटव, डोली, कबीर जाटव और देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदय बान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल का मेल। अकोला से पसंद भेजी है सुशीला देवी, मधुरकर, सदानंद, गौरव, आरव और अर्पिता ने। पैठड़ से पसंद सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव की। पोड़ी भाटाकल्तर से दिलीप चंदन, चोराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। जालंधर से मेल आया है संदीप, ज्योति, मन्नत, भारत और कमल साहनी का। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर चांदनी फिल्म का ये गीत, स्वर है आशा भोसले और विनोद राठौड़ के।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म थ्री इडियट्स का ये फरमाइशी गीत सोनू निगम और शिव घोषाल की आवाज़ें हैं। स्वानंद किरकिरे ने लिखा है, शांतनु मोइत्रा का संगीत। पसंद मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून की। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशीष, सोनाली नारंग और यशोता बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। पुरानी भिलाई तीन चरदा से पसंद नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जिशान और साथ में शाहना नवाज अहमद सिद्दीकी की आई है। और इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल ने। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सी टी दीवाना का ईमेल हम तक पहुंचा है, तो लीजिए सुनिए ये फरमाइशी गीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में थ्री इडियट्स इस फिल्म का ये फरमाइशी गीत आप तक पहुंचा रहे थे। आवाजें थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम की, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, शांतनु मोइत्रा का संगीत। और अब इसी के साथ फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने से मुझे दीजिए अनुमति। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। और इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे और इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। इस विषय से संबंधित समस्याओं जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का स्टडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। और इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग श्रोता 28 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से रात 8 बजे तक सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 होने को है। कार्यक्रम किसानवाणी अब रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: संगवारी हो, हमर मंगलवार के किसानवाड़ी क्रम होते हेलो किसानवाड़ी के, त एमा अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती ज्यादा आमदनी का आधार ए विषय में सुघर हमर जिज्ञासा और शंका के समाधान करत हैं डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव। संचालन मोनिका दीदी के है और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।
1: संगवारी हो खेती किसानी के सुघरवाणी, और अब आप मन सुनाता क्रम हेलो किसानवाणी। भाई हेलो किसानवाणी में आज के विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जिन सब्जी होते ओखर खेती करके हम ज्यादा ले ज्यादा आमदनी कैसे कमा सकथन, और ये विषय में आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ है डॉक्टर गुंजन झा जी। आप मना वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी है कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
2: जी नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार मैडम।
1: हेलो हेलो किसानवाणी।
3: हाँ हेलो किसानवाणी
1: जी भैया। राम राम, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: अखिलेश कुमार साहू, रानीगांव नगरी बोला था।
1: अखिलेश भैया, जैसे कि आज हमारे विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जिन सब्जी होते एकर खेती करके हम ज्यादा आमदनी कैसे कमा सकथन, तो एकले जुड़े का जानकारी चाहिए अपना?
3: अगेती खेती को, जैसे गोभी जो हमला अगेती खेती करना है तो ओकर नर्सरी कब डालना पड़ी, ओकर तैयारी कैसे करना पड़ी, जैसे कि अभी बरसात है, पानी वाली गिरे से चला गिरते थे तो ओकर मौसम कब होगी?
1: जी तो ये सारी जानकारी आपला आज हमर विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बतावत है।
2: नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आपने पूछा कि गोभी वर्गीय सब्जी जो है अगेती गोभी वर्गीय सब्जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी अगेती गोभी वर्गीय सब्जी जो होती है इसे आप जुलाई अगस्त में इसकी नर्सरी डालते हैं। तो आपने पूछा कि इतना पानी आ रहा है इसमें आप किसको कैसे डालेंगे, तो इसके लिए कुछ तकनीक होती है, वैज्ञानिक तकनीक, जिसमें आपको जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनानी पड़ती है, जिसे कि ऊंची क्यारी पद्धति बोला जाता है। और इसमें आपको बीजों को लगाना रहता है, बीजों को लाइन से लगाना पड़ता है, आपको लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन से बीज को लगाते हैं इसमें, और लगाने के पश्चात इसको आपको ऊपर से जैसे आपका जो बांस आती है उसको 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसा आपका टनल, जैसे टनल होता है, नाली होती है, उसे ऊपर से ऐसा लगाना है आपको मोड़ के, और मोड़ने के पश्चात उसमें 40 से 50 मैश की आपकी कीट प्रतिरोधी जो है आपका जाली आती है, नायलोन की जाली पतली मच्छरदानी जैसे रहती है उस टाइप की जाली आती है, उसको यदि आप लगा देते हैं ऊपर से इसको कवर कर देते हैं तो एक ऐसा टनल जैसा सुरंग जैसी बन जाती है वो जो आपकी नर्सरी होती है, तो वो हर प्रकार के कीड़े बीमारियों को बचाती है। तो इस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और यदि पानी आने की समस्या लग रहा है कि पानी आने वाला है तो उसके ऊपर से आप जो है प्लास्टिक की एक पॉलीथीन को रखते हैं और उसके ऊपर लगा दिया जाता है जब पानी आने की संभावना लगती है, ताकि ज्यादा पानी से भी आपकी क्यारी होती है वो गले ना, नर्सरी जो है वो खराब ना हो।
1: जी भैया धन्यवाद भैया। हेलो हेलो किसानवाणी।
4: हेलो किसानवाणी, राम राम मोनिका दीदी।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: जी मैं है ग्राम जुनवानी, स्मृति नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोला था बहिनी।
1: जी भैया, भैया आज ना हमार हेलो किसानवाणी के विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जिन सब्जी होते तो एकर खेती करके हम ज्यादा ले ज्यादा आमदनी कैसे ले सकथन, तो ये विषय ले जुड़े आप मल्ला का जानकारी चाहिए?
4: अब हमला जानकारी ऐसे चाहिए रही बहिनी की हम है 1 एकड़ में गोभी, नवल गोल और कहा जाए कद्दू और रखिया लौकी ये मतलब लगाए हैं, शिमला मिर्च घलो में 1 एकड़ में लगभग ट्राई करे हम
1: जी।
4: वो तो जो विशेषज्ञ मन बताई तबने की इसमें के बीज डाले हम डाले के ला फूल वूल आए चालू हो गए है वे, पर कुछ फूल मन झरत घलो है बहनी।
1: अच्छा तो ये जन आप मन की समस्या है ना, एक समाधान हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बतावत है।
2: किसान भाई सबसे पहले नमस्कार किसान भाई, आप ये बताएं कि किस वाली फसल में जो है आपका फूल झड़ रहा है?
4: जी जी जी, कद्दू का जो है ना कुम्हड़ा कहा गया है, जिसको कुम्हड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सर्वप्रथम तो आपको मेरा सादर अभिवादन, सादर नमस्कार विशेषज्ञ महोदय।
2: जी जी नमस्कार। हाँ जी, कद्दू में जैसे आपने बताया कि इसमें जो होता है आपका एक होता है नर और मादा पुष्प होते हैं, तो इसमें यदि आपका जो पुष्प गिरता है शुरू में वो नर पुष्प होते हैं जो सूख के गिर जाते हैं, है ना, तो इसमें और पॉलिनेशन जो बोलते हैं परागण की क्रिया कीड़ों के द्वारा होती है, जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा होती है, तो यदि जिसमें परागण नहीं हो पाता तो कई बार इसमें ऐसा होता है कि कद्दू के जो नर पौधे होते हैं उनको तोड़ के आपको मादा पौधे में इसमें थोड़ा सा ऐसा हल्का सा लगाना पड़ता है ताकि उसमें परागण हो जाए, कई बार परागण नहीं हो पाता मौसम के कारण, तो इसलिए फूल जो है झड़ने लग जाते हैं। तो इसमें आप इस प्रकार से करके देखें तो आपके जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी।
4: जी जी जी। और गोभी का जो है पत्ते सूख रहे हैं।
2: अभी गोभी किस अवस्था में है आपकी?
4: गोभी अभी जो है फूलने लगा है, अभी छोटे अवस्था फिर भी फूल उसमें आने लग गए हैं।
2: तो उसमें किसी प्रकार के कीड़े या बीमारी दिखाई दे रही है आपको, कि कोई छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हो, जो आपका डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा

0: गोभी वर्गी सब्जियों में आता है, फूल गोभी में, तो वो दिखाई दे रहा है या कुछ?
1: एकदम सूक्ष्म कीड़े तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर वो कुछ काला काला सा मैनी जो नहीं कहते हैं
0: हाँ
1: जिसको
0: हाँ हाँ
1: छत्तीसगढ़
0: जी
1: में,
0: जी जी जी जी
1: उसी टाइप का दिखाई पड़ रहा है
0: जी जी
1: हल्का हल्का।
0: इसमें आप जो है 10,000 PPM की जो आपकी नीम ऑयल आता है उसका 4 ml 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के उसका आप स्प्रे करें, और लगभग 10 से 12 दिन में
1: जी
0: इसको लगातार आप स्प्रे कर सकते हैं। जैविक होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा ये। तो आप इस प्रकार करेंगे तो
1: जी
0: ये जो
1: जी
0: आपका मैनी कीट बोल रहे हैं उस नियंत्रण जो है आसानी से हो जाएगा।
1: जी सर, जी सर, धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बहुत बढ़िया जानकारी दिए, और साथ ही साथ आप ही लोग तो है हमारे सलाहकार, और हम लोगों को अधिक अधिक उत्पादन के जरिया बताते रहते हैं आदरणीय।
2: धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद मोनिका दीदी, आप बहुत बढ़िया बात करवाए हमारे विशेषज्ञ महोदय जी से,
2: जी
1: हम
2: जी।
1: आपके हृदय से आभारी हैं, और संगे संग हमारे हेलो किसान वाणी के लिए भी आभारी हैं, और संगे संग आकाशवाणी रायपुर के घर आभारी हैं बहनी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो, हेलो किसान वाणी।
3: हाँ हेलो किसान वाणी।
2: हाँ भैया, राम राम।
3: हाँ राम राम दीदी, राम राम।
2: आप मन कौन बोले तो कहाँ ले बोले तो भैया?
3: मैं ग्राम तितली विकासखंड सहसपुर लोहरा जिला कबीर धाम से धर्म सिंह साहू बोलत हूँ दीदी।
2: जी भैया जी, तो जैसे भैया आज हमारे विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय सब्जी की जिन खेती करते हैं तो वो ज्यादा आमदनी के आधार आवे, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला।
3: अगेती गोभी खेती करें जिसे से हमें ज्यादा आमदनी चाहिए, जानकारी चाहिए दीदी की, जिसे अगेती गोभी वर्गी में अपन खेती तो करते हैं लेकिन सबसे पहली का है जिसे हम वेरायटी ल नहीं जान पान, जिसे कभी कभी दुकानदार जिन भी वेरायटी की धरा थे धर के हम आके हरा डाल देते हैं ना, वो लगा देते हैं, तो हमारा सही उत्पादन नहीं मिला। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी अगेती वर्गी गोभी के कौन सा थरा डालन जिसमें हमारा अच्छा लाभ मिला है।
2: जी, तो आप मतलब ये जानकारी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बताएं।
0: नमस्कार किसान भाई, जैसा आपने पूछा उन्नत किस्म के बारे में, तो यदि आप फूल गोभी की तैयारी कर रहे हैं लगाने की, तो उसमें आपकी जो अर्ली किस्म होती है जो जल्दी फसल देती है आपकी, वो पूसा मेघना करके एक वैरायटी है, पूसा अश्वनी है आपका, अर्ली काशी कुंवारी करके होती है, पूसा कार्तिकी या आयरिस हाइब्रिड F1 है आपका, अर्ली एक्सप्रेस है, ये सभी वैरायटी है जो अगेती है और फूल गोभी की उन्नत किस्म है जिसको आप लगा सकते हैं। और यदि हम पत्ता गोभी में जाना चाहें तो पूसा अगेती करके इसमें एक किस्म होती है, पूसा संबंध जो प्राइड ऑफ इंडिया, ये 3-4 वैरायटियां हैं जो काफी प्रसिद्ध भी है, किसानों के बीच में फेमस है और काफी अच्छा उत्पादन देती है।
3: तो मतलब ये जानकारी की है कि जिस ना थरहा कभी कभी डालता हूँ तो थरहा ढंग से नहीं उगा है।
0: जी जी जी,
3: तो उखर लिए जिसे अपन ट्रेक में डाल सकते हैं का थरहा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए आपको यदि जैसे अभी बारिश का मौसम है और ये बारिश में आपको थरहा तैयार करना है जो बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसके लिए आप
3: हाँ।
0: यदि प्रो ट्रे में तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रो ट्रे में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको उसे मिश्रण तैयार करना होगा, आपका वर्मी कम्पोस्ट, थोड़ा सा आपकी जो काली मिट्टी होती है बहुत थोड़ी मात्रा में, और आपका रेत और वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों को मिला के आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, और उसको फिर आपको प्रो ट्रे में भर के उसमें एक एक जो प्रो ट्रे के जो खंड होते हैं उसमें आपको एक एक बीज को लगाना होता है, और इस प्रकार से आप अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। इससे एक स्वस्थ नर्सरी तैयार होती है जो आसानी से मतलब खेत में ट्रांसप्लांट की जा सकती है।
3: तो जैसे नर्सरी तैयार करना है तो कल ये नेट लगाना पड़ेगी इसी मतलब अपन घर के अंदर?
0: नहीं, जैसे आप प्रो ट्रे में तैयार कर रहे हैं तो यदि आपके पास ग्रीन शेड नेट है या जो आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे की पानी का सीधा प्रभाव उसमें ना पड़े उस जगह पे रख सकते हैं, और यदि आपके पास प्रोटे की समस्या है नहीं ले सकते हैं आप, तो आप सीधा जमीन में जो है ऊंची बेड ऊंची क्यारी तैयार करिए जो लगभग 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हो, और उसमें सीड को लाइन से डालेंगे आप, बारीक सीड होता है तो उसमें थोड़ा रेत मिला लें, रेत मिला के फिर उसको जैसे हम रंगोली डालते हैं उंगलियों से ऐसे लेके, तो वैसा आप उसको लाइन ऐसा हल्की सी गहरी नाली बनाएंगे 1 सेंटीमीटर गहरी छोटी सी लकड़ी से, और उसमें उसको बीजों को डालेंगे छोटे बीज होने के कारण, और उसको वर्मी कम्पोस्ट से ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर बांस की पतली पतली खपच्चियां काट के ऐसा आपका सुरंग जैसा उस बेड के ऊपर में बनाया जाता है 1-1 मीटर की दूरी, और उसके ऊपर आपकी 40 से 50 मैश वाली जो नायलोन की जालियां आती हैं, जो बोलना चाहिए आपकी जो जैसे मच्छरदानी होती है वैसी एक कीट रोधी जाली आती है आपकी, उसको आपको लगाना होता है जिससे कि आपके जो भी कीड़े बीमारी हैं वो बच जाते हैं, और यदि पानी की ज्यादा आशंका नजर आ रही है तो आप उसके ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक की पॉलीथीन की तैयारी रखें, जैसे ही आशंका लगे कि पानी गिरने वाला है तो उसके ऊपर से इसको कवर कर देना होता है। तो इस प्रकार से एक स्वस्थ नर्सरी आपकी तैयार होती है।
3: ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।
0: जी जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब हमारे संगवारी मन मान लिया इतना सुघर सुघर जानकारी लेवा थे, और हमारे संगवारी मन के फोन आवा थे तो पूछता नौकर मन के का जिज्ञासा है।
0: जी जी।
2: हेलो हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी।
2: हाँ भैया राम राम। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: जय जवाहर बोला था, सहरसा बिहार अमेठी रायपुर ले।
2: जी जी जी मोहन भैया, आज हमारे हेलो किसान वाणी की विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जन सब्जी होते एक खेती ज्यादा आमदनी के आधार हवे, तो एक जुड़े का जानकारी चाहिए आपका?
4: मौसम के हिसाब से जैसे कि कौन कौन से साग सब्जी लगावा चाहिए, कौन से

0: क्या भाजी लगा किसी ऊपर खाद डाला इसके बारे में पूछना चाहते हो भैया?
1: जी जी जी भैया, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी आप मतलब ये विषय में जानकारी दे
2: रहे हैं। नमस्कार किसान भाई, जैसा आप अभी बता रहे हैं कि कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, तो अभी जो मौसम चल रहा है यदि उसमें आप ज्यादा बोलना चाहिए आय का साधन यदि अपने आप उसमें रखना चाह रहे हैं तो आप एक गोभी वर्गीय सब्जी बहुत अच्छी ऑप्शन होता है। जो इस समय जो बेस्ट टाइम है आपका नर्सरी डालने का जुलाई अगस्त जो होता है इसमें नर्सरी डाली जाती है, जिससे कि हमको सितंबर अक्टूबर में मार्केट में

0: समय जो बेस्ट टाइम है आपका नर्सरी डालने का, जुलाई अगस्त जो होता है इसमें नर्सरी डाली जाती है, जिससे कि हमको सितंबर अक्टूबर में मार्केट में सबसे पहली जो गोभी होती है वो हमारे किसान भाइयों की आती है, जो इस प्रकार से अगेती गोभी लगाते हैं, तो उसका जो रेट होता है वो बहुत कीमत बहुत अच्छी मिलती है उनको और ज्यादा फायदा देती है ये फसल जो होती है। तो यदि इस
1: अच्छा
0: समय आप फूल गोभी पत्ता गोभी इसे लगाते हैं तो इसका मार्केट प्राइस जो है काफी अच्छा मिलता है आपको, इस समय नर्सरी डालते हैं तो इसका एक अच्छा समय है, आप इसको अभी लगा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अब माटी उठी क्या होगा, क्या मात्रा वो दवाई वाई के कहा डालना है मतलब?
0: इसमें जो नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी को आप जब लगाएंगे मुख्य खेत में, रोपाई करेंगे, तो रोपाई करते समय आपको लगभग 90 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका 2 फीट की दूरी पे आपको ऐसा मांदा तैयार करना है, जो लगभग ऊंचा मांदा तैयार करना है। और उस मांदा में यदि आप मल्चिंग आती है, मल्चिंग बिछा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मल्चिंग यदि नहीं बिछा रहे हैं तो आपको जो ढलान होती है उसमें आपको गोभी का नर्सरी को रोपाई करना है, ताकि पानी जो है, क्योंकि बारिश का मौसम है, यदि आप उसको ऊपर लगाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आपको ढलान जो होती है उसमें दोनों तरफ ढलान में आपको रोपाई करना है, मेड में 2 लाइन आपको चलाना है गोभी की या आपकी पत्ता
1: ठीक
0: गोभी की। और
1: है ठीक है, बहुत अच्छे जानते हो उसके पर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब जैसे कि मैं कह रही हूँ, आप मना हमारे संगवारी मन की जितना भी जिज्ञासा है ओला बड़े सुघर तरीका ले बतावत हो, तो हमारे मन में एक प्रश्न आवा थे कि जब हमारे जैसे गोभी वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं तो एक उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाई खातिर हमला कौन कौन से पोषक तत्व या पादप हार्मोन के उपयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए?
0: इसमें देखिए जैसे गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, इसमें आपको यदि आपने लगाया तो आपने लगाने के पहले सप्ताह जब रोपाई किया, रोपाई के समय ही उसमें हम यदि कीटों से बचाने, प्रति एकड़ 10 जो है चिपचिपी पट्टियां आती है, जो पीली चिपचिपी पट्टी और नीली जो आपके कीड़ों को जो होती है, जो थ्रिप्स जो चूसने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए होती है, तो आपको लगभग 1 एकड़ में 10 नीली पट्टियां, चिपचिपी पट्टियां और पीली जो पट्टियां आती है उसे लगाना होता है, और 5 फेरोमोन ट्रैप लगाना होता है प्रति एकड़। तो इसको यदि आप लगाते हैं तो आपका जो कीटों का जो नियंत्रण है उसके लिए आप पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि पहले ही शुरुआती अवस्था में आपकी चिपचिपी, जैसे मैंने नीली पट्टी और पीली पट्टियां बताया, प्रति एकड़ 10, और फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो 5 आप यदि लगाते हैं तो ये कीड़ों को बहुत हद तक नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके साथ साथ में यदि आपको गोभी जो होती है उसके पहले 15 से 25 दिन में यदि आपको गोभी की साइज को यदि बड़ा करना है तो आप उसमें जिब्रेलिक एसिड जो आता है या एमिनो एसिड से आधारित जो बायो स्टिमुलेंट आते हैं उसका आपका 0.001% का सॉल्यूशन बनाकर।
2: जी डॉक्टर साहब फोन देख लेते हैं।
0: हाँ जी
2: हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी, नमस्कार दीदी।
2: नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था गा?
3: मैं लखनपुर कवर्धा से बोला था दीदी, दानी राम चंद्रवंशी
2: जी। दानी भैया आज हमारे विषय है अगेती गोभी वर्गीय सब्जी है, खर खेती करके हमन ज्यादा आमदनी कैसे ले सकते हैं, तो ये विषय ले का जानकारी चाहता हूँ आप मन?
3: मैं गोभी खेती करे ला जो थरहा हुआ दे रहे दीदी, 15 दिन हो गए दे। अगेती की मतलब का हो थे, का अगेती है तेल नहीं समझाता मैं, लेकिन थरहा दे हो क्यारी इसी ढंग से लगाना है वही बताती कि लगाए दीदी।
2: जी बिल्कुल, तो भैया आज हमारे जिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गुंजन झा जी, आप मतलब ये जानकारी देवा थे।
0: किसान भाई जैसा आप बता रहे हैं कि 15 दिन आपने लगा चुके हैं, 15 दिन हो चुका है, तो अगेती मतलब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी ऐसी मतलब जो जल्दी मार्केट में आपकी आ जाएगी। गोभी का जो सीजन माना जाता है वो ठंड का होता है अक्टूबर में, लेकिन ये जो आप थरहा डालते हैं वो आप जून जुलाई और अगस्त में डालते हैं, 15 जून के बाद और अगस्त तक डाला जा सकता है। इस ड्यूरेशन में जो नर्सरी डाली जाती है उसे अगेती नर्सरी कहा जाता है, फूलगोभी की खेती कहा जाता है, क्योंकि इससे जो फसल होती है वो आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही या सितंबर के अंत में जो है मिलने लगती है, इसलिए इसे अगेती गोभी की खेती कहा जाता है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा फायदा देती है, उत्पादन भी अच्छा आता है और मार्केट का रेट भी अच्छा मिलता है इसमें आपको। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है कि नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हैं, बहुत पानी का गिरने का समय होता है, तो इसमें आप ऊंची क्यारी पद्धति जो होती है, आप जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना होता है, और उस क्यारी में आपको लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी नालियां, छोटी छोटी नाली बनाना है आपको लगभग आपकी 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उसमें फिर आपको जो बीज होते हैं छोटे होने के कारण उसमें रेत मिला के बीज को उस नालियों में डालना है और वर्मी कंपोस्ट से आपको ढकना है, और जो वो जो बेड तैयार होगा जब आपने ढक लिया उसके ऊपर से आपको जो बांस की खपच्चियां आती है पतली उसको ऐसा मोड़ के आपको सुरंग जैसा बनाना है इसके ऊपर से, और सुरंग बना के उसमें आपको जो कीट रोधी जालियां आती है 40 से 50 मैश वाली प्लास्टिक की जो जाली जैसा आता है आपका जो छरदानी जैसा रहता है जिसको कीट रोधी जाली कहा जाता है, तो उसको आप यदि लगा देते हैं तो हर प्रकार के कीट से जो है नियंत्रण हो जाता है नर्सरी का और आपको एक स्वस्थ नर्सरी जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो एक स्वस्थ नर्सरी आपको मिलेगी।
3: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब हमारे संगवारी लिए गुड़ बात हुई कि पहली आप मना पोषक तत्व के विषय में बड़ सुघर जानकारी देवत रहे हो, तो ये विषय में थोड़ा बता।
0: जैसे मैडम अभी हमारी बात हो रही थी पोषक तत्व में, तो पोषक तत्व में जैसे सबसे पहले बात आती है जैसे कर्ड जब बनना चालू होता है, गोभी का फूल जो बनना चालू होता है, तो उसमें लगभग आपका 15 से 25 दिन जैसे ही होता है तो उसमें हमको एक जिब्रेलिक एसिड हार्मोन्स होता है जो पादप हार्मोन्स होता है और नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, तो इसका यदि हम स्प्रे कर करते हैं 0.0

0: 0.01% का सॉल्यूशन बना के, तो ये एक साइज को बढ़ाने का काम करता है और अच्छी साइज जो होती है उसमें गोभी की आती है लगभग आपका। और इसके साथ में यदि ये भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसके साथ में ही आपका जैसे 35 से 45 दिन होता है तो उस समय यदि आपको बहुत ही गोभी का जो कर्ड होता है या फूल होता है उसकी साइज अच्छी करने के लिए और ठोस करने के लिए यदि आपको चाहिए होता है, तो उसमें हमको नेफ्थलिक एसिटिक एसिड करके एक हार्मोन्स होता है जिसका लगभग आपका 4.5% जो होता है हिसाब से आता है वो, और उसका यदि हम उपयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट आता है। उसके साथ में ही बोरॉन करके हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट रहता है और माइक्रो न्यूट्रेंट का भी साथ में बोरॉन, तो इसका यदि हम सॉल्यूशन बना के यदि स्प्रे करते हैं और इसको डालते हैं लगभग ये भी आपका 35 से 45 दिन के बीच में, तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देता है। और जो आपकी गोभी में ब्राउनिंग जो एक समस्या आती है, भूरा होने वाली समस्या, या हॉलो स्टेम जो बीच में तना जो है उसमें छेद होने लगता, तो वो जो समस्या होती है इस प्रकार से यदि हम माइक्रो न्यूट्रेंट और बोरॉन का स्प्रे करते हैं तो इससे हम बच जाते हैं और एक अच्छी स्वस्थ गोभी जो है उसके कर्ड जो है प्राप्त होते हैं हमको।
1: डॉक्टर साहब, अभी अमन अगेती गोभी की जब बात करत हैं तो भाई कोनो भी फसल हो है उमा रोग बीमारी की समस्या देखा मार थी, तो जब अमन अगेती गोभी की खेती करना चाहते हैं तो ये बताते हो कि उमा जैविक कीट या रोग नियंत्रण कौन प्रकार के रोग कीड़ा की समस्या आती।
0: देखिए, मैं जब गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं इसमें प्रारंभिक अवस्था से ही कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए मैंने आपको नर्सरी अवस्था में जैसे बताया कि हमें कीट रोधी जाली का उपयोग करना चाहिए, और साथ में ही यदि उसके पश्चात यदि हम ऐसे प्रो ट्रे में या ओपन में कहीं कंडीशन में लगी हुई है तो उसमें हम यदि नीम ऑयल जो होता है उसका 4 ml 10,000 ppm का नीम ऑयल का 4 ml जो है पर लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करना होता है। इसमें थोड़ा सा सोप आपका जो साबुन होता है उसको भी मिला लेना है सॉल्यूशन में ताकि उसका असर ज्यादा हो, और उसके बाद इसका नीम ऑयल का स्प्रे करना है आपको, तो जिससे जो आपके चूसने वाले मैनी कीट होते हैं, थ्रिप्स हो गए या फिर इस प्रकार के जो जितने भी कीट होते हैं सफेद मक्खी जो होती है, इससे हम बचाव कर सकते हैं इसका। यदि हमें कुछ इल्ली वाले कीड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे कि डायमंड बैक मॉथ भी होता है, छोटी छोटी इल्लियां दिखाई देती हैं, तो इसके लिए जो बीटी होता है आपका बैसिलस थुरियोजेनेसिस करके उसका 2 g/l पानी में सॉल्यूशन बना के यदि हम स्प्रे करते हैं तो ये भी जैविक है आपका जो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, और इसका स्प्रे हम यदि करते हैं तो हम जो इल्ली वाले कीड़े होते हैं उससे हम बच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अभी जैसे अब बरसात के मौसम है, कहूँ पानी कम गिरा थे कहूँ ज्यादा गिरा थे, कहूँ इसे कि कभी भी बरसात हो जाती
0: है,
1: तो अब हमन जैसे अगेती गोभी की खेती करते हैं तो इमा सिंचाई व्यवस्था या सिंचाई प्रबंधन कौन ढंग से होना चाहिए।
0: देखिए, यदि हम इसमें लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया इसको मांदा बना के ही लगाना होता है, ऊंची क्यारी पद्धति में करके आपको उसका रोपाई करना है, और रोपाई करते समय यदि आपने इसमें मल्चिंग बिछाई हुई है तो आपको उस मल्चिंग में 2 लाइन आप एक मांदा में 2 लाइन चलाते हैं गोभियों की, 2 उसमें लगा सकते हैं, और यदि आपने मल्चिंग नहीं की है तो आपकी जो मांदा होता है उसकी जो ढलान होती है उसमें आप 2 लाइन चलाएंगे, और यदि ड्रिप लगा हुआ है आपके में तो ड्रिप जो है जैसा पानी की अभी समस्या बहुत ज्यादा नहीं होती है पानी की, तो इसमें केवल एक दिन में 15 से 20 मिनट के लिए आपको ड्रिप चलाना होता है, और यदि ओपन कंडीशन में लगी हुई है तो आप जब पानी देते हैं तो पानी जब आप ओपन उसमें पानी देते हैं तो जो आपकी बीच में नालियों में पानी भरता है उसमें बहुत ऊपर तक पानी को ना भरने दें ताकि पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, धीरे धीरे पानी उसमें रिस के पहुंचे, सीधा पानी ना पहुंचे नहीं तो गलन की समस्या आ सकती है इसमें, तो ये ध्यान रखें। और पानी यदि बहुत ज्यादा गिरने के कारण पानी भराव की समस्या आती है तो 1 घंटे से ज्यादा अपने खेत में पानी को भरा हुआ ना छोड़ें जिससे कि गलन की समस्या या अन्य बीमारियों से हम बचा जा सके।
1: डॉक्टर साहब, ये अगेती गोभी में घलोक कोनो नींदा या खरपतवार की समस्या आती है का, तो ओखर निदान कैसे करें।
0: देखिए, यदि हम इसमें जैसे गोभी और फूल गोभी पत्ता गोभी में जनरली हम जब लगाते हैं यदि घना जो जैसे मैंने बताया 2 लाइन लगाना है आपको, तो इस प्रकार की समस्या इसमें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि किसी प्रकार की समस्या ऐसा लग रही है कि हमें खरपतवार दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में हम इसमें यदि सकरी पत्ती वाली है तो उसके लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है या फिर आपका ऑक्सीफ्लोरोफेन का उपयोग कर सकते हैं, और जितनी भी जो सकरी पत्ती वाली होती है उनके लिए बहुत अच्छा एक खरपतवार नाशी होता है।
1: डॉक्टर साहब, हम कोनो भी खेती किसानी के काम बताला शुरू करते हैं तो हमारे ये रीते कि भाई वहाँ गुणवत्ता घलोक बने मिले, उत्पादन घलोक बने मिले, ये खातिर हम जितना संभव हो सकते तो जैविक या रासायनिक खाद के उपयोग करते हैं, तो आप मन ये बताते हो कि जब हम अगेती गोभी की खेती करना चाहे तो इमा खाद उर्वरक कैसे और कितना मात्रा में डालना चाहिए।
0: जैसे कि हम खाद और उर्वरक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जो खाद होती है वो लगभग 100 से 130 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ और 150 से 200 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 40 से 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास जो पोटास बोला जाता है उसकी मात्रा प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, और जिसमें से जो सिंगल सुपरफास्फेट होता है और जो आपका पोटास होता है उसे आपकी मांदा बनाते समय उसकी तैयारी के समय उसको मिला सकते हैं उसमें, और जो नाइट्रोजन यूरिया वाली जो खाद होती है उसे हम 2 स्प्लिट डोज में डालते हैं, पहला जो होता है वो लगभग आपका 15 दिन बाद डाला जाता है।
1: गुड बात अगर वो फिर हमारे संगवारी मन के फोन आवा थे सुनथन का जानकारी चाहते हो मन। हेलो हेलो किसान वाणी।
2: नमस्ते,
1: नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: हम डॉक्टर सितार बिहार के वैशाली जिला।
1: जी भैया, भैया आज हमारा विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय सब्जी की खेती ज्यादा आमदनी के आधार, तो इकल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला।

0: के बारे में जानना चाहता हूँ, जल्दी तैयार हो जाए, कम खर्चा लगे, बढ़िया चीज मिल जाए।
1: जी जी, तो ये विषय में जानकारी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बतावा थे।
2: जी, फूल गोभी की जो आपकी जो अगेती फूल गोभी की बात चल रही है, तो इसमें सबसे पहले उन्नत किस्म की आपने बात की, तो उन्नत किस्म में मैंने जैसे बताया कि पूसा मेघना, पूसा अश्वनी जो वैरायटी है, काशी कुमारी है आपकी, पूसा कार्तिकी वैरायटी है, या यदि हाइब्रिड में जाना चाहें तो आयरिस हाइब्रिड 1 है आपका, या अर्ली एक्सप्रेस करके वैरायटी है। ये सभी वैरायटियां बहुत ही उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं फूल गोभी के लिए। और यदि पत्ता गोभी आप लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप पूसा अगेती, पूसा संबंध हो गया, या प्राइड ऑफ इंडिया जो वैरायटी होती है, ये अर्ली किस्म होती है, जिसको आप लगा के अक्टूबर में या सितंबर के अंतिम हफ्ते में इसका उत्पादन आपको जो है मार्केट में आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं।
0: सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ।
2: जी जी,
1: धन्यवाद भैया। हेलो हेलो, किसान वाणी।
3: राम राम दीदी।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: मैं भाठा पारा जतरंगी ले हीरू राम साहू बोला रहे मुनिका दीदी।
1: जी भैया, भैया आज हमारा ना हेलो किसान वाणी के विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जन सब्जी है, एकर खेती ज्यादा आमदनी के आधार है, तो भैया ये विषय ले जुड़े आप ला का जानकारी चाहिए?
3: खेती करना है तो कैसे आमदनी मिल लेने जानकारी।
1: मैंने ये जानना चाहता हूँ कि गोभी वर्गीय सब्जी करके आमदनी ला कैसे बढ़ा सकता, तो आप ला ये में जानकारी दी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी।
2: किसान भाई,
3: नमस्कार भाई।
2: जी नमस्कार, नमस्कार। जैसा आप बता रहे हैं कि अधिक उत्पादन कैसे मिल सकता है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि अभी जो सीजन होता है इसमें यदि आप गोभी वर्गीय सब्जी लगाते हैं, थोड़ी प्रिकॉशन रखना होता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तो इसमें आप यदि लगाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग आपका 1.5 से 2.25 लाख रुपए आप इसमें कमा सकते हैं, और खर्चा जो होता है लगभग 40 से 50 हजार के बीच प्रति एकड़ आता है यदि आप गोभी वर्गीय सब्जी लगाते हैं, फूल गोभी या पत्ता गोभी। और लेकिन इसमें जो उत्पादन के बाद आपको जो शुद्ध लाभ होता है वो लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें आपको प्रति एकड़ मिलता है, तो इसलिए एक बहुत अच्छी। जी जी, और यदि आपका मार्केट में रेट 30-40 रुपए के हिसाब से हम बता रहे हैं, यदि ज्यादा रेट आपको मिल जाता है तो आपको और ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है, मतलब कमाई होती है आपकी। तो इस प्रकार से यदि इसका सिलेक्शन करते हैं इस सीजन में लगाने के लिए, तो फूल गोभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मौसम में लगाने के लिए फसल के रूप में।
3: धन्यवाद,
1: धन्यवाद भैया। तो डॉक्टर साहब, हमारे संगवारी मन की फोन आए कि पहले हम गुड़बात करते रहे खाद और उर्वरक के विषय में।
2: जी जी,
1: तो यही विषय में आओ विस्तार बताते हो।
2: जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एनपीके जो होता है, मेन फर्टिलाइजर जो हमारा होता है, यूरिया, पोटास और डीएपी, एसएसपी हम डालते हैं, तो इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि 100 से 130 किलोग्राम जो है लगभग यूरिया प्रति एकड़ की मात्रा लगती है हमें, और लगभग 150 से 200 किलोग्राम आपका सिंगल सुपरफास्फेट, और 40 से 50 किलोग्राम जो है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा लगती है प्रति एकड़ हमें। और इसे देने की यदि कब देना चाहिए इसकी बात आएगी, तो लगभग आपका जो पोटास होता है और एसएसपी होता है उसे आप लगाने के समय ही, खेत की तैयारी के समय आपको देना होता है, और जो यूरिया की मात्रा होती है उसे 2 स्प्लिट डोज पे देना होता है। आप पहला जो होता है या 2 या 3 स्प्लिट डोज दे सकते हैं पहली 15 दिन बाद, उसके बाद दूसरी मात्रा 30 से 35 दिन बाद, और फिर 40 दिन बाद जो है इसे दिया जाता है 3 स्प्लिट डोज पे।
1: डॉक्टर साहब, अब जाति बिराती एक और प्रश्न मन में आवत रही से कि उत्पादन लागत और लाभ के बात करें, तो अगेती गोभी की खेती करके हम कैसे ले सकते हैं?
2: अगेती गोभी में देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सीजन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गोभी हमारी ठंड में, जो गोभी आती है वो ठंड में आना चालू होती है, और यदि हम मार्केट में सबसे पहले अक्टूबर में जैसे हमारी ठंड चालू होती है उस समय हमारी गोभी मार्केट में आती है, तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। मिनिमम आपको 30 रुपए किलो तक जो है किसानों के पास से मिनिमम जाता है, और यदि अच्छा रेट मिले तो 50-60 रुपए किलो तक वो गोभी चली जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगाने में केवल आपकी लगभग 40 से 45 हजार प्रति एकड़ का खर्चा आता है, लेकिन इसमें जो उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद जो हमें शुद्ध लाभ होता है लगभग आपका, यदि हम 30 रुपए केजी के हिसाब से भी लेते हैं कि हमारा सेल आउट हुआ है, तो उससे लगभग आपका 1.25 लाख से 2 लाख रुपए का आपको अर्निंग हो जाती है। तो यदि इस प्रकार से आप प्लानिंग करते हुए लगाते हैं तो फूल गोभी बहुत ही अच्छा फायदा देने वाली फसल है इस सीजन के लिए।
1: जी डॉक्टर गुंजन झा जी, आप मन बड़ सुघर सुघर तरीका ले हमारे संगवारी मन के फोन के माध्यम ले होकर मन के खेती किसानी की समस्या के निदान करे, और संगे संग हमरो जो समस्या या जानकारी के जिज्ञासा के विषय रही से ओला आप मन बड़ सुघर तरीका ले बताए, तो ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
1: संगवारी हो, हेलो किसान वाणी मां आज के विषय रही से अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती ज्यादा आमदनी का आधार, और ये विषय मां आप मन के फोन के माध्यम ले समस्या और जिज्ञासा के समाधान बतावत रही समरसंग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी। आप मन हां वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी है कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव मां, और आप मन संग फोन के माध्यम ले गुड बात करत रहे मैं मने आप मन के संगवारी मोनिका। कार्यक्रम मां तकनीकी सहयोग रही से मोहम्मद अशरफ, अंजू विजयन और उदय कुमार ठाकुर के, और प्रस्तुत करता रही इन्हें शशि प्रकाश पांडे जी है। तो भाई आज के ये क्रम ईचे सिरावत है।
4: क्रम हेलो किसान वाड़ी मा अगेती गोभी वर्गी सब्जी के खेती ज्यादा आमदनी के आधार, ए विषय में सुघर हमारे समस्या और जिज्ञासा के समाधान हमला मिलिस डॉक्टर गुंजन झामन ले। आप मन वरिष्ठ वैज्ञानिक हवे,

0: है भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
1: लक्ष्मीकांत, अब बेरा है हमर क्रम कृषक प्रश्न मंच के, जिमा ये पता चलते कि हमर संगवारी मन कतना चेत लगा के हमर कार्यक्रम ला सुनते। तो भाई बता तो आज के कृषक प्रश्न मंच में हमारे आज के प्रश्न का है।
3: हमारा आज के प्रश्न है अगेती गोभी काला कहे जाते। संगवारी हो, प्रश्न एक बार फिर ले सुनो। हमार प्रश्न है अगेती गोभी काला कहे जाते।
1: और सही जवाब पर मेल आईडी मैं बता देता हूँ संगवारी हो। सही जवाब पर मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। और पांचों हफ्ता के सवाल और जवाब बताही लक्ष्मीकांत।
3: पांचों हफ्ता प्रश्न पूछे गए रही से जैविक खेती में कौन कौन से खाद डाले जा सकते। अब एक सही जवाब है संगवारी हो, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, हरी खाद, ये सब के उपयोग करना चाहिए।
1: और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नामला मैं बता देता हूँ। सही जवाब भेजिए संगवारी मन है लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन, गरापार बांधा बाजार ले है गंगाराम साहू, सुलोचना मानवेंद्र राकेश साहू, रानीगांव नगरी ले है खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा शुभम और सेजल साहू, परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी तुसारनी और खुमेंद्र मसिया, अमलेश्वर ले है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, गुड़िया और यांश ठाकुर। सही जवाब भेजिए जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा
3: बधाई। संगवारी हो, ए रही किसानवाड़ी प्रायोजक रहीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो, होते जाए के बेरा फिर बता देवन काली के कार्यक्रम। काली संजा बेरा चौपाल मां क्रम हुई चिट्ठी मिलीस और हुई आज की सलाह क्रम, जेमा गुड़ बात के विषय हुई, जानकारी के विषय हुई, बदलत मौसम मां खेती ऊपर प्रभाव और किसान के तैयारी और ये विषय मां जानकारी दी विशेषज्ञ नीलम सिन्हा। भाई एकरे संग संग हुई हमार क्रम कृषक प्रश्न मंच, जेमा आज के प्रश्न पांचों हफ्ता के प्रश्न संगवारी मन के नाम और सही जवाब बताबो, संगे संग गीत संगीत की मधुरता तो बगर बेकर तदेव विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला मोनिका
3: लक्ष्मीकांत के
1: राम राम, राम।

कार्यक्रम किसानवाड़ी अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज श्रोता सुनेंगे सुनीता राव के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गैर फिल्मी नगमा। इसे लिखा है राजेश जौहरी ने और संगीत दिया है असलम ने।

सुनीता राव की आवाज़ में राजेश जौहरी का लिखा ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। संगीत दिया था असलम और लेस्ली लेविस ने, स्वर सुनीता राव का था। और अब श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान के तहत ये सूचना।

0: नेचुरल जागृति अभियान में प्रस्तुत है आम जागरूकता संबंधी कुछ स्लोगन। साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है या तैयारी, सावधानी ही बचाव है, साइबर सुरक्षा का यही सुझाव है। जागरूक बनबो, सबला सिखाबो, साइबर ठगीला छत्तीसगढ़ ने भगाबो। ओटीपी और पासवर्ड हवाई तो ताला, ककरो संग साझा छन कर भी लाला। मोबाइल कंप्यूटर चलाबो ध्यान से, साइबर अपराध ला रोको ईमान से। फर्जी कार्ड से रहें सावधान, साइबर सुरक्षा बने पहचान। जागरूक नागरिक सुरक्षित परिवार, साइबर ठगी मा करो प्रहार। जागरूक रहो, सुरक्षित रहो, साइबर ठगी ले बच के रहो। सतर्कता का हथियार उठाओ, साइबर ठगों को धूल चटाओ। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़।
1: साइबर जागृति अभियान के तहत ये महत्वपूर्ण जानकारी अभी आप सुन रहे थे। और अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत में अगला गैर फिल्मी गीत सुनीता राव की आवाज में। एल्बम का नाम है तलाश, गीत लिखा श्याम अनुरागी ने, संगीत सुनीता राव का।

0: तलाश एल्बम से सुनीता राव की आवाज़ में ये गैर फिल्मी नगमा हम आप तक पहुंचा रहे थे। श्याम अनुरागी के बोल, सुनीता राव का संगीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। और इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। और इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। श्रोताओं, इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से रात 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, आपको सवाल पूछने संबंधित विषय फिर से बता दें, खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। इस विषय पर आप सवाल पूछ सकते हैं। समय होगा सुबह 10:30 से 11 बजे तक और हमारे स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त हुई। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को है। अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम।
1: काफी वृद्धि देखी गई। अधिकांश साइबर ठगी के मामलों में यह पाया गया है कि लोग जागरूकता, सतर्कता और समुचित जानकारी के अभाव में साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा साइबर जागृति अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री रोहित झा। श्री झा इस समय छत्तीसगढ़ पुलिस में गुप्तवार्ता विभाग में पदस्थ हैं। रोहित जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: जी, धन्यवाद।
1: रोहित जी, बताइए कि जो साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है वह कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा?
2: जी, छत्तीसगढ़ पुलिस का यह अभियान 15 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है
1: जी।
2: और इसे हम 2 अक्टूबर 2026 तक चलाएंगे।
1: जी, करीब 1.5 महीने का यह अभियान है।
2: जी, लगभग 1.5 महीने का।
1: जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है इस अभियान का?
2: इसको मुख्य रूप से शुरू करने का विचार यह था कि साइबर क्राइम आज के तारीख में बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा है
1: जी।
2: और प्रत्येक व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल का फोन है
1: जी।
2: वह साइबर क्राइम के लिए एक प्रकार से वर्नेबल है
1: जी।
2: तो दिन प्रतिदिन लोग इस क्राइम से न केवल रूबरू हो रहे हैं बल्कि प्रभावित भी हो रहे हैं।
1: बिल्कुल जी।
2: और जरूरत इस बात की है कि हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बच सकें ताकि हम साइबर क्राइम से प्रभावित न हों। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को, जन सामान्य को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने और साथ ही साथ उनको यह बताने कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है।

0: से वो साइबर क्राइम से बच सके, यह एक संकल्पना ली गई कि हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें लोगों के बीच में जा करके हम लगातार उनको साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर सकें।
1: जी, इसमें जैसे करीब आपने जैसे बताया कि लगभग 1.5 महीने लंबी अवधि का यह अभियान है, 1.5 महीने एक बड़ी लंबी अवधि होती है, तो इस दौरान यह अभियान कितने चरणों में संचालित होगा और अलग अलग चरणों में समाज के किन किन वर्गों पर फोकस किया जाएगा, किस तरह से इस पूरे अभियान को प्लान किया गया है?
0: जी, यह कार्यक्रम 7 सप्ताह तक चलेगा। इसमें 7 सप्ताह को हमने अलग अलग विषयों के लिए बांटा हुआ है। पहले सप्ताह के दौरान हम इसे विद्यार्थी एवं युवा केंद्रित रखा है हमने। दूसरे सप्ताह में हमने वित्तीय धोखाधड़ी एवं UPI सुरक्षा से संबंधित विषयों को रखा है। इसका लक्षित समूह बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम बैंकों, ATM परिसरों, बैंकिंग सेवा केंद्रों एवं अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से जो वहां के अकाउंट होल्डर्स हैं
1: जी,
0: उनको आम नागरिकों को UPI फ्रॉड, फर्जी कॉल मैसेजेस, OTP, पिन साझा करने संबंधी, QR कोड आधारित जो ठगी होती है, इन सब के बारे में मौके पर ही जागरूक कर सके।
1: जी,
0: इसके अलावा जो तीसरा सप्ताह हमारा शुरू होगा जो 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा, इसको हमने वरिष्ठ नागरिक केंद्रित रखा है।
1: अच्छा।
0: जैसा कि आपने अभी देखा होगा हाल ही के दिनों में कि डिजिटल अरेस्ट नाम की एक शब्दावली चल निकली है।
1: जी,
0: इसका मुख्य टारगेट हमारे वरिष्ठ जन है। तो हमने इस सप्ताह में मुख्य रूप से डिजिटल अरेस्ट, फर्जी अधिकारी बन के जो फर्जी कॉल आते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जो धमकियां होती हैं जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रभावित होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने तीसरा सप्ताह पूर्ण रूप से डेडिकेट किया है
1: जी, वरिष्ठ नागरिकों को।
0: जी, इसके बाद हमारा जो चौथा सप्ताह होगा
1: जी,
0: उसमें हमने महिलाओं और जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको केंद्रित रखते हुए महिला कॉलेजों में एवं अन्य महिला संगठनों में महिलाओं को जो स्मार्टफोन की प्राइवेसी की सेटिंग्स, सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा, इन सब विषयों पे जो व्यक्तिगत, चूंकि महिलाओं के साथ फेक आइडेंटिटी, फेक पिक्चर मॉर्फिंग करके बहुत सारे अपराध होते हैं
1: जी,
0: तो इन सब अपराधों से बचने के लिए तथा साथ ही साथ जो ऑनलाइन बहुत सारे उत्पीड़न होते हैं आज के समय में, साइबर स्टॉकिंग एक बड़ा मुद्दा है, तो इन सब विषयों पर जागरूक करने के लिए हमने अपना चौथा सप्ताह महिलाओं एवं बच्चियों को डेडिकेट किया है।
1: जी,
0: जो पांचवा सप्ताह है इसमें हमने असंगठित क्षेत्र के युवा श्रमिक, खासकर ऐसे लोग जो नौकरियों की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को केंद्रित रखते हुए हमने रोजगार कार्यालयों में ITI, कौशल विकास केंद्र, श्रमिक सहायता केंद्र, जो सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जो PSUs हैं, वहां पर जाकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में सामान्य तौर पर रोजगार की तलाश में युवा होते हैं, उनको फर्जी नौकरी के विज्ञापनों, ऑनलाइन जॉब ऑफर, फर्जी भर्ती एजेंसियों, रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी, इन सब चीजों से जागरूक करने का हमारा प्रयास रहेगा।
1: जी,
0: इसके बाद हमारा छठवा सप्ताह जो है वो हम मुख्य रूप से शासकीय क्षेत्र की संस्थाओं को टारगेट करेंगे। आप और हम सब शासकीय सेवक हैं, ये लोग भी साइबर क्राइम से अछूते नहीं हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें हमारा उद्देश्य है जो हमारे शासकीय प्रतिष्ठान है, चाहे वो कोर्ट रूम हो, चाहे वो शासकीय कोई ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, ऐसी जगहों पर जाकर के हम जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी है उनको साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे और उनको जागरूक करेंगे।
1: जी,
0: इसके बाद जो हमारा आखिरी सप्ताह है, 7वां सप्ताह, इसको हमने साइबर चौपाल का नाम दिया है। हम ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में जा करके ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को OTP, UPI फ्रॉड और अन्य जो सामान्य ठगी के मामले हैं जिसमें सामान्य लोग दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं, इसके बारे में जा करके हम जागरूक करेंगे।
1: जी, बहुत ही व्यापक यह अभियान चलाया जा रहा है, जैसा भी आपने जानकारी दी है, बहुत अलग अलग वर्गों पर फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित जो है वो मानव संसाधन की आवश्यकता होती है जो लोगों को बताए। तो ये किस तरह से संचालित किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: इसके लिए हमने एक राज्य स्तर पर एक टीम बनाई है
1: जी,
0: और सारी गाइडलाइंस हमने हमारे जो 33 जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षकों को जारी की है
1: जी।
0: इस अभियान की जानकारी देने के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता की गई है
1: जी।
0: आम जन को बताया गया है
1: जी।
0: किन किन क्षेत्रों में चलेगा इसकी जानकारी दी गई है
1: जी।
0: और ये पूरे का

0: कार्यक्रम जो है हमारे जिलों से संचालित होगा।
1: जी
0: हम जो राज्य स्तर पर टीम है वो इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे और हमारा जो थाना लेवल का अधिकारी और कर्मचारी है वो फील्ड में उतरकर मैदानी अमले के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेगा।
1: जी बहुत अच्छी बात है रोहित जी, जैसे आपने बताया कि थाने स्तर पर जो है वो अधिकारी और कर्मचारी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो उनको भी इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरह से उन्हें जागरूक करना है?
0: देखिए साइबर क्राइम ये तो जब से मोबाइल फोन आया है, इंटरनेट की दुनिया ये तब से शुरू हुई है और ये नित परिवर्तित हो रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम का जो सबसे बेसिक अपराध है उस पे फोकस करना। तो हमारे जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी है उनको इस बारे में भली भांति जानकारी है और निश्चित तौर पे यह अभियान उनके सक्रिय योगदान से सफल होगा।
1: बिल्कुल सही बात, ये आपने कहा कि जो बेसिक तरह के जो साइबर अपराध होते हैं जो ज्यादातर होते हैं, तो उनके बारे में आपने अभी जिक्र किया है, किस तरह के मामले साइबर ठगी के छत्तीसगढ़ में आमतौर पर सामने आते हैं ये बताएं।
0: देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो है ओटीपी फ्रॉड। जाने अनजाने आपसे ओटीपी मांगता है, आपने ओटीपी दिया और एक आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया अपराधी के पास। इसके अलावा दूसरा तरीका है फर्जी कॉल। आपको फोन कॉल आएगा और ये बोला जाएगा कि मैं किसी पुलिस अधिकारी के रूप में बात करेगा कि आपका जो कोई परिचित है वो किसी समस्या में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी अन्य प्रकार की समस्या में है, ताकि आप अधीर हो जाएं और उसमें आप निर्णय लेने की स्थिति में न रहें,
1: जिसको पैनिक होना कहते हैं।
0: यस, और उस अनिर्णय की स्थिति का फायदा उठाकर जो अपराधी है वो आपसे पैसे अपने अकाउंट में ले लेगा और इस प्रकार से आपसे ठगी हो जाएगी।
1: जी
0: कई बार जैसे नौकरी के नाम पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड कर दिया जाता है और उसके नाम पे ठगी हो जाती है। इंश्योरेंस के नाम पे कई बार ठगी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई इंश्योरेंस आपने कराया है, किसी कारणवश आपने क्या किया, एक आध साल का आपका प्रीमियम ब्रेक हो गया, तो वो आपको फोन करेंगे कि आपका प्रीमियम एक साल के लिए ब्रेक हो गया, अब हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आपको 30% कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो सामान्य तौर पर व्यक्ति ये समझता है कि ये एक ऑफर है, तो वो उस पे आगे इनिशिएट करता है, वो एक लिंक भेजता है। आज के समय पे मुझे लगता है कि 90% जो ट्रांजेक्शन है वो लिंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, इन्हीं माध्यमों से हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसका फायदा वो उठाता है, वो एक लिंक भेजता है और उस लिंक पे आपको कहता है कि इस लिंक पे आपको पे करना है।
1: जी,
0: और आप पे करते हैं, आप ये वेरीफाई नहीं करते कि सही जगह पैसा जा रहा है कि नहीं, और वो बात भी उसी तरीके से करता है कि वो उसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है।
1: जी जी,
0: तो पैसा किसके पास गया, ठग के पास।
1: जी,
0: और आप ठगी के शिकार हो गए।
1: मतलब आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि या तो जो ठग लोग हैं व्यक्ति के डर का फायदा उठाते हैं या फिर उनके लालच का।
0: निश्चित तौर पे दूसरा विषय जो है वो ज्यादा
1: लालच वाला
0: जो विषय है वो ज्यादा प्रभावी है।
1: जी अच्छा रोहित जी, क्योंकि आपका बड़ा अनुभव है, कई मामलों को आपने देखा होगा, डील किया होगा, लोगों को आप आसान भाषा में क्या सलाह देना चाहेंगे कि मूल रूप से वो क्या सावधानियां बरतें, किन किन चीजों का बुनियादी रूप से ख्याल रखें कि वो साइबर ठगी से बचें?
0: इसमें मैं 3 मूल मंत्र देना चाहूंगा।
1: जी,
0: कभी भी ओटीपी किसी को नहीं बताना है।
1: अच्छा,
0: ओटीपी आप अपने परिवार के किसी जन को भी ना बताएं।
1: जी,
0: दूसरी बात मैं कहूंगा कि कभी भी आप कोई भी किसी भी साइट पर जाते हैं तो क्लिक करने के पहले एक बार सोच लें कि आप किस चीज पर क्लिक कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो मैं उसको बोलता हूं थिंक बिफोर क्लिक।
1: ओके,
0: और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, किसी भी अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को न उठाएं।
1: जी,
0: ये जो 3 बातें हैं इसको आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए।
1: जी, एक बात और रोहित जी, इस कार्यक्रम के अब अंतिम चरण में हम लोग हैं, ये बताइए कि आजकल लोगों की निर्भरता अपने मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा हो गई है, वही सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो डिजिटल लेन देन की बात हो, बात करने की बात हो, व्हाट्सएप कॉल की बात हो, जो भी हो, तो मोबाइल फोन यदि किसी का गुम जाता है या चोरी हो जाता है ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए, और जब मोबाइल फोन है मान लीजिए कि कुछ अनहोनी हो जाए तो किस तरह की जानकारियां लोगों को पहले रख लेनी चाहिए कि जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो क्या जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी उनके मोबाइल फोन से संबंधित, और गुमने की स्थिति में सबसे पहला कदम व्यक्ति को क्या उठाना चाहिए?
0: देखिए, आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है
1: जी,
0: वो आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए। जब भी आप रिपोर्ट कराने जाएंगे
1: जी,
0: तो वो पुलिस आपसे मांगेगी
1: जी,
0: क्योंकि वो आपके डिवाइस का यूनिक नंबर है। दूसरी बात, कभी भी अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ या गुम हुआ
1: जी,
0: सबसे पहले अपना सिम ब्लॉक,

0: लीजिए।
1: अच्छा, जो सिम वाली कंपनी है टेलीकॉम की उससे संपर्क करके।
0: हाँ, उससे संपर्क करके अपना सिम ब्लॉक कराएं
1: जी।
0: इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड होंगे
1: जी
0: वो ओटीपी बेस्ड होते हैं मैक्सिमम।
1: बिल्कुल,
0: वो आपके सिम से कनेक्टेड है
1: जी।
0: तो जो ठग है वो इसी का फायदा उठाता है, वो आपका मोबाइल चुराया, सिम निकाला, किसी दूसरे फोन में डाला, चालू किया
1: जी,
0: और ट्रांजेक्शन शुरू होगा तो ओटीपी उस पे जाएगा
1: जी।
0: तो इसलिए सबसे पहले मोबाइल गुम हो या चोरी हो तो पहले सिम ब्लॉक करा दीजिए
1: जी
0: और तुरंत पुलिस के पास जाइए।
1: और इसके अलावा बैंक वैंक से भी संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है क्या?
0: एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट है। अगर अच्छा। मान लीजिए आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया जिसमें आपके मतलब खाते से कुछ पैसा निकल गया
1: जी,
0: ऐसी स्थिति में 1930 नंबर है एक,
1: अच्छा,
0: भारत सरकार ने जारी किया है, इस नंबर पे कॉल करें तुरंत
1: जी,
0: और तुरंत कॉल करके अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं
1: जी।
0: होता कैसे है, आपके साथ मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ
1: जी,
0: तो पैसा किसी न किसी अकाउंट में जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में
1: जी।
0: तो ये जो गोल्डन आवर का रूल ये है कि आप जितनी जल्दी 1930 पे कॉल करेंगे
1: जी,
0: 1930 के माध्यम से जो पैसे के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर है उसको रोका जाता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए अगर किसी प्रकार का यूपीआई फ्रॉड होता है या किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन का फ्रॉड होता है तत्काल 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: अब इस कार्यक्रम के अंत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम के विरुद्ध जागृत करने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है
1: जी।
0: मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस अभियान की जो मुख्य थीम है साइबर जागृति की एक सेल्फी, सभी लोग इस अभियान से जुड़े, साइबर जागृति की एक सेल्फी लें और अधिक से अधिक लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। आप स्वयं जागरूक हों और अगर आपने अपने किसी पड़ोसी को, किसी भाई को, किसी अन्य दोस्त को जागरूक किया तो ये एक चेन रिएक्शन बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी और एक से एक मिलकर हम 11 होंगे और हम छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के मामले को बहुत हद तक रोक पाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, वाकई बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि लोग साइबर ठगी से बचते हैं तो वाकई ये आज की ये चर्चा बहुत सार्थक साबित होगी हम सबके लिए। और आपका जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ पुलिस का जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश को साइबर ठगी से मुक्त बनाना, उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो एक बार पुनः आपका आकाशवाणी समाचार की ओर से हार्दिक आभार।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर।
3: FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर हाजिर है आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन हिंदी सिने जगत के लिए दो अलग अलग रंग लेकर आया है। आज के इस दिन में अभिनेता राजीव कपूर का जन्म हुआ और इसी तारीख को मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। दोनों की कला का क्षेत्र अलग अलग था। राजीव कपूर कैमरे के सामने अभिनय करते, फिल्मों के निर्माण और निर्देशन से जुड़े थे और मखदूम साहब ने अपने शब्दों से उर्दू शायरी को एक अलग पहचान दी। तो चलिए पहले रुख करते हैं शायरी के दुनिया के मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन की तरफ। 4 फरवरी 1908 को इनका जन्म हुआ हैदराबाद राज्य के। श्रोताओं, मखदूम ने हैदराबाद राज्य के निज़ाम के खिलाफ 1946-1947 के तेलंगाना विद्रोह में अपनी गजल और शायरी से क्रांति

जगाने का काम किया था। इतने बड़े बागी शायर को लोग अभी भी एक फिल्मी गीतकार की तरह जानते हैं, जबकि मखदूम मोहिउद्दीन ने कभी फिल्मों के लिए लिखा ही नहीं। विदेश के उन चंद प्रगतिशील शायरों में हैं जिनकी पूरी जिंदगी सुर्ख परचम के तले आजादी की लड़ाई और बगावत से गुजरी। लेकिन मखदूम जी की रचनाओं की ताकत और लोकप्रियता के कारण फिल्मकारों ने उनकी रचनाओं को फिल्मों में लिया। मखदूम मोहिउद्दीन के लेखन का दायरा श्रोताओं काफी बड़ा था। उनकी प्रमुख कृतियों में सर ए सवेरा, गुल ए तर और बिसात ए रक्स जैसे संग्रह शामिल है। उनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य के साथ सामाजिक चेतना और परिवर्तन की भावना भी दिखाई देती है। श्रोताओं, बिसात ए रक्स के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उर्दू साहित्य में उनके योगदान की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका, और आज ही के दिन 25 अगस्त साल 1969 को वे इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो चलिए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बाजार फिल्म में ली गई उनकी ये रचना। जरा सुनिए ये प्यारा सा गीत।

और अब बात करते हैं श्रोताओं, अभिनेता राजीव कपूर की। श्रोताओं, राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त साल 1962 को हुआ था और हम सब जानते हैं कि वे राज कपूर के सबसे छोटे पुत्र और कपूर परिवार की फिल्मी परंपरा से जुड़े थे। राजीव ने वर्ष 1983 में फिल्म एक जान है हमसे बतौर अभिनेता शुरुआत की और अपने फिल्मी करियर को दिशा दी और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई दिव्या राणा। इसके बाद उन्होंने आसमान, लवर बॉय, मेरा साथी, जबरदस्त और हम तो चले परदेश जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिर साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली और ये फिल्म उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म रही। इस फिल्म का निर्देशन राज कपूर ने किया और मुख्य भूमिका में राजीव कपूर और अभिनेत्री मंदाकिनी थे। फिल्म की कहानी, संगीत और कलाकारों के कारण ये उस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हुई और साल 1985 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में भी रही और इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। साथियों, श्रोताओं, अभिनेता राजीव कपूर के करियर में इस फिल्म की खास जगह इसलिए भी है क्योंकि ये उनके पिता राज कपूर की आखिरी निर्देशित फिल्म थी। अभिनय के साथ ही साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी राजीव कपूर ने कदम रखा। वे हीना, प्रेम ग्रंथ और आ अब लौट चले जैसी फिल्मों के निर्माण से जुड़े रहे। साल 1996 में प्रेम ग्रंथ का निर्देशन भी किया। फिल्म में नजर आए ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित, ये मुख्य भूमिकाओं में थे। श्रोताओं, मखदूम साहब के शब्दों में प्रेम की नरमी है और समाज को देखने वाली नजर और राजीव कपूर की फिल्मों में उस दौर की हिंदी सिनेमा की छाप दिखाई देती है और दोनों को याद करने का सबसे अच्छा माध्यम है उनका काम, क्योंकि कलाकार तो चला जाता है लेकिन उनका काम रह जाता है। और जब कोई गीत रेडियो पर बजता है, कोई फिल्म दोबारा देखी जाती है या किसी शायर की पंक्ति फिर से पढ़ी जाती है तो वो कलाकार एक बार फिर हमारे बीच आ जाता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम रजनीगंधा में हमने याद किया मशहूर उर्दू शायर मखदूम मुहिउद्दीन को और अभिनेता राजीव कपूर को। और अब इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से मुझे दीजिए अनुमति, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी रात भी इन्हीं गीतों की तरह खूबसूरत हो। फिर मिलेंगे किसी और तारीख को, किसी और कलाकार और किसी और खूबसूरत गीत के बहाने। तब तक सुनते रहिए कार्यक्रम रजनीगंधा FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। UPI का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने UPI को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि UPI की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। UPI से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके UPI ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
2: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में

0: में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
1: 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो, यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
0: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
3: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

0: मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है।

0: सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। UPI का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Our correspondent reports that by bridging the digital divide, एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन।

FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम किस्मत।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, गुलजार की बोल और आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम परिचय।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजयता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक, गायिकाएं, अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया ये।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

0: विजेता पंडित ने अपने समय के लगभग सभी बड़े और नामी कलाकारों के साथ नायिका की भूमिकाएं निभाई।
1: सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया।
0: अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वेयर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। वक्त के पुल से आरजुओं का कारमा बढ़ता रहा, दिल ने खुद से फरियाद की, पूरी हुई ख्वाहिश मिल गया एक अजीज साथी, जिसने चांद के अधूरे सफर को पूरा कर दिया, जिसने सितारों से दामन भर दिया, दो दिलों के अरमान पूरे हो गए।

मिला जो उसका साथ तो जमीन चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। फूलों में इत्र की सी तेज खुशबू घुल मिल गई। दिल की राहें उस ओर मुड़ गईं जहां से उसकी राहें शुरू होती हैं। पीपल के पेड़ के पीछे रुखसत होता चांद बेहद खूबसूरत लगने लगा। हसरतों का जहां आबाद हो गया वो चांद।

हुस्न का जादू, उफ ये चांद जैसी सुनहरी आंखें, आंखें हैं या है कयामत, ये खूबसूरत गजल है या है उसकी आवाज का तिलिस्म, ये उसकी गुफ्तगु है या कोई सुरीला राग है, ये उसकी आमद है या आसमान में बिजली कड़की है और रोशनी फैल गई है, या फिर ये चौदहवीं की रात है या उसकी हुस्न का जादू।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। जिंदगी की राहों में दिल ने पग पग पर ठोकर खाई, अंधेरे घने बादलों से चमकी एक रोशनी की लकीर, ख्वाबों का जहां जगमगा गया, हवाओं में खनक सी आ गई, ओस की बूंदें मोती सरीखी चमकने लगी, जिंदगी किसी और की अमानत हो गई।

मोहब्बत की बांसुरी बजी तो दिल को खबर ही नहीं रही। जिंदगी के झंझावात से दूर दिल आसमान में पतंग बन के उड़ चला। मौसम बदल गया, हर मौसम बहार बन गया। रूठने मनाने की रुत आ गई, पतझड़ में पत्तों के गिरने की आहट में संगीत

ख्यालों के आंगन में एक रोज उसने सपनों के दीप जला दिए। उसने दिखाई नई दुनिया, उस दुनिया में हवाएं गीत गा रही थीं, बारिश की बूंदें पत्तियों पर मोती सी ठहरी थीं। उस दुनिया में न था नफरत का रंग, न थी कोई तलखी, हवाओं में भी मोहब्बत की तासीर थी। दिल तब से उनके पहलू में जा बैठा है।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना,
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार, अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय आर एस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital today. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from a central government institution, NAFED, and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. The government has debunked claims circulating on social media that the central government will provide 1 year of free mobile recharge to all women on the occasion of Raksha Bandhan.